एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की दूसरी तिथि, तदनुसार दिनांक 23 मई सन 2026। श्रोता, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 5:56 और ठीक 30 सेकंड हुए हैं। हमारे

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। 6:05 से आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित चिंतन और भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: Farhat Naz. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के

0: ने बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिन कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी अवसंरचना इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना साथ ही विनिर्माण नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोता आइए सुनते हैं आज का चिंतन। विषय है मति सुमति।
2: मति और सुमति मानव को परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ देन है। मति का सीधा और सरल अर्थ है बुद्धि। अनुचित आचार व्यवहार के व्यक्ति को लोक उसकी मति मारी गई है उक्ति से संबोधित करता है। मति को सुमति के रूप में काम लेना हम सबके अपने वश में है। जो सुमति के स्थान पर कुमति का सहारा लेते हैं उनका जड़मूल नष्ट हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरित मानस ग्रंथ में विभीषण से भरी सभा में रावण को कहलाया है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। साधारणतः मति का सुमति या कुमति में बदलना हमारे विवेक पर निर्भर करता है। आवेश और क्रोध सबसे पहले विवेक को छोड़ता है और फिर वो कुमति के मार्ग को अपनाता है। इसीलिए सनातन धर्म की सांस्कृतिक मनीषा में

0: मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध को और सबसे बड़ा मित्र धृति अर्थात धैर्य को माना गया है। दुनिया को सन्मार्ग पर रखने वाले प्रत्येक महापुरुष का सद्गुण धैर्य ही रहा है। धैर्य के माध्यम मति सुमति में बदलती है तो सब प्रकार के सुख अर्थात संपत्ति प्राप्त होती है और कुमति तत्काल ही विपत्ति का कारण बनती है। हमारा विवेक हर पल मति को सुमति में बदलने का हेतु है लेकिन स्वार्थ और अहंकार जनित क्रोध उसमें बाधक बनता है। जीवन में हर तरह की संपत्ति सुख का मूल सुमति ही है। इसके लिए मति का विवेक सम्मत प्रयोग पहली आवश्यकता है।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है एफएम इंडेक्स 1.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है।
1: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। सवेरे के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

बार माता कौशल्या ने शिशु को स्नान करा पालने में सुला दिया। जब स्वयं स्नान आदि से निवृत्त होकर रसोई में पहुंची तो वहां राम को भोजन करते पाया। चकित हुई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें पालने में पढ़ाया था। दौड़कर पालने के पास पहुंची तो पुत्र को वहां सोया देखा। उसी क्षण उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र,

पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण ज्ञान आदि अद्भुत दृश्य देखकर जिनके बारे में कभी सुना भी न था, माता को आश्चर्यचकित तथा डरी हुई देखकर श्री राम ने पुनः शिशु रूप धारण कर लिया। माता ने परम ब्रह्म का वो रूप देख उनकी स्तुति करने में भी अपने को असमर्थ पाया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में जानकारी, हमारी सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की। विविध भारती के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सवेरे 7:30 पर, 9:30 पर और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:45 पर आप सुन सकते हैं हमारे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती में बात। छह बजकर 50 मिनट पर प्रसारित होगा आदिवासी लोक संगीत।

प्रसारण समय रहेगा 7:20 पर। वातायन के अंतर्गत आज हम सुनेंगे अपूर्वा जैन से वार्ता। वार्ता का विषय है सबकी रक्षा सड़क सुरक्षा। दिल की जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से का प्रसारण समय रहेगा 8:15 पर। आज का हम

राजस्थानी लोक संगीत आप सुन सकते हैं हमारी प्रातःकालीन सभा में 8:45 पर, और सायंकालीन सभा में आप सुनेंगे शाम 5:05 पर।

फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं हमारी प्रातःकालीन सभा में 11:30 पर और सायंकालीन सभा में आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे।

आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर। 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण समय रहेगा शाम 7 बजे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार संध्या आप सुन सकते हैं रात्रि 8:45 पर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारी सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती निवाद।
1: खेती निवाद कार्यक्रम हमारा सब किसान भाई धर्मिष्ठानो, राम राम राम राम। देखो भाई बने सब खेती वाली काम काज करवा लगे था कहा केम के बटे जी भी रबी फसल नहीं वापरे बुआई करी थी कटाई वगैरह थी किए हर हम बार थी किए निकला भाई ने सिंचाई की सुविधा थी खरी साग सब्जी वालों काम भी कर दी दू है नहीं नहीं हर हम बार करवा में लगे था कहीं घर फल सब्जी वगैरह उगड़ी रखी है ती तोड़ी ने वेसा नु काम करी गए कोई हूँ करी रू है कोई मूंग फसल वगैरह कर रखी है तो इन्हें हार हम बार करी रहता कहीं पर खास कर अपने खेती बाड़ी ने काम में हर बात में ध्यान रखू जरूरी है। जो भी खेती बाड़ी में काम है फसल चक्र अनुसार थी जाए तो बढ़िया रहेगा। तो आपड़े जो भी अपने खेतर खाली थी गए हैं तो आपने खास कर खेतर ने गहरी जुताई वगैरह कर दो मिट्टी पलटवाने हल तकी गहरी जुताई थी जाएगा तो जी में पोषक तत्व ने अपने कमी रहेगी उन्हें पूरा करवाना भी समय है। तो जो खातर वगैरह नाखो है या मिट्टी नु जांच वगैरह करावी हो तो ये आप करी सको क्योंकि अपने जेवी रही पानी पड़ी जाएगा अगली फसल ने भी तैयारी करी पड़ेगा पर जल्दबाजी थी जाएगा कि भाई अपने हड़ाड़ी में हूँ पैरव हूँ करवो है तो इन्हें सब तरह की तैयारी करवा समय साली रो तक है तो इन्हें खास कर ध्यान राखी ने कई खेतर में हूँ बीज पैरव हूँ कर लाभ कई सब्जी करवी है या कोई अनाज करव हो तो इन्हें सब तक अपने ध्यान रखू जरूरी है। नहीं बातों में अपने ध्यान रखेंगे तो अपने कोई

तरह की समस्या नहीं आवेगा, क्योंकि आप जल्दबाजी में कोई भी काम करवा जाते अपने नुकसान थानी संभावना थी सके। एट्ले अपने आ समय अपने मिट्टी की जांच आप कही सके एक बे वर में अपने मिट्टी की जांच थी जाए तो खेतर में कई कई तरह की कमी रहे तो इन मिट्टी अपने कमी भी पूरी कर सको। बीजू इनमें कोई कहीं आ रू तो कह मेड वगैरह करवाने जरूरत हो नाली बनावानी समस्या हो तो हर तरह की आपने इन ध्यान रखे, क्योंकि खेतर खाली तभी अपने खेतर में कोई भी तरह कामकाज करव हो तो आप कर सको। एट्ले अपने खेतर खाली ने समय में अपने आ बात खास कर ध्यान रखू हो। बीजू आ शाक सब्जी वालू काम भी करता कारण मौसम एकदम बदलाय तो बदलता मौसम में अपने स्वास्थ्य में तो नुकसान थी सके, इमने में अपनी फसल जो भी हो चाहे साग सब्जी है।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। आप सुन रहे हैं आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत पुरुषोत्तम चौहान और साथी कलाकारों के गाए भजन।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: पुरुषोत्तम चौहान और साथी कलाकारों के गाए इस भजन के साथ ही आदिवासी लोक संगीत अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। सवेरे के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम सुनेंगे अपूर्वा जैन से वार्ता। वार्ता का विषय है सबकी रक्षा सड़क सुरक्षा।
1: जीवन अनमोल है, ईश्वर द्वारा दिया गया अमूल्य उपहार है जीवन। इसकी रक्षा करना सामूहिक दायित्व है। घर, परिवार, समाज के साथ ही जब हम घर से बाहर सड़क पर निकलते हैं तब यह जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि हम स्वयं के साथ ही दूसरों के जीवन की सुरक्षा का संकल्प लेकर चलते हैं। समय के साथ साथ सड़कों पर अनेक प्रकार के वाहनों की बढ़ोतरी हुई। वाहन चलाना सीखने के साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर हमें जिन जिम्मेदारियों को निभाना होता है उसे सीखने की बहुत आवश्यकता है। आज मैं अपूर्वा जैन अपने जिले के संदर्भ में सबकी रक्षा सड़क सुरक्षा विषयक वार्ता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है, जो चिंता का विषय है। इन दुर्घटनाओं से होने वाली जनजाति को रोकने की दृष्टि से वाहन चालकों को नियमित प्रशिक्षण के साथ साथ नियम तोड़ने व नशे में वाहन चलाने पर कड़ी कार्यवाही आवश्यक है। सड़क सुरक्षा में और अधिक सुधार कर दुर्घटनाओं में कमी लाने की दृष्टि से रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाकर राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन प्रस्तावित है। राजस्थान में अब रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यह फोर्स सड़क हादसों और उनसे होने वाली अकाल मौतों के आंकड़ों में कमी लाने का प्रयास करेगी। जिला स्तरीय रोड सेफ्टी टास्क फोर्स के जरिए 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं एवं मृत्यु

में 50% तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक विभाग के निदेशक डॉक्टर एटिन कहते हैं, ऑटोमोबाइल के आविष्कार के बाद से दुनिया की सड़कों पर 50 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यह संख्या प्रथम विश्व युद्ध या कुछ सबसे भयानक महामारियों में हुई मौतों से भी ज्यादा है। अब समय आ गया है कि हम उस काम को अमल में लाएं जिसके बारे में हम जानते हैं और परिवहन के ज्यादा सुरक्षित और स्वस्थ तरीके को अपनाएं। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। जेब्रा क्रॉसिंग से ही पैदल क्रॉस करें, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, बीमार या थके हुए हैं तो गाड़ी न चलाएं, पहले ट्रैफिक लाइट देखें, फिर रुकें या आगे बढ़ें, चौराहों पर गति कम रखें, ट्रैफिक संकेत और हाथ से संकेत दें। दैनिक जीवन में सुरक्षा के साथ साथ सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने से हमें सुरक्षित रहने में मदद मिलती है। अन्य सड़क सुरक्षा नियमों में सभी ट्रैफिक सिग्नल जैसे स्टॉप साइन, रेड लाइट आदि का पालन करना, सीट बेल्ट, हेलमेट पहनना, गति सीमा और सुरक्षित दूरी बनाए रखना, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी न चलाना आदि नियमों का पालन करना जरूरी है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बांसवाड़ा जिले में वर्ष 2024 में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें जन जागरूकता रैलियों का आयोजन किया, साथ ही कई विद्यालयों में विद्यार्थियों को जागरूक कर सड़क सुरक्षा के संबंध में जानकारियां दी गई। जिले के कई स्थानों पर हेलमेट रैलियों का आयोजन भी किया गया। विद्यालयी वाहनों और ऑटो रिक्शाओं का फिटनेस चेक किया गया। जिले के 31 स्थानों पर व्यावसायिक वाहनों और ऑटो चालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण शिविर भी आयोजित किए गए। जिले के 5 स्थानों पर प्रदर्शनी लगाई गई, साथ ही 31 स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। जिले के 28 स्थानों पर जैसे चौक, चौराहों पर वाहन चालकों को समझाया गया। 20 जगहों पर अजोर रथ लगा गया। हाईवे पेट्रोलिंग 31 स्थानों पर की गई। वार्ता के अंत में जो सबसे उपयोगी बात है वह मैं आपके समक्ष साझा कर रही हूँ। सड़क सुरक्षा के तहत एक उपयोगी बिंदु होता है, घायल को जल्दी से जल्दी उपचार उपलब्ध हो। इसके लिए घायल को अस्पताल जितनी जल्दी हो सके पहुंचाना आवश्यक होता है। सरकार परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने भला मददगार गुड सैमरिटन द्वारा दुर्घटना में घायलों को मदद करने वालों को बेहिचक मदद करने के लिए आश्वस्त किया है। वह है जो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करता है, उसकी सूचना देता है तथा उसे अस्पताल लेकर जाता है, जो एक बाईस्टेंडर अथवा राहगीर हो सकता है। ऐसे गुड सैमरिटन के प्रमुख अधिकार हैं कि उस पर किसी भी प्रकार का सिविल या आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। उसे अस्पताल से तुरंत जाने की अनुमति होगी। उसे अपना नाम एवं व्यक्तिगत विवरण देने के लिए पुलिस अथवा अस्पताल द्वारा बाध्य नहीं किया जाएगा। भला मददगार गुड सैमरिटन के संबंध में पुलिस के लिए भी दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं कि किसी प्रत्यक्षदर्शी के अलावा कोई व्यक्ति जो किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति अथवा मृतक के बारे में सूचना देने के लिए पुलिस नियंत्रण अथवा पुलिस थाने में फोन करता है तो उसे पूरा नाम, पता एवं फोन नंबर आदि जैसी व्यक्तिगत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई गुड सैमरिटन गवाह बनना चाहता है और पुलिस थाने जाना नहीं चाहता तो जांच अधिकारी द्वारा सादे कपड़ों में उससे पूछताछ यथासंभव उसकी सुविधानुसार किसी समय और स्थान जैसे उसके आवास
यह कार्य के

0: स्थान पर की जाएगी। यदि कोई गुड सैमरिटन पुलिस थाने में जाने का चयन करता है तो उसे बिना किसी अनुचित विलंब के तर्कसंगत और समयबद्ध रूप से एक ही बार में पूछताछ की जाएगी। गंभीर घायल व्यक्तियों को समय से अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5,000 रूपए तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। अब कुछ उन नियमों की चर्चा कर लें जिनका पालन कर हम सुरक्षित वाहन चलाकर दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में दो पहिया गाड़ी में बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना, गलत ओवरटेकिंग, ओवर स्पीडिंग, क्षमता से अधिक सवारियां बैठाना आदि है। यदि इन कारणों से बचेंगे तो दुर्घटनाओं से भी बचेंगे। इसके साथ ही चौपहिया वाहनों में बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। देश की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए हम सभी को सावधानी पूर्वक सड़क का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करते हुए ही हमें सड़क पर चलना चाहिए। विद्यालय जाने वाले सभी विद्यार्थियों को भी सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी उनके विद्यालय शिक्षकों द्वारा दी जानी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी सतर्क होकर सड़क का प्रयोग करें। इस प्रकार हम सड़कों को और भी सुरक्षित बना सकते हैं। सड़क सुरक्षा का रखे ध्यान बचाए हम सबकी जान। साथ ही मैं यह कहना चाहती हूँ कि पहले आपका ध्येय लेकर वाहन चलाएं और वाहन नियंत्रित गति से चलाएं, तो सबकी रक्षा सड़क सुरक्षा का संकल्प पूरा होगा। आजकल देखने में आया है कि लाड़ प्यार में माता पिता एवं अभिभावकों द्वारा अवयस्क अथवा ठीक से वाहन चलाना नहीं जानने वाले बच्चों को वाहन दिलवा दिए जाता है। यह उन बच्चों के लिए ही नुकसानदेह होता है। अतः सरकार, समाज और घर परिवार, इन सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि सड़कों पर नियमों का पालन हो, जिससे कम से कम दुर्घटनाएं हो। सड़क पर चलते समय या वाहन चलाते समय हम सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि इस सार्वजनिक स्थल पर हम एक दूसरे का ध्यान रखते हुए दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में सरकार के नियमों का पालन करें।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वातायन के अंतर्गत अपूर्वा जैन से वार्ता। वार्ता का विषय था सबकी रक्षा सड़क सुरक्षा। ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर, 7:30 और वक्त हो चला है विविध भारती के कार्यक्रमों का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में मेरे सनम। इस फिल्म के गाने के साथ मजरू सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं ओ पी नैयर।

0: आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत से संवारा है खयाम ने। फिल्म का नाम मोहब्बत इसको कहते हैं।
1: कह दिए हो शुमे।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में पूर्णिमा फिल्म का गाना। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में वक्त फिल्म का गाना। इसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत से संवारा है रवि ने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में वक्त फिल्म का गाना। आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
3: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम है राही प्यार के नमस्ते जी। जहां इस फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अनजान के बोल और तर्ज बनाई है जी.एस. कोहली ने।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। गीतकार हैं कमर जलालाबादी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी और फिल्म का नाम जौहर महमूद इन गोवा।

आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। सवेरे के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार

0: कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
3: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जांजीपुर की मित्रता आपसी सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHYRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया।

0: रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
1: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोर मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी आईएएस अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की

0: गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नव भारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम न करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं ले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रूपये की अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए दिल के जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से।

0: होठों से कुछ शब्द चुनकर यूं जुबां पर लाते हैं, थोड़ा आप गुनगुनाइए, थोड़ा हम गुनगुनाते हैं। सुरीली नगमों की बानगी लिए आज आपसे मुखातिब है आपकी रेडियो होस्ट मीनाक्षी उपाध्याय। नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस अद्भुत कला की जो बिना शब्दों के भी दिलों की भाषा जानती है। जी हाँ, संगीत। श्रोताओं, कभी सोचा है अगर इस जहान से आवाजें गायब हो जाए तो ये दुनिया कैसी लगेगी? नीरस, बेरंग, बिल्कुल एक खामोश कैनवास जैसी। लेकिन शुक्रिया उस खुदा का जिसने हमारी धड़कनों को एक लय दी और इस कायनात को संगीत का तोहफा। संगीत सिर्फ सात सुरों का संगम नहीं, यह वह जादू है जो बिना कुछ कहे दिल की हर बात कह जाता है। स्वरों की साधना में जब मन डूब जाता है तब जीवन का हर शोर कहीं खो जाता है। संगीत केवल ध्वनि नहीं, ईश्वर का स्पर्श है जो मौन अधरों पर भी मधुर गीत सजा जाता है।
1: हंसो मत, बोलो

शोपेनहावर का कहना है, संगीत ही ऐसी कला है जो श्रोताओं से सीधा संबंध रखती है। इसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं। संगीत में सौंदर्य, माधुर्य, सहजता, सरलता, प्रवाह, प्रसाद और ओज जैसी विशेषताएं हैं। श्रोताओं, हमारे मानसिक व शारीरिक अवस्था दोनों को स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक बनाने की शक्ति संगीत में है। सरगम से कितनी ही मधुर धुनों का उद्भव हुआ। इन सात सुरों के बिना जीवन नीरस और बोझिल हो जाता है।

संगीत सिर्फ हमारे मनोरंजन का साधन नहीं, साहस, एकता, एकाग्रता, करुणा व प्रेम जैसे गुणों का विकास करता है। कई रोगों के इलाज में भी संगीत की ध्वनि तरंगों का उल्लेख मिलता है। हमारे जीवन की संजीवनी है संगीत, एक मध्यम मध्यम सा गीत जो सीधे दिल की गहराइयों में उतर जाता है।

श्रोताओं, भारतीय संस्कृति में संगीत ईश्वर की उपासना का श्रेष्ठ माध्यम है। तानसेन, बेजू बावरा और अनेक संगीतज्ञों ने अपने सुरों से इतिहास के पन्नों को अमर कर दिया। रागों की विविधता हमारे मन के प्रत्येक भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखती है। जहां राग भैरव प्रातःकाल की पवित्रता का अनुभव कराता है, तो राग मल्हार वर्षा की फुहारों का आभास देता है। तबला, सितार, बांसुरी और वीणा जैसे वाद्य यंत्र भारतीय संगीत की परंपरा को समृद्ध बनाए रखते हैं। जब तक इस जहान में धड़कने हैं, तब तक संगीत का यह अनहद नाद गूंजता रहेगा। संगीत में छिपी होती है प्रार्थना की पवित्रता और प्रेम की अनकही मधुर अभिव्यक्ति। यह आत्मा की वह सरिता है जिसमें बहती है मानवता की दिव्य शक्ति।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, संगीत हमारे जीवन की वह मधुर अभिव्यक्ति है जहां शब्दों की सीमाओं से परे जाकर हृदय की गहराइयों को स्पर्श करती है। यह स्वर और लय का मात्र संयोजन नहीं, भावनाओं की वह निर्मल धारा है जिसमें हम अपने सुख दुख, प्रेम, करुणा, उल्लास को प्रवाहित करते हैं। सुरों की बारिश में मन भीग जाता है, हर दर्द कहीं दूर छूट जाता है। जब संगीत दिल के करीब होता है तो हर पल खूबसूरत सा गीत बन जाता है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, जिस तरह इंद्रधनुष के सात रंग होते हैं, ठीक उसी प्रकार संगीत में सात सुरों का संगम होता है। संगीत के कई रूप हैं, कभी माँ की लोरी में तो कभी पिता की थपकी में। जब हम ध्यान से सुने तो हवाओं के शोर में, पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट में, पक्षियों की चहचहाट में, नदियों व झरनों के पानी के बहाव में, बारिश के रिमझिम बरसने में, बच्चों की मासूम खिलखिलाहट में और दिल की धड़कनों में भी तो सुर होता है। श्रोताओं, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में संगीत चिकित्सा के नतीजे बेहद रोचक व सुखद है। संगीत शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है। जहां शब्द थक जाते हैं और मौन भी कुछ कह नहीं पाता, वहां संगीत अपनी उंगली थामकर हमें भावों के उस जहान में ले जाता है जहां केवल आनंद और शांति है।

0: बदलना।
1: प्यार हमें भी दिखला देगा, हर दिश में संभलना। कहीं भी पीना, कहीं भी पीना ये रातें, कहीं भी पीना ये दिन। गाता रहे
2: श्रोताओं, पहला सुख निरोगी काया माना है, उसी प्रकार आत्मा की शुद्धता के लिए संगीत एक उपासना है। तो गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए गीत, और दीजिए इजाजत मीनाक्षी को, आपसे फिर रूबरू होंगे एक और नई थीम के साथ और सुरीली नगमों के साथ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कुछ दिल से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। लीजिए सुनिए राजस्थानी लोक संगीत।

समूह स्वर में गाए इस गीत के साथ ही राजस्थानी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। सवेरे के 9 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा।

0: मुख्य समाचार। 19वें रोजगार मेले का आज देश में 47 स्थानों पर आयोजन। 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य प्रगति पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। और प्रदेश के 4 शहरों में दिन का पारा 44 और 25 स्थानों पर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। देश में आज 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 47 स्थानों पर लगने वाले इन मेलों के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। इधर प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। इनमें 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में, कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी अजमेर में और बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। गौरतलब है कि देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से करीब 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के रेल विकास कार्य प्रगति पर हैं। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 85 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। श्री वैष्णव कल पाली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड काल के बाद राजस्थान के लिए 46 नई रेल सेवाओं की शुरुआत की गई है।
1: सारी नई गाड़ियां चालू हो पाएगी, साथ ही साथ 85 स्टेशनों का नव निर्माण राजस्थान में हो रहा है, जिसमें करीब 15 स्टेशन का काम कंप्लीट हो गया है। बाकी सब जगह बहुत अच्छे तरीके से तेजी से काम चल रहा है और देश भर में 1300 स्टेशनों का नव निर्माण चल रहा है। आने वाले समय में रेलवे की और कई नई सुविधाएं देश को मिलेगी।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि राज्य में मोबाइल मेडिकल सेवाओं और निशुल्क जांच शिविरों के जरिए गांव-गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंच रही है। श्री बिरला कल कोटा के रामगंज मंडी में जिला अस्पताल के शिलान्यास समारोह के बाद मीडिया

0: मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 200 बेड के इस आधुनिक अस्पताल के बनने से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा सुलभ हो सकेगी।
1: बहुत दिनों से मांग थी कि यहाँ जिला अस्पताल हो। 62 करोड़ की लागत से बनने वाला जिला चिकित्सालय का शिलान्यास हुआ है। ये सारा इलाका जहाँ मजदूर बड़ी संख्या में रहते हैं, यहाँ के लोगों को जानवर इलाज के लिए जाना पड़ता था, आने वाले समय में सभी का इलाज यहाँ पर होगा। तो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, पीने का पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, अस्पताल हो, दो दो महाविद्यालय हो, टेक्निकल महाविद्यालय हो, तमाम चीजें जो एक आवश्यकताएं थी जो रामगंज मंडी में बरसों तक अभाव थे उनको पूरा करने का काम किया।
0: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। इन पर प्रति लीटर 91 पैसे बढ़ाए गए हैं। पिछले 10 दिन में तेल के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। 15 मई को 3 रूपए, 19 मई को 90 पैसे बढ़ाने के बाद अब ईंधन की कीमतें फिर बढ़ने से हाल के दिनों में अब तक लगभग 5 रूपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच ये निर्णय लिया गया। सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक और आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया है। मनीषा संजय हवलदार नाम की महिला परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी। इसे एनटीए ने विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इस प्रकरण में सीबीआई ने देशभर में जयपुर सहित कई स्थानों पर छापेमारी कर अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी लेने की आखिरी तारीख एक दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदक के अत्यधिक और तकनीकी व्यवधान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। इसे विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के वास्ते 2 दिन का समय मिल सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का अनुमोदन किया गया। साथ ही ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी, पेंशनर्स कल्याण के बारे में भी फैसले लिए गए। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण, जन अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान तथा पीने के पानी और बिजली आपूर्ति सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक उत्पादन, अक्षय ऊर्जा और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में 3 संशोधनों को मंजूरी दी है। उद्योग मंत्री ने बताया कि अब पेंशनर्स फेस स्कैन तकनीक से घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे।
2: जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अभी तक हर 3 साल के अंदर विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करना पड़ता था, ऐसी बाध्यता थी। लेकिन अभी कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि ऐसे विशेष योग्यजन जो बच्चे हैं उनको केवल एक बार ही प्रमाण पत्र जारी करना होगा। दूसरा, पेंशनर्स को अब मोबाइल ऐप द्वारा अपना फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले इसमें आपको ई मित्र के पास जाना पड़ता था या एसएसओ आईडी से साइन इन करना पड़ता था, अब अपने मोबाइल से भी अपना जीवन प्रमाण।
0: बैठक में राजपत्रित अधिकारियों के साथ ही अराजपत्रित अधिकारियों को भी एसएसओ आईडी से जीवन प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए अधिकृत किया गया है। बैठक में जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए जमीन आवंटन की मंजूरी भी दी गई। कांग्रेस पार्टी का चिंतन और प्रशिक्षण शिविर आज से पुष्कर में शुरू हो रहा है। 10 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में संगठन की मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सहित कई अन्य नेता इसमें शामिल होंगे।

0: प्रदेश के चार शहरों में कल दिन का पारा 44 डिग्री के पार रहा। 44.2 डिग्री सेल्सियस के साथ चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म रहा। वहीं 25 स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में मामूली गिरावट आई है। हालांकि भीषण गर्मी और तपिश का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने कल से तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने और हीटवेव की संभावना जताई है। कुछ हिस्सों में आज तेज रफ्तार धूल भरी हवाएं चल सकती है। इस बीच बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली की प्रसूति और स्त्री रोग विभाग की डॉक्टर के अर्पणा शर्मा ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंटली बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, तो जैसे नींबू पानी नमक डाल के पिए। या
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 19वें रोजगार मेले का आज देश में 47 स्थानों पर आयोजन। 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य प्रगति पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए और प्रदेश के चार शहरों में दिन का पारा 44 और 25 स्थानों पर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम सुनेंगे चुनिंदा कलाकारों की गायी चुनिंदा गजलें। शुरुआती गजल हम सुन रहे हैं फरीदा खानम की आवाज में।
3: आज जानी

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल।

बात को करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:30 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: विद भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। एक अभिनेत्री जो अपने अभिनय की शुरुआत स्कूल और कॉलेज के थिएटर से करती है, धीरे धीरे टीवी सीरियल की ओर बढ़ती है, बॉलीवुड में आकर अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाती है और आज ओटीटी की क्वीन कहलाती है, वो है शेफाली।

बॉलीवुड की ये खूबसूरत अदाकारा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 22 मई 1973 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी शेफाली बचपन से ही अभिनय करना चाहती थी। वे एक मॉडल, अभिनेत्री और चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। उनके पिता का नाम सुधाकर शेट्टी और माता का नाम शोभा शेट्टी है। वे अपने माता पिता की इकलौती लाडली संतान हैं और उनका पालन पोषण एक

0: दीवाना हो।
1: शेफाली शाह का अभिनय करियर गुजराती मंच से शुरू हुआ। बचपन से ही उन्हें कला की ओर बहुत झुकाव था, जिसमें गायन और नृत्य शामिल थे। उन्होंने भरतनाट्यम में प्रशिक्षण लिया। उनकी अभिनय यात्रा 10 वर्ष की आयु में गुजराती मंच पर किए नाटक द ओमेन से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने डेमियन थॉर्न पर आधारित चरित्र को बखूबी निभाया। इंटर कॉलेजिएट नाटकों में काम करने के साथ साथ उन्होंने गुजराती रंगमंच में काम करके अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दे दिया था।

शेफाली शाह ने थिएटर करने के बाद साल 1993 में टीवी की दुनिया में कदम रखा। बनेगी अपनी बात सीरियल से छोटे पर्दे पर उन्होंने डेब्यू किया, फिर आरोहण, हसरतें, पतझड़, कभी कभी, सी हॉक्स, राहें और रामायण जैसे सीरियलों में अभिनय कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शेफाली शाह कमाल की एक्ट्रेस, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज उनके नाम 25 से ज्यादा फिल्में हैं और इन सभी फिल्मों में उनका काम बोलता है। उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत पर बात की जाए तो 1995 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से उन्होंने डेब्यू किया। इस फिल्म में उनकी भूमिका बहुत छोटी थी।

1998 में रामगोपाल वर्मा की ही एक फिल्म सत्या में शेफाली ने भीकू महात्रे की पत्नी प्यारी महात्रे की भूमिका निभाई, जो मनोज बाजपेयी द्वारा निभाई गई एक माफिया सरगना की पत्नी थी। इस फिल्म में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड जीता। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला।

फिल्म सत्या में अपने शानदार काम के बावजूद शेफाली शाह को उतनी फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिले जितनी उन्हें उम्मीद थी। विपुल शाह द्वारा बनाई गई गुजराती फिल्म दरिया छोरू में कास्ट किया गया। विपुल शाह की इस फिल्म के लिए शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 2000 में निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा की फिल्म आई मोहब्बतें। इस रोमांटिक फिल्म में शेफाली को एक

इसके ठीक एक साल बाद यानी 2001 में उन्हें मीरा नायर की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मानसून वेडिंग में लिया गया। इस फिल्म में शेफाली ने रिया वर्मा की भूमिका निभाई। ये फिल्म अपने समय से आगे की फिल्म मानी गई। रिया वर्मा की भूमिका में शेफाली वास्तविक पात्रों में से एक थी। उन्होंने बचपन में बहुत दर्द का अनुभव किया था, जिसके कारण रिया वर्मा रिश्ता नहीं बना सकी और अविवाहित रहने का फैसला करती हैं। एक ऐसा किरदार शेफाली का था जो सबसे जटिल था। इसे शेफाली ने बखूबी निभाया। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली और कई

2005 में विपुल शाह के निर्देशन में शेफाली ने पारिवारिक मेलोड्रामा वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में काम किया। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की माँ के रोल में नजर आती हैं। सुमित्रा ठाकुर के रूप में उनकी भूमिका एक सख्त माँ की थी जो अपने पति को अपने गैर जिम्मेदार बेटे को अनुशासित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर का नामांकन मिला। अभिनय के वक्त वो अमिताभ बच्चन से आधी उम्र की और अक्षय कुमार से लगभग 4 साल छोटी थी, लेकिन अपने अभिनय के दमखम से उन्होंने भूमिका में जान डाली।

निर्देशक फिरोज अब्बास खान की फिल्म गांधी माय फादर का जिक्र करना यहां बहुत जरूरी हो जाता है। 2007 में आई इस फिल्म में दर्शन जरीवाला और अक्षय खन्ना के साथ कस्तूरबा की भूमिका में शेफाली शाह नजर आती हैं। ये फिल्म महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली ने कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई, जो अपने पति महात्मा गांधी और बेटे हरिलाल के बीच आजीवन संघर्ष से त्रस्त हैं। इस फिल्म में उनकी भूमिका ज्यादा आंतरिक है, क्योंकि वो चुपचाप सब कुछ देखती हैं कि हरिलाल क्या कर रहा है। उन्होंने अपने दो अहम दृश्यों में बेहतरीन काम किया, जिसमें वे गांधी पर हरिलाल को छात्रवृत्ति न देने के लिए भड़कती हैं, और जहां वे धर्म परिवर्तन के बाद हरिलाल से भिड़ जाती हैं। कस्तूरबा के रूप में उनका अभिनय शानदार नजर आता है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और 2008 में जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।

2007 में ही फिल्म द लास्ट लियर में शेफाली ने अमिताभ बच्चन के साथ परेशान और चिड़चिड़ी स्वभाव वाली और लिव इन पार्टनर की भूमिका निभाई है। ये एक ऐसी भूमिका थी जिसे वे अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानती हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फिल्म को सराहना के साथ ही 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम दिया गया और शेफाली शाह ने सहायक अभिनेत्री का खिताब भी जीता। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋतुपर्णो घोष।

सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शेफाली ने रीमा माथुर की भूमिका निभाई। 2008 में आई इस फिल्म में शेफाली एक बंगाली कार्यकर्ता और एक उर्दू प्रोफेसर अनिल कपूर की पत्नी के अहम रोल में नजर आती है।

2011 में उन्होंने विपुल शाह के प्रोडक्शन में कुछ लव जैसा फिल्म में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई, जो जेल से भाग रहे एक अपराधी राहुल बोस के साथ एक रोमांटिक दिन बिताती है। कहते हैं अपने इस रोल को समझने के लिए शेफाली ने ठाणे जेल का दौरा भी किया और अपने चरित्र को समझने के लिए कैदियों से बात भी की।

आगेश कुकनूर की सामाजिक समस्या पर बनी फिल्म लक्ष्मी में काम किया। इस फिल्म में शेफाली शाह ने एक वैश्याले की मालकिन ज्योति की भूमिका अदा की है। 2014 में आई ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म थी। दिल धड़कने दो, जी हाँ, 2015 में निर्देशिका जोया अख्तर की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई। इस फिल्म में शेफाली अनिल कपूर की पत्नी के रोल में

करण मल्होत्रा की अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा वॉरियर के रीमेक में उन्हें एक छोटी सी सहायक भूमिका मिली। इस फिल्म में उनके चरित्र मारिया फर्नांडिस को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने व्याभिचारी पति के विवाह के बाद हुए अवैध बच्चे को स्वीकार करती है। शेफाली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने किरदार में एक ऐसी सादगी लाती हैं जो मुख्यधारा के सिनेमा में शायद ही कभी देखी जाती है। फिल्म जूस नीरज घाईवान द्वारा 2017 में आई एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली की निगाहें शब्दों से कहीं अधिक बयां करती है और उनका अभिनय लाजवाब नजर आता है।

वंस अगेन रोमांटिक फिल्म का जिक्र भी यहाँ करना बहुत जरूरी है। 2018 में आई इस फिल्म को कमल सेठी ने लिखा और निर्देशित किया। शेफाली शाह और नीरज का भी अभिनीत ये फिल्म दो मध्यम वर्गीय आयु वर्ग के लोगों की कहानी है। इस फिल्म में काम करने के बाद शेफाली ने कहा कि वो लंबे समय से इस तरह की फिल्म का इंतजार कर रही थी। शेफाली इन सभी फिल्मों के अलावा ब्रदर्स, द जंगल बुक, कमांडो 2 और डॉक्टर जी जैसी फिल्मों के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं।

सैफ अली शाह ने इन सभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया हो, लेकिन ये स्टारडम तब और बढ़ा जब उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा। जी हाँ, सैफ अली शाह ने साल 2019 में आई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से अपनी प्रतिभा की एक अलग ही मिसाल पेश की। 2023 में उन्हें दिल्ली क्राइम में उनके अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस सीरीज में उनकी प्रतिभा जो दर्शकों के सामने आई उसे देखकर हर कोई अवाक रह गया। इस वेब शो में सैफ अली ने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया, जिन्हें दिल्ली में एक क्रूर सामूहिक बलात्कार की जांच करने का काम सौंपा जाता है।

ब्लैक कॉमेडी डार्लिंग्स में शेफाली और आलिया भट्ट माँ और बेटी के रूप में अभिनय करती हैं। इस फिल्म को जसमीत के वीन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है जिसकी पटकथा परवेज शेख ने लिखी। फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस फिल्म को कई अवार्ड मिले। शेफाली ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब जीता।

2022 में आई ह्यूमन में शेफाली ने डॉक्टर गौरीनाथ की भूमिका निभाई। विपुल शाह द्वारा निर्देशित ये शो दवा कंपनियों और बड़े निजी अस्पतालों के बीच सांठगांठ की पड़ताल करता है। वहीं सोशल थ्रिलर फिल्म जलसा में उन्होंने विद्या बालन के साथ अभिनय किया। वे इसमें रुखसाना नाम की महिला का किरदार निभाती नजर आती हैं, जिसकी बेटी एक हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें मेलबर्न के वार्षिक भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला।

अविनाश अरुण द्वारा सहलिखित और निर्देशित थ्री ऑफ अस 2023 की फिल्म है। इसमें शेफाली ने शैलजा देसाई की भूमिका निभाई है, जिसे डिमेंशिया है और वो अपने बचपन को याद करने के लिए यात्रा पर निकलती हैं और अपने दर्दनाक अतीत का सामना करती हैं। स्वानंद किरकिरे इस फिल्म में उनके पति और जयदीप अहलावत बचपन के दोस्त की भूमिका में हैं। इससे पहले 2020 में शेफाली शाह ने दो स्व अभिनीत कोविड-19 आधारित लघु फिल्मों समडे और हैप्पी बर्थडे मम्मी जी में लेखन और निर्देशन भी किया। 2025 में निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म हिसाब, इस फिल्म में शेफाली शाह, जयदीप अहलावत और अभिषेक सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

0: शेफाली शाह को अपने बेजोड़ अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार शामिल हैं। सेट पर सबसे ज्यादा खुश रहने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जो भूमिकाएं निभाती है वे उस फिल्म का मुख्य किरदार होती हैं और वो अपनी भूमिकाओं में खामोशी को ढूंढती हैं। शेफाली अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वास्तव में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगी और फिल्मों में यूं काम करूंगी। लंबे वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं पूरी तरह से अभिनय करूंगी, ये बस होता गया और जो भी किरदार मैंने निभाए वो बहुत मजबूत किरदार बनकर उभरे हैं। तो ये था अभिनेत्री शेफाली शाह पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। आलेख, शोध और स्वर मंदाकिनी जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। राधा और पुष्पा दो गरीब माँ बाप की बेटियाँ थी। राधा की बड़ी बहन पुष्पा की शादी हो चुकी थी। राधा को माँ बाप स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही जवानी की मंजिल में कदम रखा तो उसके पिता रामलाल ने प्रकाश नाम के आदमी से उसकी शादी कर दी।

राधा के गरीब माँ बाप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्मों रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं, और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं, या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों न हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़क कर आग लगवाई जाती है तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था। वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

0: कर लो।
1: मगर ऐसा नहीं था, वो रातों को रोती रहती थी, यहाँ तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था। कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपए की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपए नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके, फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जा यहाँ से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी

पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसटने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगें और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती, वहाँ के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए वो वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिले रहम लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसकी हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो ये है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं।

थोड़ी देर बाद एल्यूमिनियम के कटोरे में एक रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहाँ क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के के कटोरे को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला न सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था। उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी के जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं। लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूँ।

पर तुम मरना क्यों चाहती हो? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें ये पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं। हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूँ हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नजर संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूँ, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूँ। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूँ, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे। उनकी हार होगी, तुम्हारी जीत होगी और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

चंद पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने

उसे जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इसी दौरान उसकी नजर अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहाँ खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ाकर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी, बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।

संत बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप

चलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूँ? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है, मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है, माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।

मौसी ही मेरी माँ है और वही मेरे बाप भी है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूंगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपनी कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है, सब दुनिया के बनाए हुए उसूल हैं। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें, कोशिश जरूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुक्मणी स्टेज पर पहुंची।

रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती हैं, जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आएं और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है, उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए। लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

गीतों भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं, 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत।

0: अजी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

अशोक खोसला की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विशेष प्रसारण।

साथियों, आज देशभर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी यही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहां पहुंचाने के लिए।

हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते, इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं पांच देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ पांच देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई, और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है, दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। UAE के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा ये सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी। और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी।

साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नेदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, एएसएमएल, एएसएमएल के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। एएसएमएल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल मैन पावर की बहुत जरूर पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों,

आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा और स्वाभाविक है रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं, तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर

कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है। यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और न ही मैं भी भूलता हूं। उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है, रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इस दिन मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ा रहे थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेट बनाते हैं, पैकेट बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इस कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है।

सोसाइटीज को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से

देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो Tier 2 और Tier 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लीड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही हैं। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में
पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका

0: भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव, नागरिक देवो भव। नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रोजगार मेला 2026 कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण। ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। 12 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत

0: दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग मिडिल सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करके धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस ने किसानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। विभाग की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 15 भूस्वामियों की 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देशभर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में 3री बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रूपये तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रूपये हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Mako. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including the Ministry of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. addressing the

0: आनंद है। घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ मंजुला
1: और मैं हूँ प्रतिभा। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के फिल्म गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर।
1: और देखो,
0: और बिल्कुल बिल्कुल बोलो क्या बोलना।
1: देखो भाई मंजुला, देखो घर आंगन कार्यक्रम है जहां पर बात होगी परिवार की, सेहत की, करियर की भी, और इतिहास की, गहराइयों की, संस्कृति की, और बहुत कुछ होगा आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि जिंदगी के छोटे बड़े पहलुओं की हम यहां बात करते हैं, है ना।
0: बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ। खुद की पहचान बनाने वाली महिलाएं ही दुनिया बदलती हैं। अपने सपनों को पंख दो, आसमान खुद रास्ता दे देगा। जब एक स्त्री अपनी पहचान खुद बनाती है तो वो सिर्फ जिंदगी नहीं बदलती, पूरे परिवार, समाज, आने वाली पीढ़ियों की सोच बदल देती है।
1: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो इसी सोच के साथ शुरू करते हैं आज का सफर। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम घर आंगन।

0: मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। अभी आपने ये सुना फिल्म थी नीला आकाश।
1: और अब बात करते हैं कि ऐसी महिला की जिन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक नया रास्ता बनाया। यह कहानी है भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी की। आज के समय में डॉक्टर बनना एक करियर विकल्प है, लेकिन जरा सोचिए 18वीं सेंचुरी में जब लड़कियों की पढ़ाई तक पर सवाल उठते थे तब क्या होता था।
0: बिल्कुल, तब एक लड़की को डॉक्टर बनने का फैसला कितना बड़ा कदम रहा होगा ना मंजुला। आनंदीबाई का जन्म 1865 में हुआ। कम उम्र में शादी हुई, जो उस समय आम बात थी। उनकी जिंदगी का एक मुश्किल मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने नवजात बेटे को खो दिया।
1: और अपनी संतान को खो देने के बाद उन्होंने ये प्रण लिया कि वो एक दिन डॉक्टर बनेंगी और ऐसी असमय मौत को रोकने का प्रयास करेंगी। उनके पति गोपाल राव ने भी उन्हें भरपूर सहयोग दिया और हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया।
0: बिल्कुल, और देखो, एक भारतीय महिला उस दौर में विदेश जाकर मेडिकल पढ़ाई करने का निर्णय लेती है। न भाषा आसान, न हालात, लेकिन इरादा एकदम साफ था। वो अमेरिका गई, पढ़ाई की और 1886 में मेडिकल डिग्री हासिल की। आनंदीबाई जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर बन गई और उन्होंने इतिहास रचा।
1: ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, ये उस सोच की जीत थी जो समाज से आगे चलने की हिम्मत रखती है। उनकी जिंदगी बहुत लंबी नहीं रही, सिर्फ 21 साल की उम्र में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उससे पहले वो एक ऐसा रास्ता बना चुकी थी जिस पर आज लाखों महिलाएं आत्मविश्वास से चल रही हैं।
0: और कभी कभी देखो, बदलाव के लिए लंबी उम्र नहीं बल्कि बड़ा इरादा चाहिए होता है। आज जब हम अस्पताल में जाते हैं, महिला डॉक्टर से मिलते हैं या किसी लड़की को बड़े सपने देखते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उस रास्ते की शुरुआत आनंदीबाई जैसी महिलाओं ने ही की थी।
1: और सपना छोटा हो या बड़ा मायने नहीं रखता, हौसला उसे सच बना दे बस इतना ही काफी होता है। कुछ लोग उम्र से नहीं अपने काम से जीते हैं और वही दुनिया में असली निशान छोड़ जाते हैं।

0: साधना सरगम और कुमार शानू की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी जुर्म।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 तक सिर्फ FM गोल्ड पर।
3: और दोस्तों, वक्त बदलता है, तकनीक बदलती है, लेकिन कुछ आवाजें समय से परे होती हैं। हम उसी आवाज का जश्न मना रहे हैं, आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों का। आकाशवाणी सिर्फ एक प्रसारण सेवा नहीं है, बल्कि भारत की धड़कन रही है। वो दौर जब एक रेडियो के आसपास पूरा परिवार जुटता था और हर कार्यक्रम एक साझा अनुभव बन जाता था।
0: और फिर आया डिजिटल युग और लगा कि शायद रेडियो पीछे छूट जाएगा, लेकिन आकाशवाणी ने खुद को और भी करीब आ गई। आज आकाशवाणी सिर्फ AM तक सीमित नहीं, बल्कि FM की दुनिया में भी इसकी मजबूत पहचान है। 1993 में आकाशवाणी ने एक नई पहल की, निजी कंपनियों को FM पर एयर टाइम देना शुरू किया।
3: दिल्ली और मुंबई से शुरू हुई ये पहल जल्द ही बड़े शहरों तक पहुंची और इसके साथ ही कंटेंट भी बदला। म्यूजिक, चैट शो और शहरी अंदाज के प्रोग्राम जो हैं वो लोकप्रिय हुए। आज यही FM हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, गाड़ी में, फोन में, हर जगह।
0: और अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, मोबाइल एप्स और लाइव चैनल लिंक के जरिए आप दुनिया के किसी भी कोने में आकाशवाणी को सुन सकते हैं। पॉडकास्ट ने भी सुनने का तरीका बदल दिया है, जहां समय की कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ आपकी पसंद मायने रखती है।
3: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा, तेजी से बदलती इस दुनिया में भी आकाशवाणी वही सुकून देती है जहां आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। 90 साल का ये सफर सिर्फ तकनीक का नहीं, बल्कि भरोसे और जुड़ाव का है। तो सुनते रहिए, क्योंकि माध्यम बदलता है, लेकिन सच्ची आवाज हमेशा साथ रहती है।

0: बात करते हैं स्वयं सहायता समूह की मंजुला है ना, यानी कि SHG की, जो आज महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रहा है, या यूं कहें कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के विकास की सीढ़ी है।
1: बिल्कुल सही कहा, ये 10 से 20 लोगों यानी मुख्य रूप से महिलाओं का समूह होता है, जो समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने और मजबूत करने के उद्देश्य से एक साथ मिलकर काम करते हैं।
0: बिल्कुल, तो जानते हैं कि SHG कैसे काम करता है। समूह के सभी सदस्य हर महीने एक छोटी राशि एक साझा फंड में जमा करते हैं। जब किसी सदस्य को पैसे की जरूरत होती है तो समूह जमा राशि में से कम ब्याज पर उसे लोन देता है।
1: और SHG का उद्देश्य लोगों विशेषकर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ग्रामीण और शहरी जरूरतमंद को भारी कर से बचाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, उनमें नेतृत्व क्षमता के विकास करना, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और इस स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य है।
0: बिल्कुल, और देखो भारत सरकार और राज्य सरकार महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाती हैं और सबसे प्रमुख जो है वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है।
1: बिल्कुल, और इसके तहत समूह को शुरुआती आर्थिक सहायता दी जाती है। अधिक जानकारी और अपने नजदीकी समूह से जुड़ने के लिए आजीविका मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं।
0: और देखिए मंजुला, जानकारी तो हमारे श्रोता लेंगे ही, लेकिन हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, और जिसके लिए उन्हें हमें मेल करना होता है, और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com, और हमें इंतजार रहेगा हमारे श्रोताओं के संदेशों का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी तकदीर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: और प्रतिभा, गर्मी की जो छुट्टियां होती हैं वो सिर्फ घूमने का बहाना नहीं बल्कि खुद को फिर से खोजने का मौका होती हैं। और अगर आप भीड़ से हटकर कुछ अलग, कुछ खास ढूंढ रहे हैं, शिमला, मनाली, मसूरी, ये सब बहुत हुआ, तो आज की ये यात्रा आपके लिए है। आज हम ले चलेंगे आपको उन जगहों पर जो सिर्फ देखी नहीं जाती है, महसूस की जाती है।
0: बिल्कुल। और देखो, सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को ले चलते हैं चोपटा, है ना, जहां हर सुबह एक नई शुरुआत लगती है। यहां की असली खूबसूरती सिर्फ उसके नजारों में नहीं, उसके सन्नाटे में है,
2: शांति में।
0: यहां का तुंगनाथ मंदिर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, और वहां तक का जो ट्रैक है, हर कदम पर बदलते नजारे आपको देखने को मिलेंगे। और जब आप चंद्रशिला शिखर पर सूर्योदय देखते हैं तो वो पल कैमरे में नहीं बल्कि दिल में कैद होते हैं।
2: क्या बात है, तुम तो कविता पढ़ दिया तुमने। और शानगढ़, जहां वक्त धीमा हो जाता है, शानगढ़ की पहचान है उसका विशाल घास का मैदान, इतना खुला कि लगता है जैसे आसमान जमीन को छू रहा हो। यहां एक शांगचूल महादेव मंदिर है जहां के आसपास का इलाका बेहद पवित्र माना जाता है, जहां आज भी कोई पक्का निर्माण नहीं होता है।
0: और देखो, तवांग भी किसी लिहाज से कम नहीं है। यहाँ हर मोड़ पर एक कहानी तवांग को सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि और गहरा ही बनाती है। और यहाँ का जो तवांग मठ है वो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। यहाँ शांति सिर्फ महसूस नहीं, सुनाई भी देती है। रास्ते में सेला पास, बर्फ से ढकी ऊंचाई और सेला झील जो बादलों के बीच तैरती सी लगती है, और फिर बुमला पास जहां भारत चीन सीमा है, और तवांग आपको ये नजारे ही नहीं देता बल्कि सुकून भी देता है।
2: बिल्कुल सही। और हाफलोंग बादलों का घर है, हाफलोंग की सबसे खास जगह है हाफलोंग झील। सुबह की धुंध में ढकी हुई जैसे कोई पेंटिंग हो यहाँ के पहाड़ियों पर, ट्रैकिंग और बर्ड वॉचिंग जहाँ हर मोड़ पर कुछ नया दिखता है। और अगर आप किस्मत वाले हुए तो बादल इतने करीब होंगे कि आपको छूकर निकल जाएंगे। हाफलोंग शोर से दूर नहीं बल्कि शांति के और करीब आपको ले जाता है।
0: और कनाताल की बात करें तो सादगी में छुपी खूबसूरती कनाताल का जो है वो सबसे बड़ा आकर्षण है उसका यहाँ पर अनछुआपन। यहाँ एक सुरकंडा देवी मंदिर ट्रैक है, छोटा लेकिन ऊपर से दिखने वाला 360 डिग्री व्यू, बस ये सब देखने के लायक। कनाताल इको पार्क, यहाँ देवदार के पेड़ों के बीच चलना अपने आप में एक थेरेपी जैसा है। और रात में कैंपिंग के दौरान तारों से भरा आसमान जो शहरों से अब बिल्कुल नहीं दिखाई देता।
2: तो दोस्तों, इस बार सिर्फ जगह मत बदलिए, अपना नजरिया बदलिए, भीड़ से दूर जाइए उन रास्तों पर जहाँ कम लोग जाते हैं, क्योंकि अक्सर वही रास्ते आपको खुद से मिलाते हैं।

0: अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार को फिल्म सीता और गीता से।
1: और मंजुला, देखो आज जब हम किसी भी क्षेत्र में नजर दौड़ाते हैं तो हम महिलाओं की भागीदारी हर जगह पाते हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब हुई हैं। शिक्षा, तकनीकी, विज्ञान, रक्षा से लेकर मनोरंजन, हर क्षेत्र में महिलाओं ने सफलता पाई है।
0: बिल्कुल सही कहा, रूढ़िवादी सोच को पीछे छोड़ते हुए आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। तो टूर गाइड, इसको भी अपने प्रोफेशन के रूप में अपनाया जा सकता है। टूर गाइड के रूप में महिलाओं की भूमिका बड़ी है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त स्वतंत्र तो बना ही रहा है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस और सांस्कृतिक जो परीक्षा होता है उसमें भी महिलाओं को मजबूत बना रहा है।
1: बिल्कुल, और देखो साथ ही पर्यटकों के साथ बातचीत करके विदेशी भाषा सीखने और विभिन्न संस्कृतियों को समझने का सुनहरा अवसर भी मिलता है। महिला पर्यटक विशेष रूप से महिला गाइड को ही प्राथमिकता देती है, और कुछ भी काम देखो आसान नहीं होता, अपने साथ चुनौतियां भी लाता है।
0: इस काम में भी चुनौतियां हैं, असुरक्षा भाव बना रहता है, साथ ही लंबे टूर पर जाने या कई दिनों तक घर से बाहर रखने के कारण परिवार और बच्चों की देखभाल में संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल, और देखो अगर हमारे जो श्रोता हैं उनमें कोई महिलाएं हैं, अगर वो टूर गाइड बनना चाहती हैं तो कम से कम इसके लिए जो योग्यता है वो ये है कि 12वीं पास होना जरूरी

0: जरूरी है। यदि आप पर्यटन या इतिहास में डिग्री या डिप्लोमा करते हैं तो ये भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। और आप किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट इन टूरिस्ट गाइड या डिप्लोमा इन ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट भी कर सकती
1: हैं। बिल्कुल सही कहा। तो आप ट्रेवल कंपनियों के साथ जुड़कर काम कर सकती हैं या फिर एयरबीएनबी एक्सपीरियंस जैसे एप्स और वेबसाइट के माध्यम से अपना खुद का टूर भी डिजाइन और बेच सकती हैं। तो आप भी अपने सपने को पूरा कीजिए और इस डिफरेंट तरीके के करियर को जरूर अपनाएं।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी बुलंदी।
1: बिल्कुल। और प्रतिभा, गर्मियों का मौसम आ चुका है और धूप, पसीना और धूल, ये तीनों मिलकर हमारे बालों की हालत खराब कर देते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा समर हेयर केयर रूटीन जो आसान भी है और असरदार भी। तो सबसे पहली और जरूरी बात, साफ सफाई। गर्मियों में सिर की त्वचा जल्दी तैलीय हो जाती है, इसलिए हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार हल्के शैम्पू से बाल धोना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, तेल लगाना ना भूलें, नारियल या बादाम का हल्का सा तेल हफ्ते में 1 से 2 बार 20 से 30 मिनट के लिए।
0: और अब बात करते हैं असरदार घरेलू हेयर मास्क के। मुल्तानी मिट्टी, दही, एलोवेरा जेल और करी पत्ता के पाउडर को मिलाकर एक पेस्ट बनाइए। इसे बालों की जड़ों से लेकर पूरे बालों में लगाइए और 20 से 25 मिनट के बाद इसे धो लीजिए।
1: ये आपके सिर को ठंडक भी देगा, अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करता है और बालों को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाता है।
0: और एक और जरूरी बात यह कि गर्मियों में कंडीशनर का इस्तेमाल करने से बचें। इसके बजाय बाल धोने के बाद हल्का सा हेयर सीरम लगाएं जो टॉक्सिन फ्री हो। इससे आपके जो बाल हैं वो मुलायम रहेंगे, सुलझे हुए रहेंगे और बिना चिपचिपाहट के रहेंगे।
1: और हाँ, शरीर को भीतर से ठंडा और तरोताजा रखना भी उतना ही जरूरी है।

भरपूर पानी पिएं और फलों को अपने भोजन में शामिल करें। बाहर निकलते समय बालों को धूप से बचाने के लिए दुपट्टा या टोपी पहने या फिर स्कार्फ लगाएं। तो दोस्तों, इस गर्मी अपने बालों को थोड़ा अतिरिक्त ध्यान दीजिए, क्योंकि जो हमारे अगर जो बाल हैं वो स्वस्थ रहेंगे तो हमें असली खूबसूरती भी देंगे। लहराते बालों में छुपा है क्योंकि एक राज, और सादगी में भी झलकता है इनका अंदाज़।

0: ये निखरा हुआ चेहरा, ये परेशान जुल्फें, कुछ तो कहिए मेरी सरकार, इरादा क्या है?
1: क्या
0: क्या तेरी जुल्फें हैं?

0: सब उस्ताद हैं। अभी आपने इस फिल्म से गीत सुना, आवाज थी किशोर कुमार और आशा भोसले की।
1: अब बात ऑनलाइन होने वाली धोखाधड़ी के मामलों से जुड़ी हुई। आज डिजिटल अरेस्ट जैसे शब्द सुनने में आम लगते हैं। डिजिटल अरेस्ट एक फ्रॉड का तरीका है जिसमें अपराधी पुलिस, सीबीआई, ईडी या कस्टम अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के जरिए व्यक्ति को डराते हैं कि वो गिरफ्तार हो चुका है। वे पीड़ित को घर में ही डिजिटल रूप से कैद कर लेते हैं और छोड़ने के बदले पैसे मांगते हैं।
0: बिल्कुल, और देखो जबकि कानून में ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं है, डिजिटल अरेस्ट करने के लिए जालसाज तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जैसे कि आपके नाम का कोई कुरियर पकड़ा गया जिसमें गैर कानूनी सामान है, या आपके आधार से धोखाधड़ी करना और ये कहना कि आपका बैंक खाता या आधार कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ है।
1: बिल्कुल सही। तो वीडियो कॉल पर फर्जी वर्दी पहनकर गिरफ्तारी का वारंट दिखाना, पीड़ित को वीडियो कॉल पर बने रहने के लिए मजबूर करना और घर से न निकलने की धमकी देना। ऐसे में घबराए नहीं, पुलिस कभी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती। तुरंत कॉल को काट दें और पुलिस की साइबर अपराध हेल्पलाइन को रिपोर्ट करें।
0: श्रोताओं, जानकारी के अभाव में आज बहुत से लोग इस तरह के स्कैम का शिकार हुए हैं और हो भी रहे हैं, तो ऐसी किसी भी तरह की परिस्थिति में संयम बनाकर रखें और अपने घर के लोगों से बात जरूर करें।

0: मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में अभी आप एक गीत सुन रहे हैं, फिल्म है मेरे सनम।
1: बिल्कुल, और आज के इस सुहाने सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक नया दिन, नई ऊर्जा, नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। दीजिए मंजुला
0: प्रतिभा को इजाजत।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।

0: ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देशभर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रूपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रूपये हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 1:11 चार सेकंड हुए हैं और

इस वक्त कलाकार बेमिसाल। आज का ये बेहतरीन सफर तय करेंगे गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की बातों और यादों के साथ। हिंदी सिनेमा के मशहूर गीतकार और शायर मजरूह सुल्तानपुरी, जिनका असली नाम रहा असरार उल हसन खां। इनके लिखे गीतों में शेर व शायरी के जरिए जिंदगी के अनछुए पहलुओं से रूबरू कराने की जबरदस्त ताकत रही। इनकी कलम की स्याही नज्मों के रूप में एक ऐसी गाथा बन चारों तरफ फैली जिसने उर्दू शायरी को जीवन के हर रंग रूप से जोड़ दिया। तो यही असरार उल हसन खां बन गए मजरूह सुल्तानपुरी जब ये फिल्मी दुनिया से जुड़े। रुमानियत को भी इन्होंने एक नया जामा पहनाया और इनके लिखे गीतों की बहार आज भी हमारे चारों तरफ फैलेगी। 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय करते हुए।

0: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी गोल 100.1 और जाने माने शायर और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी का जिक्र हो रहा है इस वक्त। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जन्मे मजरूह सुल्तानपुरी के पिता एक अच्छे ओहदे पर थे। वो बेटे को भी अच्छी ऊंची तालीम दिलाना चाहते थे। मजरूह ने लखनऊ के तकमील उल वीब कॉलेज से यूनानी पद्धति की मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण की, एक क्वालिफाइड हकीम के तौर पर काम भी किया, साथ साथ उनका शौक भी परवान चढ़ता रहा। बचपन से ही शेर व शायरी का उन्हें शौक रहा। आसपास होने वाले मुशायरों में वो शिरकत भी करते रहे। इसी के चलते शायरी की महफिलों में उन्होंने खूब नाम कमाया। वहां वाही लूटी, बस मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ बाद में उन्होंने अपना सारा ध्यान इसी तरफ लगा दिया, यानी कि शेर व शायरी की तरफ और लिखने की तरफ। उनकी कलम का जादू जितना चलाना वो तो सर चढ़कर बोला ही, और प्यारे प्यारे गीतों की बहार भी इस वक्त हमारे चारों तरफ फैली हुई है। एक और दिल को छूने वाला गीत उनकी कलम से निकला हुआ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी गोल्ड 100.1 कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय कर रहे हैं और बात हो रही है जाने माने शायर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी साहब की और साथ थे आपकी अंजलि। तो फिर जब हमने देखा कि शायरी में इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से डुबो दिया और लिखने लगे और महफिलों में शिरकत करने लगे, ये सिलसिला जो था बढ़ता गया इनका। शायरी करने के दौरान ही उनकी मुलाकात जिगर मुरादाबादी से हुई और इसी तरह शेर व शायरियों की महफिलों से ही उनकी जान पहचान कुछ फिल्मी दुनिया के दिग्गजों से हुई। जाहिर सी बात है, अब फिल्मी दुनिया में कदम रखना ही था। कैसे हुई इनकी फिल्मी दुनिया में शुरुआत गीतकार के और पर, तो इसके भी जो गीत लिखने की शुरुआत मुंबईया फिल्मों के लिए जो ये जो कहानी है ना, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। बात बस इतनी सी है कि एक बार 1945 की बात है, सब्बो सिद्दीकी इंस्टीट्यूट ने एक मुशायरे का संचालन किया। बस इसी में हिस्सा लेने के लिए वो मुंबई चले आए। यही उनकी शायरी सुनकर मशहूर फिल्म निर्माता AR कारदार उनसे बेहद प्रभावित हुए और उन्हें

ऑफर दे डाला कि उनकी फिल्मों के लिए भी मजरू गीत लिखे, लेकिन साहब उस वक्त तो मजरू साहब ने कारदार साहब को मना कर दिया क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाए कि फिल्मों के लिए लिखना सही रहेगा या नहीं। फिर क्या हुआ? फिर तो हम जानते हैं क्या हुआ कि गीत जो उनकी कलम से रचे गए, लिखे गए और लोगों के दिल में बस बसते ही चले गए। तो एक और गीत उनकी कलम से निकला कारवां फिल्म का, गोरिया कहां तेरा देश रे।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय कर रहे हैं और बात कर रहे हैं जाने माने गीतकार शायर मजरू सुल्तानपुरी साहब की। अंजलि है आपके साथ और जो हमने बात की कि भाई कैसे इनका फिल्मी करियर शुरू हुआ, तो जब इनकी मुलाकात बहुत सारे जैसे फिल्मी दुनिया के दिग्गजों से हुई तो फिर बात तो बननी ही थी और एक तरह से एक और इन्हें मतलब फिल्मी दुनिया में जब इन्होंने कदम रखा तो एक और इन्हें जो बोलते थे गाइडेंस मिली या सजेशन मिली इनके दोस्त की तरफ से। मजरू के दोस्त बन चुके जिगर मुरादाबादी के कहने और समझाने पर भी मजरू सुल्तानपुरी ने फिल्मों के लिए लिखना शुरू कर दिया। संगीतकार नौशाद ने एक बार उन्हें एक धुन सुनाई और उस पर कुछ लिखने को कहा। उनकी लेखनी से नौशाद साहब इतने प्रभावित हुए कि उन्हें फिल्म शाहजहां के गीत लिखने की पेशकश कर डाली। 1946 में आई फिल्म शाहजहां का ये गीत जब दिल ही टूट गया काफी लोकप्रिय हुआ और इस तरह यह सिलसिला शुरू हुआ तो कहीं थमा नहीं, बस चलता ही रहा चलता ही रहा। इसी तरह से भाई बातें हमारी भी होती रहेंगी। कलाकार बेमिसाल का ये सफर चलता रहेगा। 1:33:54 हुए हैं और ये बेहतरीन संगीत मेरा प्यार भी तो है साथी फिल्म से मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में नौशाद साहब का संगीत बद किया हुआ और लेखनी का जादू तो यहां पर भी चला है मजरू साहब का।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 अंजलि है आपके साथ। कलाकार बेमिसाल का यह सफर तय करते हुए जाने माने गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की हम बातें आपके साथ साझा कर रहे हैं। मजरूह सुल्तानपुरी और नौशाद साहब की जोड़ी ने फिल्मी दुनिया को बेहद कामयाब गीतों का खजाना सौंपा। अंदाज, साथी, पाकीजा, तांगे वाला, धर्म का आटा, गुड्डू, इन फिल्मों में रचित गीतों की सफलता के बाद उन्होंने फिल्म जगत में अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली। इसी तरह से मजरूह सुल्तानपुरी की जोड़ी एसडी बर्मन साहब के साथ भी खूब जमी और इनकी फिल्में रही पेंगेस, 9-2-11, सोलमा साल, बात एक रात की, तीन देवियां, ज्वेल थीफ, मेरे जीवन साथी अभिमान, बहुत सारी और भी फिल्में हैं, लंबी लिस्ट है। तो मजरूह सुल्तानपुरी के जो रचे कलम से रचे हुए गीत है ना, उनके बारे में जितना बयां करें ना उतना कम रहेगा, वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन हमें फिर मौका मिलेगा ना, फिर हम उनके बारे में ढेर सारी बातें और उनके लिखे ढेर सारे गीत आप तक पहुंचाएंगे। इसी तरह से तो बात मजरूह सुल्तानपुरी के जो सिग्निफिकेंट काम था ना उसे पुरस्कृत भी किया गया, उसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता था। 1993 में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। इसी तरह 1964 की अगर हम बात करें उससे पहले तो दोस्ती फिल्म के गीत चाहूंगा मैं तुझे के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार के फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो क्यों ना ये गीत ही सुन लिया जाए, दोस्ती फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, और कलम का जादू चला है मजरू सुल्तानपुरी साहब का, और बहुत ही प्यारा सा गीत है, म्यूजिक इस गाने का तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, जिनका इस वक्त जिक्र हो रहा है, जाने माने निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन की फिल्मों के लिए भी मजरूह सुल्तानपुरी ने खूब लिखा। सबसे पहले उनकी फिल्म पेइंग गेस्ट के गीत लिखे, उसके बाद बहारों के सपने, प्यार का मौसम, कारवां, यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं, जमाने को दिखाना है और भी कई सुपरहिट मूवीज रही जिनके लिए उनके लिखने का सिलसिला चलता रहा। आज कलाकार बेमिसाल में हमने इन्हें याद किया है, मजरूह सुल्तानपुरी साहब को, जिनकी कलम को सलाम करते हुए यही कहेंगे कि वक्त हमें ज्यादा इजाजत तो नहीं दे रहा उनके बारे में और भी बातें आपसे साझा की जाए, लेकिन उनके रचे गीतों को फिल्म प्रेमी ऐसे ही हमेशा सुनते रहेंगे, सराहते रहेंगे और उन्हें याद करते रहेंगे।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकार के मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत हासिल करने वाले 51,000 से ज्यादा लोगों को तकर्रीरनामे सौंपे। वजीर आजम ने कहा कि भारत नौजवानों को आलमी सतह पर रूशनास कराने और मौके पैदा करने के लिए दुनिया के कई मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। बिहार हुकूमत अगले 5 वर्षों के दौरान रियासत में 1,00,000 असातिज़ा को मुलाजमत देगी। CBSE ने 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तहान की जवाब की कॉपियों की स्कैन नकल हासिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 24 मई कर दी है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में वजीर आजम मोदी से मुलाकात करेंगे। WHO ने कांगो में एबोला की बुंडी बुगियो किस्म के खतरे को बहुत ज्यादा के जुमरे में शामिल कर दिया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा।

0: जांच कराने के लिए भारत दुनिया के अलग अलग मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि भारत पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन शराकतदार बन रहा है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: जनाब मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के अज्म के लिए हर भारतीय काम कर रहा है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के नौजवानों के लिए मुलाजमत के नए मौके पैदा किए जा रहे हैं।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री आरसीएस कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला में 19वां रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले में 281 नए मुस्तफिदीन को तकरूर इनाम तकसीम किए गए। आरसीएस कपूरथला में पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप पुरी ने प्रोग्राम की सदारत करते हुए बताया कि रोजगार मेला एक ताकतवर कौमी सरमाया बन गया है जो बर वक्त और शफाफ मुलाजमत को यकीनी बनाता है।
2: ये हमारा देश भर में रोजगार मेला ये एक पावरफुल नेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया है जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, मेरिट बेस्ड और टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट के लिए। मोर देन 5 लाख यंग इंडियंस हैव ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्री 4.0, जॉब रोल्स एज डेटा इंजीनियर्स, मशीन लर्नर्स, लर्निंग इंजीनियर्स, क्लाउड स्पेशलिस्ट एंड सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स। इंडिया इज प्रिपेयरिंग आर यंग पीपल टू प्रोवाइड लीडरशिप इन दैट एरिया।
0: बाद में उन्होंने 93 नए मुलाजमत हासिल करने वालों को तकर्रुरीनामे सौंपे। पटियाला में मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत हासिल करने वाले 188 नए उम्मीदवारों को तकर्रुरीनामे सौंपे गए। पेट्रोलियम कुदरती गैस और सयाहत के मरकजी वजीर ममलिकत सुरेश गोपी ने तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का इफ्तिताह किया। 19वें कौमी रोजगार मेले के हिस्से के तौर पर इसका एहतमाम किया गया था। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की तरफ से शुरू करदा रोजगार मेला भर्ती मुहिम से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है और इसका मकसद युवा शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति का रूप देना है। उन्होंने कहा कि तकर्रुरनामे एक मुकद्दस फरीजे का आगाज है। जनाब गोपी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वह अपनी तवानाई कौमी तामीर में इस्तेमाल करें और विकसित भारत के नस्बुलैन को पूरा करें। पार्लियामानी उमूर और इत्तलात और नशरियात के वजीर ममलिकत एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार ने 2047 तक विकसित भारत को अमली जामा पहनाने का तहैया कर रखा है। उन्होंने ये बात चेन्नई में आईसीएफ रोजगार मेले से खिताब करते हुए कही। उन्होंने यह भी कहा कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की क्यादत में मुल्क डिजिटाइजेशन, रोजगार के मौके, बुनियादी ढांचे और कारोबार को आसान बनाने के मामलों में तेजी से तरक्की कर रहा है। डॉ मुरुगन ने बताया कि वजीर आजम की यकीन दहानी के मुताबिक अब तक मरकज ने 12 लाख रोजगार मुहैया कराए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि अगले 5 वर्षों के दौरान 1 लाख असातिज़ा को मुलाजमत दी जाएगी। तालीमी महकमे की एक आला सतह की जायजा मीटिंग के दौरान वजीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि वह इस बात को यकीनी बनाए कि हर साल कम से कम 25,000 असातिज़ा को मुलाजमत दी जाए। उन्होंने कहा कि असातिज़ा की तकर्रुरी से मुतालिक नोटिस हर साल जुलाई के महीने में जारी किया जाएगा। उधर वजीर तालीम मिथिलेश तिवारी ने बताया कि वजीर आला के ऐलान के बाद असातिज़ा की तकर्रुरी के इम्तहान TRE-4 के चौथे दौर से मुतालिक खदशात अब खत्म हो गए हैं। उन्होंने इत्तला दी कि महकमे तालीम जल्द ही खाली असामियों का जायजा लेकर मुलाजमत

0: प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
0: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
0: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित आईसीएफ में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉ सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट

0: चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देशभर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रूपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रूपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। यह गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा

0: प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
1: 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर स्वागत है आपका 100.1 एफएम गोल्ड पर गोल्ड स्टूडियो से। वक्त हुआ है 2:31 और आप ट्यून इन हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात में। गोल्ड स्टूडियो से आपका स्वागत करती हूं, मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा और मेरे साथ हैं
2: निरंकार। करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार।
1: जी
2: पूजा जी, हम जानते हैं हमारे किसान भाई परंपरागत तरीके से खेती करते हैं, लेकिन जब वह वैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं तो ज्यादा अच्छी गुणवत्ता और अच्छा उत्पादन पाने की उम्मीद कर सकते हैं।
1: जी
2: और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि अगर हम खेती खुले खेत में करते हैं उसमें कई सारी समस्याएं आती हैं, और जब हम संरक्षित क्षेत्र में यानी पॉली हाउस के अंदर या पक्के स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी फसल लेते हैं तो कई उसमें फायदे भी होते हैं, खर्चा भी आता है वैसे तो, लेकिन फायदे भी बहुत हैं। बिना मौसम

0: के कई चीजें हम तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके की जो तकनीक है उससे हम बहुत सारी अच्छी फसलें ले सकते हैं, बेमौसम फसलें ले सकते हैं। इसी विषय पर आज हम अपने कार्यक्रम में जानकारी लेंगे और जो संरक्षित तकनीक से किस प्रकार से मशरूम को उगाएं। और मशरूम आप जानते हैं, मशरूम एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है,
1: बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत स्वादिष्ट,
0: गांव देहात तक इस्तेमाल की जा रही है,
1: बहुत स्वादिष्ट भी होता है और प्रोटीन और फाइबर से भरपूर भी होता है
0: और बहुत सारे इसके व्यंजन बनते हैं।
1: हाँ।
0: बहुत पसंद है लोगों को, तो क्यों ना हमारे किसान भाई ऐसी फसल को उगाएंगे तो ज्यादा लाभ ले पाएंगे और ज्यादातर लोगों को इसे उपलब्ध करा पाएंगे। लेकिन इसे हम संरक्षित तकनीक से कैसे उगाएं, इस विषय पर आज हम जानकारी लेंगे।
1: बिल्कुल, तो आपने बहुत ही खूबसूरत भूमिका बांध दी है आज के कार्यक्रम के हमारे विषय के बारे में। अपने श्रोताओं को एक बार हम बता दें कि आज किसान की बात में आप जिस विषय पर बातचीत कर सकेंगे और सुन सकेंगे वो विषय है संरक्षित तकनीक से मशरूम उत्पादन। और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में जुड़ गए हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष चंद्र, जो सहायक निदेशक हैं राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान प्रतिष्ठान नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम।
2: नमस्कार, सभी को नमस्कार।
0: और पूजा जी, हमारे जो श्रोता है ना, जब आप सवाल करेंगे, हम बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे, तो उनके जहन में भी कुछ सवाल आएंगे, तो वो किस तरह से हमारे साथ जुड़े उसके लिए भी फोन नंबर बता देते
1: हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बताने ही वाली थी निरंकार जी, आपने बहुत जल्दबाजी में मेरा ध्यान इस तरफ आकर्षित कर ही दिया। चलिए तो बता ही देते हैं अपने श्रोताओं को कि वो हमारे साथ किस तरह जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। करना आपको सिर्फ ये है कि आप हमें एक फोन कीजिए और फोन नंबर आपको नोट करना है। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाएं और उसके बाद अपने फोन कॉल्स को हम तक पहुंचाएं इन नंबर्स के जरिए, यानी 2342-1081 और 2342-1083,
0: यानी 2342-1081 और 2342-1083।
1: बिल्कुल, तो जब तक निरंकार जी फोन कॉल्स हम तक पहुंचते हैं हमारे श्रोताओं के, हमारे सुनने वालों के, हमारे साथियों के, क्यों ना डॉक्टर साहब से हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करें। और सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में रहा है, और मुझ जैसे लोग जो बहुत ज्यादा कृषि और उससे बहुत करीब से जुड़े हुए नहीं है, वो ये जानना चाहेंगे कि सरल भाषा में डॉक्टर साहब आप हमें ये बताइए कि संरक्षित तकनीक का अर्थ क्या है और इसके लिए मुख्य रूप से किन किन बातों या किन किन चीजों का होना जरूरी है।
2: नमस्कार सभी को, जैसा कि आज का जो विषय है संरक्षित तकनीक से मशरूम उत्पादन कैसे करें, शब्द अपने आप में ही काफी कुछ कह जाता है। जैसे मशरूम की खेती हमारे किसान भाई लोग मौसम के हिसाब से करते हैं, मौसम के हिसाब से अलग अलग वैरायटी का पसंद चूज करके वो मशरूम की खेती करते हैं। लेकिन जब उसी मशरूम को सीजन ना हो और जब दूसरे सीजन में हम उस मशरूम को नियंत्रित वातावरण में हम मशरूम की खेती करते हैं, नियंत्रित मतलब जिसमें हम तापक्रम, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ लाइट की जब हम कंट्रोल करके मशरूम की खेती करते हैं, तो वही एक तरह से यह संरक्षित मशरूम उत्पादन की खेती में कहलाता है। संरक्षित मशरूम की खेती या संरक्षित मशरूम की खेती करने में काफी बहुत सारी चीजों का कंट्रोल में होता है और नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं किसान भाइयों को, क्योंकि वह सब कुछ उनके कंट्रोल में होता है।
1: डॉक्टर साहब आपको बीच में रोकना चाहती हूँ, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं फोन पर, उनका कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो।
3: हेलो
1: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें।
3: नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार
1: जी, बताइए अपना सवाल पूछिए।
3: सोनू बोल रहा हूँ, सागरोद गांव, सागरोद उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, जिला बागपत से।
1: जी सोनू जी, जी अपना सवाल पूछिए।
3: मेरा सवाल यह है, जो मशरूम है वो इन दिनों में जो है इसकी खेती कैसे करें इसकी।
1: हाँ डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि
0: मशरूम की अच्छी खेती कैसे करें, ये पूछ रहे हैं वो।
1: हाँ,
0: इस मौसम में मशरूम की अच्छी खेती,
2: समझ गया इनकी बात, समझ गया। अगर अभी चूंकि आप देख रहे होंगे बाहर का टेम्परेचर हमारे देश में लगभग 45 डिग्री के आसपास है, उससे ज्यादा है, इस कंडीशन में अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो हम आपको यही सलाह देंगे, वैरायटी के ऊपर सेलेक्ट करिए, चूंकि यह टेम्परेचर पे जो है मिल्की मशरूम की खेती आसानी से की जा सकती है। अगर इसको आप जो है कंट्रोल कंडीशन में करना चाहते हैं तो थोड़ी सी व्यवस्था करके आप अपने कमरे में कूलर लगा के बहुत आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर बटर मशरूम में जाना चाह रहे हैं तो बटर मशरूम के लिए फिर आपको काफी चीज

0: जो की व्यवस्था करने पड़ेगी उसमें आपको पफ पैनल लगाना पड़ेगा और एएचयू यूनिट लगा के, एएचयू मतलब एयर हैंडलिंग यूनिट, जिसमें आपको उसकी जो टेम्परेचर की डिमांड है, मांग है, वह 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है, उसको आपको जो है आर्टिफिशियल टेम्परेचर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब आप जाके उसकी खेती कर पाएंगे। बाकी अगर आप सीजनल में करना चाहते हैं तो मिल्की मशरूम आपको हम सजेस्ट करेंगे, जो आपको इजीली आप कर सकते हैं।
1: जी, आपने मिल्की मशरूम और बटन मशरूम का जिक्र किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ये क्या मशरूम की अलग अलग किस्में हैं?
0: जी, दोनों की वैरायटी अलग अलग है और दोनों कमर्शियल वैरायटी है। बटन मशरूम सीजनल अगर करते हैं तो उसकी खेती अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक इजिली कर लेते हैं किसान भाई, लेकिन जो कंट्रोल कंडीशन में करते हैं वो 12 महीने के लिए, उनको फिर अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है और उसमें एसी लगा के, चिलर एसी लगते हैं उसमें लगा के, कंट्रोल टेम्परेचर को नियंत्रित करके फिर उसमें मशरूम खेती करते हैं।
2: अच्छा, इन दोनों प्रजातियों की विशेषताएं भी बता पाएंगे?
0: जी, बटन मशरूम की खासियत है, उसको आज की डेट में मार्केट में काफी डिमांड है और काफी प्रचलित वैरायटी हो चुकी है बटन मशरूम। आप अगर आप देखें लोकल मार्केट में काफी इजीली इसको मिल जाता है। मिल्की मशरूम अभी उतनी पॉपुलर नहीं है, जिसको लोग जानते नहीं है, और यह हाई टेम्परेचर पर ग्रो करता है, इसमें फाइबर की मात्रा कुछ ज्यादा होता है। अगर इसको आप शेप की बात करेंगे, इसकी स्ट्राइप मतलब उसका जो तना होता है काफी लंबा होता है और इसकी जो छतरी होती है, कैप जो होती है, काफी छोटी होती है। मार्केट में काफी हाई रेट पे ऑलरेडी ये उपलब्ध है वैरायटी जो है।
1: इनके अलावा भी और किस्में भी होती है?
0: बहुत सारी वैरायटियां हैं मशरूम की, 2500 वैरायटियां हैं, जिससे खाने वाली वैरायटी बहुत कम है, बाकी सब नेशनल वैरायटी है, और कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो नॉन एडिबल है, मतलब पॉइजनस है, जो जंगलों में अपने आप ग्रो करती है, उसको नहीं खाना चाहिए।
2: यानी ये जरूरी है कि हम देखें कि कौन सी खाने वाली है और कौन सी जहरीली है।
0: जी, जो कल्टीवेटेड जो वैरायटियां हैं वही को खाना चाहिए।
1: तो आमतौर पर तो हम देखते हैं कि बटन मशरूम जैसे आपने कहा वही ज्यादा मिलता है।
0: जी,
1: जो हम
0: बटन मशरूम पूरे विश्व में नंबर वन है प्रोडक्शन में, और हमारे भारत में भी नंबर वन पे, दूसरे नंबर पे ऑयस्टर मशरूम है और तीसरे नंबर पे मिल्की मशरूम, जिसकी भी चर्चा हो रही है।
2: कई बार कूड़े के ढेर पे जमी होती है तो गांव में शायद कई लोग इसीलिए सांप की छतरी भी बोलते हैं इनको।
0: वह एक भ्रांतियां हैं,
2: सांप की छतरी शायद इसीलिए कि पॉइजनस हो सकती है।
0: जी जी जी, पॉइजनस नहीं है उसका नाम ही, चूंकि जो हमारे आदिवासी लोग हैं या जो रहते हैं गांव में रहते हैं, तो जो मशरूम अपने आप ग्रो कर जाती है उसके, उसको लोग कलेक्ट करके लाते हैं और खाते हैं, तो उसके जो एडिबल है उसके साथ नॉन एडिबल वैरायटी भी आ जाती है, तो जिसकी वजह से खाने से उनको ऐसे कुछ हार्मफुल उसके अंदर तत्व होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो रिएक्शन करता है और इतना पॉइजनस होता है कि आदमी डेड हो जाता है।
2: तो यानी
0: उससे बचने के लिए जैसे ऐसी घटना न घटे तो लोगों ने उसका नाम ऐसा
1: सांप की छतरी
0: रख दिया, जिससे ऐसी घटना।
2: तो यहाँ ये भी सवाल आता है कि इस तरह की
0: जबकि वह नॉन कल्टीवेटेड वैरायटी है
2: तो उसको खाना नहीं चाहिए।
0: नहीं खाना चाहिए, जो आप पहचान नहीं रहे हैं तो नहीं खाना चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, ये जो गुच्छी जो है वो भी एक प्रकार का मशरूम है?
0: गुच्छी भी एक वैरायटी है, वो मेडिसिनल में वैरायटी यूज होती है और यह अभी पहाड़ों पे या
1: काफी महंगा होता है,
0: काफी महंगी वैरायटी है गुच्छी मशरूम जो है।
2: और व्यंजन क्या क्या बनते हैं इनके?
0: मशरूम के बहुत सारे व्यंजन है, आप जो भी सब्जी आप खा रहे हैं, जो भी सब्जी का आप नाम लेंगे, सबका मशरूम की व्यंजन बन सकते हैं। इसके अलावा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की अगर आप बात करें, जिसमें हम इसका थोड़ा सा वैल्यूएशन करके इसका बढ़ा देते हैं, तो जैसे मशरूम के आप बिस्किट बना सकते हैं, मशरूम नमकीन बन सकता है, मशरूम पापड़ बन सकता है, मशरूम चिप्स बन सकता है, मशरूम टॉफी बन सकती है, मशरूम चॉकलेट है, मशरूम जैम है, जेली है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मशरूम की आज के डेट मार्केट में न उपलब्ध हो।
1: वेरी गुड, मतलब ये सब चीजें मुझे लग रहा था कि शायद नमकीन व्यंजनों का तो हम सब जानते हैं, हमने खाया भी।
0: अगर देखा जाए तो हमारे जो बच्चे हैं,
1: नहीं पता था कि मशरूम से वो भी बन सकते हैं।
0: जी, बच्चे जो है मशरूम को थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, तो अगर उनको हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के रूप में उनको हम दें तो उसको यूज करेंगे, क्योंकि आपको जैसे आप शुरू में चर्चा हो गई कि मशरूम ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक होते हैं, तो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिवार्य भोजन है।
1: बिल्कुल, हम अपने श्रोताओं को निरंकार जी एक बार फिर से बता दें कि आज का विषय है संरक्षित तकनीक से मशरूम उत्पादन, और अगर इससे जुड़े कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से तो आप इन फोन नंबर्स पर हमें स्टूडियो में सीधे डायल कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाएं और उसके बाद 2342-1081 और 2342-1083 इन फोन नंबर्स पर आप डायल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सुभाष चंद्र, जो सहायक निदेशक हैं राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान प्रतिष्ठान नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, वैरायटीज की बात हमने कर ली, संरक्षित तकनीक का अर्थ भी हम समझ गए, लेकिन अगर हमें संरक्षित तकनीक से मशरूम का उत्पादन करना है तो उसके लिए किन किन बातों की, किन किन चीजों की हमें जरूरत होगी? मुख्य रूप से अगर ये सवाल जानना चाहें तो क्या इसका जवाब रहेगा?
0: संरक्षित मशरूम की खेती में हम खास करके बटन मशरूम की बात करना

0: चाहेंगे, क्योंकि बटन मशरूम की अभी आज की डेट में ज्यादा डिमांड है, काफी मांग है। तो जो भी किसान भाई हैं थोड़ा सा इसका प्रशिक्षण लेके इस पे मशरूम का काम करें, तो इसमें जो है पफ पैनल लगा के एक आइडियल कमरा बनाते हैं, जिसमें हम 16x40 का अगर हम बात करें तो एक कमरा बन जाता है और उसमें 1500 बैग के आसपास लग जाते हैं, जिसके लिए 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर वो आर्टिफिशियल टेम्परेचर देते हैं एसी लगा के। दूसरा मॉइस्चर मेंटेन करते हैं, ह्यूमिडिफायर लगा के 80 से 90% मॉइस्चर मेंटेन करते हैं। तीसरा CO2 चूंकि मशरूम के ग्रोइंग के ऊपर बहुत काफी असर पड़ता है, तो अलग अलग स्टेज पे हम कमरे के अंदर CO2 की मात्रा देते हैं। जब उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ कराते हैं उस समय अलग CO2 की मात्रा की जरूरत पड़ती है, जब हम पिनिंग स्टेज या मशरूम के फ्लोटिंग स्टेज पे ले जाते हैं तो अलग टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। वह भी हम आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसकी व्यवस्था देते हैं उसके अंदर। और एक निश्चित समय, मतलब अगर आप देखा जाए तो बटन मशरूम जो है जिस दिन आप कंपोस्ट के अंदर बीज डाल देते हैं उसके एक महीने बाद मशरूम का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और अगले 40 से 45 दिन तक मशरूम आप आती रहती है और मार्केट की डिमांड के हिसाब से उसकी हम तुड़ाई करते हैं और पैकिंग करते हैं, उसकी सप्लाई करते हैं।
1: इसके लिए किसी तरह का कोई प्रशिक्षण भी कहीं दिया जाता है क्या?
0: जी, मशरूम का सभी किसान भाई जो हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो हम उनको यह सलाह देना चाहेंगे कि मशरूम की खेती करने से पहले इसका अच्छी तरह से प्रशिक्षण ले लें, क्योंकि काफी तकनीकी इसके अंदर होती है, उसको समझ के ही आगे इसको आप बढ़ सकते हैं। तो इसका जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है हमारे जो हर जिला में पूरे भारत उसमें कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पर इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता रहता है। इसके अलावा DMR सोलन हिमाचल प्रदेश में जो 12 महीने मशरूम की ट्रेनिंग देते हैं, और हमारा दिल्ली में राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान जनकपुरी नई दिल्ली में भी, यहां भी 12 महीने मशरूम उत्पादन पर संरक्षित खेती और सीजनल खेती दोनों पे इसका आयोजन चलता रहता है। तो हम सलाह देंगे
2: कि केबीके में भी है, होगा
0: हर कृषि विज्ञान केंद्र में,
2: उजवा में, अगर दिल्ली की बात करें,
0: दिल्ली की बात करें तो कृषि विज्ञान उजवा में भी मशरूम की ट्रेनिंग होती है, वहां भी होती है। तो जो भी किसान भाई जहां से बिलोंग करते हैं उनके आसपास कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां से संपर्क कर लें तो वहां उनको प्रशिक्षण मिल जाएगा।
2: जी अच्छा, आपने जैसे जिक्र किया कि संरक्षित खेती के अंदर नुकसान की कम उम्मीद रहती है, तो कितना खर्चा आ जाता है इसमें और किस प्रकार से ये लाभकारी है?
0: अगर संरक्षित खेती में जा रहे हैं तो एक कमरा जैसे कि हमने बताया आइडियल 16x40 का अगर कमरा पैनल पे काम करते हैं बनाते हैं तो लगभग मिनिमम 8 लाख से लेके 15 लाख 16 लाख तक का इसका बजट होता है एक कमरे का। और इसमें जो
1: जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका सवाल हम पहले ले लेते हैं।
3: हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें।
3: जी मैं हेतु उपाध्याय बोल रहा हूँ जी, मैं बांसवाड़ा से हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि बांसवाड़ा राजस्थान।
1: जी जी बताइए।
3: मैं पूछना चाहता हूँ कि मशरूम उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है?
1: डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि मशरूम उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है।
0: आपको बताना चाहें मशरूम की खेती में मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसका जो रॉ मटेरियल जो उसका मीडिया होता है वो कंपोस्ट होता है या सबस्ट्रेट होता है। तो जो रॉ मटेरियल है वो गेहूं का भूसा है, ज्वार का भूसा, बाजरा, मक्का, गन्ना, सरसों की तूड़ी, आप किसी भी कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट मशरूम मिट्टी में इसकी खेती नहीं होती है, इसका एक प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन कराते हैं, फर्मेंटेशन करा के फिर हम उसके कंपोस्ट के ऊपर मशरूम की खेती करते हैं। तो जैसा कि आपका सवाल था कि मिट्टी, तो मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। एक स्टेज आता है जब आप कंपोस्ट में बिजाई कर देते हैं और उसका 10 से 15 दिन का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हम बोलते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ जब कंप्लीट हो जाता है, उस समय केसिंग सॉइल की जरूरत पड़ती है जिसको केसिंग मिट्टी बोलते हैं, लेकिन वह मिट्टी नहीं है, वह एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें गोबर की खाद और कोकोपीट और चावल के छिलके की राख मिला के बनाया जाता है। तो एक टर्म दिया गया है केसिंग मिट्टी है वो,
2: यानी मिट्टी में नहीं बल्कि कंपोस्ट में उगाई जाती है।
0: जी जी
2: जी। तो और वो तैयार मिलती है, कई लोगों ने उसको तैयार करने का काम भी शुरू कर रखा है।
0: जी जो हमारे संरक्षित खेती कर रहे हैं जो किसान भाई, उनके पास पास्टराइज चैम्बर लगे होते हैं और इसके जो कंपोस्टिंग होती है वो पास्टराइज चैम्बर में करते हैं, तो वहां से वो ले सकते हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र जहां पे पास्टराइज चैम्बर उपलब्ध है वहां से भी मिल जाता है, हर जगह नहीं उपलब्ध है, कहीं कहीं पे है पास्टराइज चैम्बर तो वहां से ले सकते हैं। बाकी आप वो देख लें आसपास में जो भी ऐसी प्लांट जहां पे संरक्षित खेती हो रही है तो वहां से केसिंग मिट्टी भी मिल जाएगी रेडीमेड और कंपोस्ट भी मिल
2: जाएगा। और इसका स्पान भी इसी तरह से लेना पड़ेगा,
0: स्पान मशरूम स्पान लेबोरेटरी जो कि वैज्ञानिक तरीके से बना जाता है, तो गवर्नमेंट एजेंसीज भी दे रही है, प्राइवेट एजेंसी भी दे रही
2: है, यानी बीज जो है
0: हाँ जिसको हम बीज बोलते हैं, तो वहां से उपलब्ध।

0: पास ले सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई विशेष समय नहीं रहता ऐसा वर्ष का, हम बोलें कि जब आप बोलें कि मशरूम की खेती कर सकते हैं?
0: नहीं, अगर जब संरक्षित शब्द यूज हो गया, इसका मतलब आप कंट्रोल कंडीशन में जा रहे हो और आप 12 महीने इसकी खेती कर सकते हैं। उसके लिए कोई विशेष सीजन या समय की
1: इंतजार करने की जरूरत नहीं।
2: अच्छा, खर्च की बात कर रहे थे हम, जो कमरा तैयार करेंगे, लेकिन इतना खर्च देख के कई किसान भाई समझेंगे बहुत खर्च आता है, तो सरकार से कुछ सब्सिडी हाँ। सरकार से सब्सिडी भी होगी?
0: जी, इसके गवर्नमेंट जो है इसमें अनुदान दे रही है, अनुदान क्या सब्सिडी दे रही है, अलग अलग जैसे MIDH है वहां से ले सकते हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वहां से ले सकते हैं, 40-50% तक गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे रही है, और वो भी बैंक से लिंक है, वो वहां से संपर्क करके ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं, वहां से देख लें क्या क्या उनके टर्म्स कंडीशन है, उसको फिलअप करके वहां फॉर्म सबमिट करें तो उसको वहां से अब ले सकते हैं।
2: बिल्कुल, और इस तरह से वो इसका फायदा उठा सकते हैं, और जो स्पैन है या कंपोस्ट है वो भी उनको मिल जाएगा, और स्ट्रक्चर के लिए भी उनको खर्चा मिल जाएगा, तो काम शुरू कर सकते हैं।
0: जी,
2: आप अब हम ये जानना चाहेंगे कि शायद एक फोन है,
1: एक और कॉलर निरंकार जी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका कॉल हम पहले ले लेते हैं। हेलो।
3: हेलो
1: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं और अपना सवाल पूछें।
3: मैं रमेश अरोड़ा दिल्ली से बोल रहा हूं।
1: जी रमेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए अपना।
3: और मेरा ये प्रश्न है कि ये जो दिल्ली में जो एटमॉस्फेयर चल रहा है, कौन से एटमॉस्फेयर में मतलब कि इसको खेती की जा सकती है सही?
1: अच्छा डॉक्टर साहब, इनका सवाल वही है जो मैंने अभी आपसे पूछा कि कोई ऐसा विशेष समय रहता है क्या साल का जब हम इसकी खेती कर सके, और उसका जवाब आपने ऑलरेडी दे ही दिया।
0: जी बता सकते हैं कि दोबारा बता देता हूं, अगर बटर मशरूम की खेती करने जा रहे हैं और संरक्षित नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब ऐसी प्लान लगा के नहीं करना चाहते हैं, तो आप अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक कर सकते हैं। जैसे ही आपका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है और उस समय बटर मशरूम खेती नहीं कर पाते हैं, तो ऑयस्टर मशरूम जिसके लिए 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की जरूरत पड़ती है, मतलब है कि मई जून जुलाई 3 महीना छोड़ के बाकी आप 9 महीना मशरूम खेती कर सकते हो। इसके अलावा जैसे अभी जो प्रेजेंट टाइम जो टेम्परेचर चल रहा है, बहुत हाई टेम्परेचर चल रहा है, इस कंडीशन में 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप मिल्की मशरूम खेती कर सकते हैं और बंद कमरे में खेती कर सकते हैं, थोड़ी सी व्यवस्था करके आप बहुत इजिली इसकी खेती कर सकते हो।
1: मतलब कुल मिला के अगर आप बंद कमरे में ऐसा माहौल बना दें जिसमें कि नमी ज्यादा हो और तापमान को आप नियंत्रित रखें, थोड़ा कम रखें, तो आप साल भर ही हम कह सकते हैं कि तीनों जिन वेराइटीज का आपने नाम लिया, बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम, इन तीनों की खेती आप कर सकते हैं,
0: बहुत आराम से कर सकते हैं
1: और लाभ ही लाभ है। और खर्च की बात निरंकार जी आप कर ही रहे थे।
2: हाँ, और एक अभी बात ये आती है, कंट्रोल्ड कंडीशन में हमारे किसान भाई ने तैयार करवा लिया, कमरा लगा भी दी है, तो क्या अंदर भी किसी प्रकार की बीमारियां आने का खतरा रहता है?
0: अगर बीमारी दो प्रकार से आती है, कुछ गलती हमसे होती है उसकी तरफ बीमारी आ जाती है, कुछ ऐसे एनवायरमेंट फैक्टर बनते हैं उसकी वजह से आ जाती है। तो अगर थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, जानकारी होगी और साफ सफाई अगर अपने कमरे में रखेंगे तो बीमारी होने के बहुत कम चांसेस हैं। कंट्रोल कंडीशन है तो बहुत कम चांसेस होते हैं, अगर आ भी गए तो उसके सिम्टम्स को पहचान के तुरंत उसके इलाज करेंगे तो 24 से 48 आवर्स के अंदर बीमारी कंट्रोल में आ जाती है। मेन कारण है उसको पहचानना, बीमारी को अगर आप पहचान गए तो उसका तुरंत इलाज हो जाता है।
2: तो कई बार खोलना पड़ता है, बार बार जाते हैं, उससे कंटामिनेट होने का डर?
0: नहीं खोलना चाहिए, जो लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं या जो आदमी काम कर रहा है उसके अंदर ग्रोइंग रूम के अंदर वही एंट्री करें, बाहर अननेसेसरी किसी ऐसे पर्सन को ना जाने दें, क्योंकि कोई भी इंसान जाएगा तो बाहर वो अपना हाथ ट्रीटमेंट करके जाएगा नहीं, तो जहां टच करेगा वहां कोई न कोई फंगस या बैक्टीरिया वो अपने हाथ के थ्रू या किसी के थ्रू छोड़ के आ जाएगा, जो 2-3 दिन बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि जो पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, इसमें भी आपने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्तर उसमें बनाना होता है, तो ये तो हमारे लिए भी खतरनाक है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएंगे तो क्या नुकसान नहीं करेगी?
0: नहीं, आपको नुकसान नहीं करेगा, आपके द्वारा मशरूम का नुकसान हो सकता है, मशरूम के द्वारा हमारे नुकसान होने बहुत कम चांसेस है, क्योंकि हमने वहां कम्पोस्ट डाला हुआ है, तो कम्पोस्ट अपने मेटिक नेचर है, टेम्परेचर जब फ्लक्चुएट करता है तो CO2 अपने आप या अमोनिया गैस बनाता है कम्पोस्ट, उसको हमें रिलीज करना होता है, अगर वो हम बाहर नहीं निकालेंगे तो वह मशरूम क्यों उसकी जो कैप है उसकी साइज है वह उसके ऊपर असर पड़ता है या प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ता है या उसका डिजाइन चेंज हो जाएगा, उसकी कैप छोटी हो जाएगी या स्ट्राइप लंबी हो जाएगी, तो CO2 का बहुत असर पड़ता है, क्योंकि मशरूम की खेती या मशरूम जो काफी सेंसिटिव क्रॉप है, तो अगर जितना उसकी जरूरत है उतने उसको देना, उससे अगर ज्यादा देंगे तो उसके लिए हानिकारक।
2: वो देते कैसे हैं, वो कंपोस्ट से अपने आप आती है या कुछ?
0: कंपोस्ट से

अमोनिया गैस और CO2 अपने आप रिलीज होता है, निकलता है। हम खिड़की दरवाजे खोल के या ऐसा बम्पर हम लगाते हैं या ब्लोअर के थ्रू फ्रेश एयर देते हैं और या उसको निकालते हैं, उसमें दोनों तरफ होता है, इनके लिए भी होता है, आउट के लिए सिस्टम ऐसा लगाते हैं, दोनों चीज की व्यवस्था करके रखते हैं, जैसी जरूरत होगी वैसे हम उसकी व्यवस्था करते हैं। बाकी CO2 की इंडिकेटर मशीन आती है, उसको जब सेंसर लगा देते हैं तो बाहर हमको कमरे के बाहर दिखाई देगा हमारे कमरे में कितना CO2।

0: दिखाई देगा हमारे कमरे में कितना CO2 है। अगर कंपोस्टिंग कंपोस्ट आपने डाला है और बीज डाला है तो उसमें 10,000 ppm के आसपास CO2 होता है, तो ठीक है। अगर उससे ज्यादा जा रहा है तो हम उसको मेंटेन करेंगे, ब्लोअर के थ्रू फ्रेश एयर देंगे, थोड़ा बहुत मेंटेन करेंगे, तो उसी में उसकी विजिटिटी ग्रोथ आसानी से हो पाएगी। जैसे 15 दिन ग्रोथ हो जाती है और जब केसिंग सॉयल में फंगस रंग कर जाता है और पिनिंग किस टाइम आता है तो हम जो है 600 से लेकर 1000 ppm तक मेंटेन करते हैं। तो जैसे ही CO2 आप देते हो और टेम्परेचर देते हो, पिनिंग स्टार्ट हो जाती है।
1: अच्छा, मशरूम के उत्पादन में महिलाओं की और स्वयं सहायता समूहों की क्या भूमिका हो सकती है?
0: सब लोग जो है SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले या महिलाएं के लिए बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि यह इंडोर खेती है, कमरे के अंदर बंद कमरे के अंदर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जो महिलाएं अगर करना चाहती हैं थोड़ा सा प्रशिक्षण लेकर आसानी से कर सकती हैं। इसमें ऐसी कोई ज्यादा बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क या मेहनत का काम नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करके और थोड़ा सा सिस्टम को समझ के बहुत आसानी से कर सकते हैं।
1: रोजगार की क्या संभावनाएं हैं युवाओं के लिए?
0: बहुत अच्छा अवसर है रोजगार का। एक मशरूम यूनिट पे अगर आप चार कमरे का बनाते हैं तो इसमें कम से कम 10 लोगों को रोजगार बहुत आसानी से मिल जाता है। रोजगार कई प्रकार से मिलता है, मशरूम का प्रोडक्शन होगा और मशरूम मार्केट में जाएगी, मार्केट से कितने लोगों को रोजगार चलना है, तो ये बहुत काफी लंबी लिस्ट होती है। तो बहुत सारा अवसर है इसके अंदर रोजगार के। अगर लोग आए तो एक एक यूनिट से कम 10 से 12 लोगों को रोजगार आसानी
2: मतलब
0: से मिल जाता है।
2: जो पूरी चेन बनेगी ग्रोथ से लेकर मार्केट तक पहुंचने, कंज्यूमर तक पहुंचने तक, उसके बीच में जो लोग इन्वॉल्व रहेंगे उन सबको रोजगार मिलेगा।
1: हाँ, और सबसे जरूरी बात, जब मार्केट ले जाएंगे उससे पहले बात आती है हार्वेस्टिंग की।
2: हाँ,
1: उसको तोड़ते वक्त भी कुछ खास ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कंपोस्ट के अंदर होती है, एकदम उखाड़ेंगे तो शायद काफी।
2: इसमें निरंकार जी मैं भी एक सवाल आपके साथ जोड़ना चाहूंगी कि हार्वेस्टिंग के साथ साथ स्टोरेज किस तरह से करें हम इसका, और इसकी शेल्फ लाइफ भी हम जानते हैं कि ज्यादा नहीं होती है आमतौर पर, तो कैसे इसको रखें हम?
0: जैसे कि बटन मशरूम की अगर बात करें, मार्केट में एक साइज की डिमांड होती है, 2.5 से 3 सेंटीमीटर डाया की अगर जो मशरूम है मार्केट में उसी की डिमांड है, उसी साइज को मशरूम की हमको हार्वेस्टिंग करनी होती है। हार्वेस्टिंग करते समय इस चीज का ध्यान रखें कि अगर जैसे कि आपने बोला डायरेक्ट मशरूम अगर खींचेंगे तो कम्पोस्ट के साथ बाहर आ जाएगा, तो उससे जो छोटे मशरूम या छोटे छोटे उसके बगल में जो मशरूम होंगे वो अभी आपका बाहर आ जाएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। जो सेलेक्ट करिए 2.5 से 3 सेंटीमीटर जो डाया हो गया है, 3 उंगली से ऊपर से कैप को पकड़िए, हल्का से नीचे पंच करिए और लेफ्ट साइड में हल्का सा जब उसको घुमा देंगे तो मशरूम जड़ से बाहर आ जाती है। बाहर ला के उस मशरूम को उसको हम क्लीनिंग करते हैं या ग्रेडिंग करेंगे फिर क्लीनिंग करेंगे। जो 3 सेंटीमीटर से ऊपर का है उसको अलग कर लेंगे और 3 सेंटीमीटर और 2.5 के बीच में जो उसको अलग कर लेंगे, या ऐसी जो मशरूम है जिसका कैप खुल गया है उसको अलग कर लेंगे। अगर जिसका कैप खुल गया अगर उसको मार्केट ले जाएंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू 0 है, ना के बराबर।
1: गंदा नहीं होने देंगे और कटी फटी को अलग कर
0: अलग कर
1: कटी हुई को नहीं रखेंगे
0: फिर जी, क्योंकि मशरूम में 90% मॉइस्चर होता है। जैसे कि हार्वेस्टिंग के बाद उसका स्टोरेज की समस्या है, 90% मॉइस्चर होता है, तो जब उसको पैकिंग करें, पैकिंग करते समय हर पैकेट के अंदर 2 से 3 छेद कर दे, अगर नहीं छेद करेंगे तो उसकी लाइफ साइकिल कम हो जाएगी और उसका कलर जो है खराब हो जाएगा तो मार्केट वैल्यू और कम हो जाएगी।
1: तो क्या उससे नमी उड़ेगी?
2: काला पड़ने लगता है ना,
0: काला पड़ जाएगा,
1: जो बताया
0: छेद होगा तो उससे जो नमी बाहर निकलती रहेगी तो वो जल्दी खराब नहीं होता,
2: स्टोरेज में आसानी होगी।
1: अच्छा, मार्केटिंग में किन बातों का और ध्यान रखने की जरूरत है?
0: मार्केट में जितनी डिमांड है उसी हिसाब से मशरूम की खेती करें। अगर आपने मार्केट के ऊपर भले सर्वे नहीं किया है तो आप पता चला मशरूम आपने उगा लिया और मार्केट में ले गए, मशरूम आपके मार्केट में बिके नहीं, तो सबसे पहला आप मार्केट का सर्वे कर लीजिए, जिस वैरायटी की डिमांड है आप उसी वैरायटी की खेती करें, दूसरी वैरायटी ऐसी न करें कि आप उगा लिए और मार्केट में उसकी खपत नहीं है, तो सबसे पहले सावधानी है। दूसरा, क्वालिटी का बहुत मायने रखता है। अगर आप जिस क्वालिटी के मार्केट में डिमांड है उसी क्वालिटी की उसी साइज की मशरूम की तोड़ाई करें, वही आप मार्केट में ले जाएं। कोशिश से करिए मशरूम तोड़ने के बाद जल्दी से जल्दी आप मार्केट में ले जाएं, क्योंकि 24 से 48 घंटे के अंदर या कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा मशरूम तो यह डिस्कलर हो जाएगा, तो जिसके बाद मार्केट वैल्यू इसकी कम हो जाएगी, तो जितनी आपकी लागत लगी है उतना भी निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो सब चीजों की थोड़ा सा छोटा छोटा ध्यान देंगे तो इसमें नुकसान होने के बहुत कम चांसेस।
2: डॉक्टर साहब, स्टोरेज के बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए, जैसे मार्केट में पहुंचने से पहले अगर स्टोरेज कर रहे हैं तो कैसे करें उसको,
0: मशरूम बटन मशरूम चूंकि फ्रेश मशरूम में ही मार्केट में डिमांड है, इसको स्टोर करेंगे तो इसके लिए फिर आपको दूसरा सिस्टम अपनाना पड़ेगा, कैनिंग यूनिट में जाना पड़ेगा। डिब्बा बंद मशरूम जो मार्केट मिलता है फिर उस पर जाना पड़ेगा, फिर उसको अगर डिब्बा बंद मशरूम बना लिए तो फिर आप 9 महीने 10 महीने तक फिर आप इसको स्टोर कर सकते हो, फिर उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए बटन मशरूम को आपको फ्रेश में ही डिमांड है, ड्राई में डिमांड नहीं है, तो स्टोरेज के लिए हम सलाह नहीं देंगे, इसको स्टोरेज करिए, इसको हार्वेस्ट करिए, हार्वेस्ट करके पैकिंग करिए।

0: पैकिंग करके आप तुरंत इसको मार्केट पहुंचाइए। अगर आपको स्टोरेज करना है तो फिर आप दूसरे सिस्टम में जाइए, कैनिंग यूनिट में जाइए, फिर उसके बाद ही आप इसको स्टोर करने के बारे में सोचे, नहीं तो नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
1: डॉक्टर साहब, आप अब हम ये चाहेंगे संक्षेप में हमारे किसानों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस फसल के उत्पादन के लिए?
0: किसान भाइयों को हम यही सलाह देंगे, क्योंकि बिना जानकारी के आप अगर मशरूम खेती करेंगे तो आपका नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो पता नहीं चलती हैं। जब आप खेती करने जाते हो तो बहुत सारी चीजें नई नई निकल के आती हैं। जब आप प्रशिक्षण कर लेते हैं या किसी एक्सपर्ट के साथ मिलकर आप मशरूम की खेती करते हैं तो आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो प्रशिक्षण करना अनिवार्य है।
2: डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस विषय पर इतनी अच्छी जानकारी हमारे सभी श्रोताओं को दी। अभी आप सुन रहे थे संरक्षित तकनीक से मशरूम उत्पादन विषय पर बातचीत और जानकारी, और आपके फोन कॉल्स का जवाब भी डॉक्टर साहब दे रहे थे। हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर सुभाष चंद्र, सहायक निदेशक राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान प्रतिष्ठान नई दिल्ली से। और अब चूंकि कार्यक्रम का वक्त समाप्त हो रहा है तो गोल्ड स्टूडियो से मैं पूजा और मेरे साथी निरंकार आपसे अनुमति लेना चाहेंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर। और इन्हीं शब्दों के साथ हम गोल्ड स्टूडियो से आपसे विदा लेते हैं, जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी।
1: आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण, रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभाग

0: गौर संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित आईसीएफ में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉ सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Naresh Magu. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including the Ministry of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Addressing the Rozgar Mela, the Prime Minister emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of citizens. Mr. Modi noted that the nation has placed its trust in its Karma Yogis and it is now their responsibility to honour and strengthen that trust through their dedication, conduct and everyday actions.
2: Karma Yogi Prarambh, jaise module se aapko apni zimmedariyan samajhne mein bahut sahuliyat hogi. Mera aapse agrah hai, iska jyada se jyada laabh uthaye. Aaj Bharat ka yuva duniya ke har kshetr mein अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: Mr. Modi highlighted, the world is eager to be a part of India's growth journey. The Prime Minister said that the country is also partnering with various countries of the world aimed at providing opportunities, employment and global exposure to the youth of the nation.
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है।

कार्यक्रम की शुरुआत आज आपके साथ शनिवार की दोपहरी सीमा वर्मा और कार्यक्रम आप जानते हैं मन भावन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो मन को भाता है वही ख्यालों में भी आता है और जुबां पर भी आता है, और ऐसा ही कोई एक गीत जो आपके मन को बड़ा भाता है और आपके ख्यालों में आपका कोई खास है तो हम तक पहुंचाइए। कैसे भला? fmgoldair@gmail.com एक बार फिर से सुन लीजिए वो पता जहां आपको अपनी फरमाइश पहुंचानी है, fmgoldair@gmail.com। इस पते पर अपनी फरमाइश आप किसी अपने को सुना सकते हैं, नहीं जी जा रहा है सिर्फ खुद के लिए कोई गीत सुनने का आपका मन कर रहा है तो भी आप सुना सकते हैं अपने को, खुद को गीत। बस आपको करना यह है कि आपको जी हम तक अपनी मेल पहुंचानी है, और अगर कोई खास दिन है आज तो भी हमें बताइए, साझा कीजिए, हम भी आपकी खुशियों में शामिल होना चाहते हैं। और इसके साथ साथ अब हम शुरू करते हैं सिलसिला जी किसका भला, आपके संदेशों का, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पहले से ही संदेशा भेजना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको पता मालूम है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशान छिम्पा और पूजा परिहार हैं, और इन्होंने गीत की फरमाइश की है। जी अब थोड़ा सा आप ठहरिए, उसके बाद मैं आप तक जरूर पहुंचाती हूं आपकी पसंद का गीत। ऊपर कोट बुलंदशहर से हमारे पास मोहम्मद सईद अब्बासी साहब हैं, निगत परवीन हैं, शाहनवाज हैं, सरफराज हैं, फरदीन हैं, सुहान हैं, अरजान हैं, अबान हैं और पूरा का पूरा बासी परिवार है जो हमें यहां पर सुन रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, कार्यक्रम का समय होते ही आप सब जुड़ जाते हैं हमसे। ऐसे ही एक और संदेशा आया सनावद मध्य प्रदेश से आया है, मास्टर अशोक वर्मा है इनके साथ, बहुत सारे और इनके परिवारजन है, अर्चना है इनके साथ, अनुज हैं, आयुषी हैं, रमेश चंद्र वर्मा है, शेख मूसा भाईजान हैं और भाई राजकुमार जी हैं। और अगला संदेशा जो है वो अब लेते हैं जी, बिल्कुल लेते हैं।

ये किसका है? अनिल मोहन जी और उषा मोहन है। इन्होंने हमें पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से हमें ये संदेशा भेजा। इसी तरह आप भी अपने संदेशे हम तक जरूर पहुंचाइए। अच्छा लगता है कि आप अब गर्मी की बात करें कि अच्छा लगता है आप गर्मी में भी हमारा साथ दे रहे हैं। अब गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन हमें बहुत ही चौकन्ना रहना है, बहुत ख्याल रखना है अपना। और गर्मी के बारे में मैं जिक्र करती रहूंगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि अभी आजकल बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इसके बाद गांधी चौक बाड़मेर राज से बबलेश पवार हैं, डैनी पवार हैं और मनीष पवार हैं। मुझे लग रहा है मैंने नाम बहुत सारे ले लिए हैं और अब बारी है एक गीत की। और देखिए, गीत से पहले भी आपके मैसेजेस जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप में से किसी एक की फरमाइश हम सब की फरमाइश।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for short service commission, information technology entry. Last date for submission is 1st June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a viksit, samriddh Bharat.
3: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
4: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
3: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
4: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
3: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

नमस्कार, मैं मालिनी अवस्थी। मुझे लगता है मेरी जिंदगी की पूरी कहानी यदि आप लिखेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आकाशवाणी के हवाले होगा। 90 बरस हुए और आप ये समझ लें कि 50 साल का मेरा जुड़ाव रेडियो से है। मैं 10 बरस की थी, गोरखपुर में आकाशवाणी गोरखपुर का सेंटर खुला था नया, और तब बाल जगत में सबसे पहले तो बच्चों के साथ और भैया दीदी के साथ बैठ करके बात करते थे, और वो पहला अनुभव था। ये बात हो गई 76 की, और बड़े अच्छे कमाल के ज्ञानवर्धक बातें, बच्चों को अपनी कविताएं सुनानी होती थी, कोई गा सकता है तो गाए भी, तो आकाशवाणी एक तरह से इल्म भी था। फिर वहां से एक रेडियो में युववाणी है, फिर अब जनरल है, फिर अब टॉप ग्रेड तक पहुंचना है, एक तरह का वो हमारे लिए सीढ़ी बन गई। गोरखपुर से लखनऊ आकाशवाणी, फिर दिल्ली रेडियो, तो हमारे लिए पूरी दुनिया में बल्कि भारतवर्ष में कॉन्सर्ट्स में हम जब यात्रा करते अलग अलग शहरों में, तो सबसे खुशी होती थी कि जब नाम के साथ ये जुड़ता था कि अब आपके सामने आ रही आकाशवाणी कलाकार मालिनी अवस्थी। और सबसे बड़ी बात आज यहाँ जरूर कहूंगी, आकाशवाणी इस मामले में एक बहुत

0: क्वालिटी कॉन्शियस था, आप किनको गा सकते हैं और किनको नहीं गा सकते। रेडियो का जो स्टैंडर्ड था वो इतना कमाल का था, तो हमारे लिए आकाशवाणी स्टूड लाइक गोल्डन स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट नीड्स टू बी फॉलोड।
1: मारे करे जवा माती बलम घरे ना मोरे नने दी।
2: वेलकम बैक जी, स्वागत एक बार फिर आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। और कार्यक्रम मन भावन है जिसमें आप अपनी फरमाइशें हमें भेज रहे हैं। आज आपके साथ शनिवार की दोपहरी मैं सीमा वर्मा, और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पता तो मैंने आपको खैर बताना है, लेकिन अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत ख्याल रखिएगा, अपने साथ पानी की बोतल और कुछ सर पे टोपी हो या आपके पास छतरी हो तो बेहतर होगा। और अगर बहुत कोई जरूरी काम नहीं है तो फिर चाहे आप ना भी निकलें घर से तो वो बेहतर होगा। बहरहाल अगर आपको अपना संदेशा हम तक पहुंचाना है, आप एफएम गोल्ड सुनते हुए एंजॉय कर रहे हैं तो fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com। अब जी एक बार फिर आपके संदेशों पर मेरी नजर है। मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार हैं, शेख शागीर हैं, शेख वजीर हैं और सोहिल शेख हैं, तो ये इन्होंने अपना संदेशा भेजा है। बहुत सारे लोग तो कह देते हैं किसी में भी आप शामिल कर लें, लेकिन काफी लोग अपनी फरमाइश भी भेजते हैं। संदीप मक्कड़ जी, ज्योति मक्कड़ हैं, मन्नत हैं इनके साथ, भरत हैं और कमल साहनी जी हैं, और इन्होंने कहां से ये हमारे पास भेजा है जी, जालंधर पंजाब से आपने हमें ये अपना जो मैसेज है ये भेजा है। और अगला संदेशा अगर मैं लेती हूं तो नवापारा से मुकेश गुप्ता हैं, श्रद्धा गुप्ता हैं, आदिति दीपक, श्रीमती अंकु राघव गुप्ता और पिपरिया से हैं, कमलकांत जी हैं, दीपा हैं और रिमझिम हैं इनके साथ। किशन वंजानी जी, आप अपना एक जो मैसेज आपने एक बार किया ना उसको बार बार आप फॉरवर्ड करते हैं तो वो बहुत सारे नीचे आपके फॉरवर्डेड मैसेज हमें नजर आते हैं तो हम नाम ही ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन हमने आपका नाम पढ़ लिया है। किशन वंजानी है, आपके साथ नीलम है, स्वाति है, किशु है, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से आपने हमें ये लिखा है जी अपना पत्र, डिजिटल पत्र, और आपने गीत की फरमाइश की है, मेरी कोशिश है मैं जरूर सुनवाऊंगी। जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन और दीपांशु, ये आपने होली चौक उत्तम नगर से हमें संदेशा भेजा। एक छोटी सी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अगर आप इसे पूरा कर देंगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। ऊपर से नीचे जब हम नाम पढ़ते हैं ना तो थोड़ी सुविधा हो जाती है, नाम आप एक के नीचे एक लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। यहां पर हमारे पास गांव लोहगढ़ से हमारे पास ये संदेशा आया है, किसका है, स्वर्ण सिंह गिल जी हैं, दलजीत हैं इनके साथ, राजदीप हैं, गुरनूर हैं और गुरलाल सिंह जी हैं, और एक और नाम है जो मैं अब ले रही हूं, अविराज सिंह जी हैं। तो अब नाम हो गए हैं या फिर आपको लग रहा है कि अब भी तो मैंने शुरू किया। चलिए, राजकुमार जी, प्रमोद कुमार जी और पुष्पिंदर कुमार जी, आपने हमें कहां से ये लिखा है, कहां से आपने समझ नहीं आ रहा पर लिखा है कि कोई भी आप गीत सुनवा दें तो हम कोई भी गीत आपको सुनवा देते हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया जी, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया, सोनू भाटिया, आपने हमें जमशेदपुर से ये संदेशा भेजा है, और अब लग रहा है, मुझे ही फील हो रहा है कि ज्यादा नाम हो गए हैं तो गीतों की खूबसूरत और दिलकश दखलअंदाजी होती रहे तो फिर मजा आता है।

लता जी के गाए इस गीत के बाद मेरी नजर आपके संदेशों पर है। एक बार फिर जान लें fmgoldaiadelhi@gmail.com और 3:45 और 45 सेकंड हो गए। मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई समय अब आप अंदाजा लगा लीजिए। और खाम गांव से ये हमारे पास अनंतावाड़े हैं, रामेश्वर हैं इनके साथ, शुभम, साक्षी, खुशी और समस्त वाड़े परिवार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेश के लिए। नबी हसन अब्बासी साहब हैं, शहनाज अब्बासी हैं, नवेद हसन अब्बासी हैं, सुहेल हसन अब्बासी हैं, रसीद वारसी हैं, अनम अब्बासी हैं और यशफ अब्बासी हैं। और आपने भी एक गीत की फरमाइश की है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, आपने भी अपना संदेशा हमें भेजा है। इसके साथ साथ शबनम का एक और संदेश आया हमारे पास यहाँ पे। और एक ये संदेश है जिसमें इन्होंने कहा है कि हमारा SMS आप कहाँ गायब कर देती हैं। तो फैज अहमद साहब, अगर आपने ये शब्द इस्तेमाल कर ही लिया है कि गायब कहाँ कर देती हैं, तो फिर मैं भी एक अलग अंदाज में कह दूं कि गिली गिली गिली गिली छू आपका दिखे। संदेशा मुझ तक पहुंच गया और मैं देख लिया है। फैज अहमद और साबिर जी, आपने हमें हुबली कर्नाटक से हमें ये संदेशा भेजा है और अब बारी है।

0: गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। आपके साथ मैं सीमा। दोपहरी है आज शनिवार की और वक्त अब ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी कुछ एक नाम जो हैं वो लेने भी जरूरी हैं, तो कुछ नाम हम पढ़ देते हैं, उनकी फरमाइशें भी आप तक पहुंचा देते हैं। रघुवीर नगर से दिलावर खान साहब हैं, हसीना बानो हैं, एलिजिया नायाब हैं और लड्डू जी हैं। वहीं मोताला महाराष्ट्र से अगर हम बात करें तो विजय सुरलकर हैं, रत्नमाला हैं और कुमकुम है। असम की बात अगर हम करें तो एच आर पंड्या जी हैं, हिरेन हैं, नरेन हैं, वीरेन हैं और इन्होंने भी एक गीत की फरमाइश की है। मोहम्मद यूनस खत्री जी और मोहम्मद सादिक खत्री, आपने क्या लिखा है, इंतजार कीजिए कीजिए इंतजार, अभी तो कार्यक्रम है। अब ऐसे आप नहीं मेरे ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं, फिलहाल तो कार्यक्रम है और मैंने आपका जो खत है ये ले लिया, डिजिटल खत आपका, और आपको मैंने नाराज होने का मौका नहीं दिया। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह जी, आपने दोबारा मैसेज कर दिया। कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये मैसेज हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। वहीं चंडीगढ़ से हमारे पास सतीश अनेजा और बिमला अनेजा हैं, उनका भी हमारे पास ये संदेश आया है और अब आप सबकी फरमाइश में से किसी एक खास की फरमाइश ले लेते हैं। '81 में फिल्म आई धनवान, और जिस किसी की भी ये फरमाइश है, मुझे भी ये गीत सुनने में अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों में सुना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एफएम गोल्ड मर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन, जिसका अब जो समय है वो बिल्कुल संपन्न होता है, समाप्त होता है। चलते चलते एक संदेशा जो कहता है, आपके प्रोग्राम में मेल शामिल होना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से भी मुश्किल प्रतीत होता है, ऐसे तो ना कहें भारत भूषण जी, ऐसे तो ना कहें। अंजू श्रीवास्तव जी और दिव्येंदु भूषण है, इनके साथ संस्कृति है और पौरुष है। हमारी तो कोशिश रहती है पूरी, लेकिन हर बार कोई ना कोई तो छूट जाता है। तो आपके हम अपने हैं, एफएम गोल्ड आपका अपना है, तो यूं आप नाराज ना हो। आपसे मन भावन प्रोग्राम रोज मुखातिब होता है, रोज मिलने आता है, इस बार नहीं तो अगली बार जरूर जरूर आपका जो खत है वो शामिल किया जाएगा। तो फिर फिलहाल के लिए सीमा वर्मा को इजाजत दीजिए, अब कुछ ही देर में हम मिलकर समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार के प्रयासों का मुख्य जोर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में देश की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वहीं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। श्री सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। संसदीय कार्य और सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार सुगमता के क्षेत्र में तीव्रता से प्रगति कर रहा है। केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा

0: की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर वर्ष कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी विद्यार्थियों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि भारत दुनिया की एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावट के शुरुआती 76 दिनों के दौरान खुदरा ईंधन कीमतों को लगभग अपरिवर्तित रखा है। सूत्रों के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध और होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के बीच भारत वैश्विक तेल संकट का असर स्वयं पर लेता रहा है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वे मंगलवार को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. He noted that the nation has placed its trust in its Karmyogis and it is now their responsibility to honour and strengthen that trust through their dedication, conduct and everyday actions.
2: Karmyogi prarambh jaise module se aapko apni zimmedariyan samajhne mein bahut sahuliyat hogi. Mera aapse aagrah hai iska zyada se zyada labh uthayein. Aaj Bharat ka yuva duniya ke har kshetra mein अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: मिस्टर मोदी हाईलाइटेड द वर्ल्ड इज ईगर टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ जर्नी। He said that the country is also partnering with various countries of the world aimed at providing opportunities, employment and global exposure to the youth of the nation. In the 19th edition of Rozgar Mela today, more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations were distributed. Union Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh today said that the Rozgar Mela has resulted in increased appointments in a transparent and time-bound manner. Speaking at the Rozgar Mela in New Delhi, Dr. Singh noted that the initiative has strictly adhered to timelines and thereby enhancing confidence among the youth and ensuring a more merit-based selection process. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary today announced that 1 lakh teachers will be recruited in the state over the next 5 years. During a high-level review meeting of the Education Department, he directed officials to ensure the recruitment of at least 20,000 teachers every year. He said that the notification for teacher appointments will now be issued annually in the month of July to streamline the recruitment process. Education Minister Mithilesh Tiwari said that the Chief Minister's announcement has ended the uncertainty surrounding the fourth phase of the teacher recruitment examination. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said India continues to witness strong economic fundamentals and robust export growth amid global turbulence. He said the pace of export growth recorded in April has continued into May, reflecting the resilience of the Indian economy amid global adversities. Briefing media in New Delhi, Mr. Goyal highlighted that

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 है। आइए साथियों, आपको बताते हैं आपके मनपसंद एफएम गोल्ड पर आप आने वाले घंटों में कौन कौन से कार्यक्रमों को सुन सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप और हम मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार। 4:30 का वक्त न्यूज सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम परिक्रमा का रहेगा। आप जानते हैं आपके मनपसंद एफएम गोल्ड 100.1 पर हर घंटे आप समाचार सुनते हैं और इसी कड़ी में 5:00 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 5:10 पर कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में आप मेरे यानी सीमा वर्मा के साथ होंगे और हम होंगे 80 और 90 के खूबसूरत रेट्रो गीतों के साथ। आगे के कार्यक्रमों की जानकारी भी मैं आपको जरूर दूंगी, लेकिन आइए उससे पहले सुन लेते हैं एक बहुत खूबसूरत सा गीत दो बूंद पानी फिल्म से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

स्वागत आप सभी का एक बार फिर एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, शाम के कार्यक्रमों की बात करें तो 6:10 पर सदाबहार गीत आपके साथ रहेंगे, होंगी आपके साथ नईम अख्तर। और अगर हम उन कार्यक्रमों की बात करें जहां हम फिल्मी गीतों को सुन सकते हैं तो शाम 7:25 पर सांझ ढले कार्यक्रम ना सुनना भूलिएगा, नईम आपके साथ रहेंगी। और 8:10 से 8:30 तक मधुरिमा कार्यक्रम भी आप जरूर सुनिएगा, जिसमें हम गीत आपकी नजर करते हैं लेकिन उनके शास्त्रीय अंग की भी हम बात इसमें करते हैं। रात के कार्यक्रमों की बात करें तो 10:30 हर सिंगार कार्यक्रम आप जरूर सुन सकते हैं, साथ आपके रहेंगी माधुरी। और रात 11:10 से आप सुन सकते हैं माधुरी के साथ गीत मेरे मन में।

तो ये तो एक हमने झलकी आपको बताई कि आपके मनपसंद एफएम गोल्ड पर आप आने वाले घंटों में कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: Ministry of Commerce and Industry, Government of India, has extended the last date for applications for the post of Preventive Officer Group B on deputation basis in Level 7 as per the 7 CPC. The vacancy falls under the jurisdiction of Development Commissioner NSEZ, Noida. Eligible candidates may apply through proper channel within 30 days from the publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly do refer to the website, that is at www.jaipursays.gov.in. Indian Institute of Management, Ranchi, has invited online applications for contractual appointments to the post of a Corporate Relation Manager, Assistant Manager, Corporate Relations Officer, Senior Associate, Corporate Relations Officer again, and Clinical Psychologist. Candidates with qualifications in MBA, psychology or related fields along with relevant professional experience may apply. The last date for submission of online applications is 25th May 2026. Detailed eligibility criteria, age limits, salary structure and the application links available on the Institute's website. Do refer to www.iimranchi.ac.in. I repeat, it is www.iimranchi.ac.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Samachar Seva Prabhag prastut karta hai Rozgar Samachar. नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूं मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर NHSRC नई दिल्ली योजना प्रभाग ब्यूरो BOP NHA सेल के अंतर्गत पूर्णता संविदा के आधार पर कुछ पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। पदों का नाम जूनियर कंसल्टेंट NHA सेल, BOP डिवीजन, MOH एंड FW। रिक्तियों की संख्या 2 है और आयु सीमा 55 वर्ष है। इन्हें मिलेगा 40,000 रूपये से 70,000 रूपये मासिक। जहां तक योग्यता और अनुभव की बात है, आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण के साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR www.nhsrcindia.org या फिर www.mohfw.gov.in और www.devnetjobsindia.org पर उपलब्ध है। आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अंतिम तारीख होगी 1 जून 2026। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, इस संस्थान में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यंग प्रोफेशनल्स को नियुक्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। विस्तार में जानकारी आपको मिल जाएगी यहां के वेबसाइट से, यानी nsi.gov.in। निर्धारित प्रारूप में आवेदन आप भेज सकते हैं निदेशक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर 208017। यहां आप भेज सकते हैं। 8 जून 2026 तक अवश्य ये आवेदन पहुंच जाने चाहिए। सशस्त्र बल अधिकरण AAFT क्षेत्रीय पीठ कोलकाता हेतु पात्र अभ्यर्थियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। पात्रता मानदंड, प्रारूप एवं आवेदन से संबंधित अन्य शर्तों आदि का विवरण आप पा सकते हैं वेबसाइट से। वेबसाइट की जानकारी आपको दे दें www.aftkolkata.nic.in। एक बार पुनः सुन ले, www.aftkolkata.nic.in और www.aftdelhi.nic.in। जमा करने की अंतिम तारीख होगी 5 जून 2026। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का प्रमुख मिनी रत्न उद्यम, इस डोमेन में विशेषज्ञता वाले 17 युवा पेशेवरों YP से संविदा आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। पद का नाम है YP सॉफ्टवेयर और वेब विकास। पदों की संख्या 2 होगी। वाईपी डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्रबंधन पदों की संख्या 2 होगी। वाईपी बाजार और आर्थिक विश्लेषण पदों की संख्या यहां पर भी 2 होगी। वाईपी डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स इत्यादि 1 पद यहां रिक्त है। वाईपी कंपनी सचिव 1 स्थान यहां रिक्त है। वाईपी सामग्री प्रबंधन 1 स्थान रिक्त है। वाईपी मार्केट रिसर्च डेटा व्याख्या और वित्तीय विश्लेषण 1 स्थान रिक्त है।

0: थे वाईपी सिविल इंजीनियर एक स्थान रिक्त, वाईपी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक स्थान रिक्त थे, वाईपी एमएसएमई बिजनेस आउटरीच दो स्थान रिक्त थे, वाईपी वेंचर इक्विटी फंड के वरिष्ठ विश्लेषक दो स्थान रिक्त थे, वाईपी वेंचर कैपिटल फंड के लिए आईटी विशेषज्ञ एक स्थान रिक्त थे। नौकरी के विस्तृत विवरण, नियम एवं शर्तें और आवेदन पत्र के लिए कृपया आप एनएसआईसी की वेबसाइट www.nsic.co.in के करियर अनुभाग पर जाएं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तारीख है वो है 8 जून 2026। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एक वैधानिक निकाय है। दिल्ली में दो पूर्णकालिक सदस्य तकनीकी के पदों पर चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। विस्तार में विज्ञापन आपको मिल जाएगी वेबसाइट के थ्रू। उसके लिए आपको वेबसाइट विजिट करना होगा moef.gov.in। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी नमस्कार।
1: नमस्कार करिश्मा, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हू हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। हस्बी दस्तूला है आपके लिए ताजा तरीन खबरें एंड ऑफकोर्स इज द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, सो वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी वॉट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव फ्रॉम देयर। All of that in the next roughly half an hour, but first let's start with the headlines, Karishma.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के नवनियुक्त कर्मचारियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है।
1: बिहार गवर्नमेंट रिक्रूट 1 लाख टीचर्स इन द स्टेट ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की।
1: यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो मीट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी इन न्यू दिल्ली टुडे।
0: और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडी बुग्गियो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया।
1: एंड इन आईपीएल, लखनऊ सुपर जॉयंट्स टू टेक ऑन पंजाब किंग्स इन लखनऊ दिस इवनिंग। And Karishma, as always, we open our show with a very special segment, Dateline India. And of course, it's a very important day today because so many people got the appointment letters. So the topic today we have, the first topic rather, is Rozgar Mela. Aur agar waqt hoga to hum log dusra topic bhi bahut interesting hai, usse introduce karenge. But first, talking about Rozgar Mela.
0: और लाखों भारतीय घरों में एक सपना बसता है, एक ऐसा सपना जिसकी शुरुआत अक्सर एक छोटी सी स्टडी टेबल पे एक मध्यम सी रोशनी वाले लैम्प के नीचे होती है और बगल वाले कमरे में माता पिता चुपचाप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। एक युवा लड़का जो अपने पिता की दुकान में हाथ बटाते हुए रेलवे की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, या फिर एक बेटी जो घर के सारे कामकाज निपटाने के बाद देर रात तक पढ़ाई करती है।
1: Well, that's true.

0: And we have seen so many anxious parents waiting outside exam centers, you know, ke chahe dhoop ho, loo ho, aandhi ho, jo bhi ho, wo kis ummeed se apne bachcho ke liye wait karte hain, is ummeed mein that, you know, one day we will get that appointment letter or email that says that congratulations, you have been selected. Well, what changes in that moment? Is it only a job or an entire family's future? Today, across India, thousands of such dreams turned into reality.
1: बिल्कुल, और इसी के साथ श्रोताओं, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेला को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को याद दिलाया कि सरकारी नौकरियां केवल रोजगार के अवसर ही नहीं हैं, वे एक जिम्मेदारी हैं, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और व्यवस्था में नागरिकों के भरोसे को और मजबूत करने का एक अवसर है.
0: That's right, Karishma. And in his address, Prime Minister Modi said that the newly recruited youth are actually the karma yogis of our country. And now it is their duty to honor the trust that the country has placed in them through their dedication, honesty and everyday service. And isn't that what truly builds a nation, Karishma?
1: बिल्कुल सही. और प्रधानमंत्री ने एक ऐसी बात का भी जिक्र किया जो वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को बदल रही है. आज पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को उत्सुक है. दुनिया भर के देश भारत के साथ साझेदारी कर रहे हैं, जिससे भारतीय युवाओं के लिए अवसरों, रोजगार और वैश्विक अनुभव के नए दरवाजे खुल रहे हैं.
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है. आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है. भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है. इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे. साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले.
0: And Karishma, there was a time when many believed that opportunities existed only outside India. But today the world itself is looking towards India as a trusted supply chain partner, an innovation hub and a rising economic force.
1: बिल्कुल सही कहा आपने. और एक नए भर्ती हुए कर्मचारी को एक कुशल लोक सेवक बनने में क्या चीज मदद करती है, ये समझना भी जरूरी है. इसका जवाब सिर्फ नियुक्ति पत्रों में नहीं है, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने में छिपा हुआ है. इसलिए प्रधानमंत्री ने नियुक्त किए गए लोगों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया. एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे सरकारी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझने और नागरिकों की ज्यादा असरदार तरीके से सेवा करने में मदद करने के लिए बनाया गया है.
0: That's right, Karishma. Today, the scale of this mission is truly remarkable. Under the 19th Rozgar Mela, more than 51,000 appointment letters were distributed across 47 locations in the country. These newly selected candidates will join various departments and ministries. Behind every appointment letter lies a deeply personal story. Maybe somewhere in Rajasthan, a father proudly framed his son's first government appointment letter.
1: बिल्कुल. और इसी के साथ श्रोताओं, ये भी समझिए कि किस तरीके से हो सकता है कि केरलम में अपनी पोती के चुने जाने की खबर सुनकर किसी दादी ने पड़ोसियों को मिठाई बांटी हो, या फिर हो सकता है कि पंजाब में किसी युवा रंगरूट ने चुपचाप अपने संघर्ष के वर्षों को निहारा हो और अंत में धीरे से कहा हो कि ये सब सार्थक रहा.
0: दैट्स राइट. और सुन के कितनी खुशी हो रही है, इज़न्ट इट? वेल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, जितेंद्र सिंह सेड दैट द रोजगार मेला हैज हेल्प्ड एंश्योर ट्रांसपेरेंट एंड टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट. He highlighted that strict timelines and merit-based selection processes have increased confidence among the youth, and confidence matters. Because when young people trust the system, they dream bigger, they prepare harder, and they believe that effort can truly change destiny.
1: डॉक्टर सिंह ने कर्मचारी चयन आयोग में किए गए बड़े सुधारों के बारे में भी बात की. परीक्षाओं के चक्र को काफी हद तक कम कर दिया गया है, परीक्षाएं अब क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं और शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए तेज प्रणालियां शुरू की गई हैं. ये बदलाव सुनने में भले ही प्रशासनिक सुधार लगे, लेकिन किसी ऐसे छात्र के लिए जो परीक्षा देने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करता है, या किसी एक ऐसे उम्मीदवार के लिए जो अपनी मातृभाषा में ज्यादा सहज महसूस करता है, ये बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकता है.
0: जी हाँ करिश्मा, और क्यों ना अब सुना जाए, सुनी जाए उनकी

0: Yoni Kisabani. Let's hear some of the beneficiaries who are sharing their experiences.
1: My name is Sakshi Verma and I'm from Raipur, Chhattisgarh, and I'm very grateful to ICF and PM Narendra Modi and Government of India that I get this opportunity through cultural quota. As a classical dancer, we get this job is very difficult and I'm very grateful to them. So thank you, ICF.
2: My name is Santakishore. I'm from Trivandrum, Kerala. I wrote this exam some years back, but now I got posted and now I'm very happy. I thank our central government for providing such an opportunity. I will take this not only as my work but a service to the nation.
3: My name is Tejinder Singh Kanda. I am from Bathinda, Punjab, and I am selected for junior associate in State Bank of India. I am so grateful for the central government giving me the opportunity to serve the nation.
0: Very inspiring indeed, and perhaps that's the beauty of these stories, that so many different states coming, people coming from different languages, different backgrounds, but one shared feeling of pride to serve the nation. Across the country, Rozgar Melas reflected this spirit, and in West Bengal, appointment letters were distributed in Kolkata, Kharagpur and Siliguri.
4: Aur Rajasthan mein Jaipur, Jodhpur, Ajmer aur Bikaner mein 1100 se adhik yuvaon ko niyukti patra mile. Aur Kerala mein Kendriya Mantri Suresh Gopi ne Rozgar Mela ko yuva shakti ko rashtra shakti mein badalne ka ek mission bataya. Aur sach bhi to yahi hai. Kya Bharat ki sabse badi taakat uske log nahi hai?
0: Bilkul hai, and yes, because every appointment letter handed over today was not merely a document, it was a promise of trust, a promise of opportunity, and a promise that India's future is being shaped by the hands of its own youth. And now, Karishma, hum log ek dusre topic ka bhi zikr kiya tha, to kyun na jaldi se usko iska bhi zikr kar hi liya jaye. Today is International Turtle Day. And isn't it amazing, Karishma, how our turtles seem to carry a sense of calm wherever they go. Slow, patient and silent. They travel through water and land as though they are untouched by the rush of the modern world around.
4: बिल्कुल. और श्रोताओं, हर साल 23 मई को दुनिया विश्व कछुआ दिवस मनाती है. यह दिन उन असाधारण जीवों का उत्सव मनाने का है और उनकी रक्षा करने के लिए समर्पित है जो लाखों वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद हैं.
0: जी हाँ करिश्मा, वो लाखों वर्षों से मौजूद भी हैं और इनफैक्ट उनका खुद का भी जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत बड़ा होता है. एंड समवेयर आई हैड रेड दैट अ मेजर रीजन ऑफ टर्टल्स हैविंग यू नो लिविंग वेरी लॉन्ग लाइव्स इज बिकॉज Their breaths are really slow. तो जो हम लोग आजकल एक्सरसाइज में लोग कहते हैं ना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, यू नो इनहेल एंड एक्सहेल डीपली. सो दैट इज वन मेजर रीजन के आप अगर पढ़ेंगे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर हाउ मेनी सेकेंड्स, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग ब्रेथ ऑफ अ टर्टल. सो दैट इज अ वेरी मेजर रीजन फॉर देयर यू कैन से इंक्रीज्ड लाइफ स्पैन. एंड वेल, इंटरनेशनल टर्टल डे वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2000, नॉट मेयरली एज अ सेलिब्रेशन बट एज अ रिमाइंडर दैट सम ऑफ नेचर्स मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशंस survive quietly but disappear quietly too if we fail to notice them.
4: बिल्कुल. और सायरा, जो आप जिक्र कर रही थी वही बात हम आगे बढ़ाएंगे कि कछुआ हमें एक बहुत ही गहरा और सार्थक सबक भी सिखाते हैं, वह है जुझारूपन. वे हमें सिखाते हैं कि धीमा होने का मतलब कमजोर होना नहीं है और शांत होने का मतलब महत्वहीन होना नहीं है.
0: अनफॉर्चुनेटली देखिए ना, बड़े शहरों में खास तौर से, बड़े शहरों में आजकल की दुनिया ही इतनी जल्दबाजी की हो गई है कि लोगों को यही लगता है कि अगर कोई शांत है तो वो स्लो है. और वी हैव ग्लोरिफाइड यू कैन से ओवर वर्किंग विच इज वेरी बैड. इट्स अ बैड प्रेसिडेंट बिकॉज यू नो वी शुड लुक फॉरवर्ड टू अ स्लो लाइफ इज वेल बिकॉज दैट इज वॉट मेक्स अ लाइफ यू कैन से फुल ऑफ क्वालिटी टाइम. एंड वी कैन प्रॉब्ली लर्न फ्रॉम टर्टल्स. वेल, टर्टल्स आर रेप्टाइल्स हु बिलोंग टू द ऑर्डर ऑफ टेस्टुडिन्स. Exactly reptiles, we can say they're amphibians, and they can be found in freshwater rivers, ponds, wetlands and even deep oceans. Some spend most of their lives swimming through vast seas while others prefer life on land. That brings us to a question that many people often ask. Are turtles and tortoises the same?
4: खैर, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी कछुए टर्टल होते हैं लेकिन सभी टर्टल कछुए नहीं होते. कुछ कछुए पूरी तरह से जमीन पर रहते हैं जबकि कई टर्टल कुछ हद तक या ज्यादातर पानी में रहते हैं. एक और दिलचस्प बात यह है कि टर्टल ठंडे खून वाले जीव होते हैं जिनमें एक्टोथर्म भी कहा जाता है। इंसानों की तरह अपने शरीर की गर्मी खुद पैदा करने के बजाय वे अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए गर्म और ठंडी जगहों के बीच आते जाते रहते हैं और धीमे धीमे अपने मेटाबॉलिज्म की वजह से कुछ टर्टल बिना खाए या पानी पिए भी

0: हैरानी की बात है कि काफी लंबे समय तक वो जिंदा भी रहते हैं.
1: दैट्स राइट. एंड वेल, सी टर्टल्स स्पेशली आर अमंग द ग्रेटेस्ट ट्रैवलर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. स्पीशीज लाइक द ऑलिव रिडली, द ग्रीन टर्टल, हॉक्सबिल, लेदरबैक एंड लॉगरहेड, दे क्रॉस इनॉर्मस ओशंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. वेल, दैट्स रियली अस्टॉनिशिंग, इजंट इट?
0: बिल्कुल. और भारत के पास इस मामले में गर्व करने की हर वजह है. हमारा देश कछुओं की अद्भुत विविधता का घर है. असल में भारत में ताजे पानी के कछुओं के लगभग 30 प्रजातियां पाई जाती हैं और उत्तर प्रदेश, असम तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इनके लिए महत्वपूर्ण आवास बन गए हैं.
1: दैट्स राइट. एंड इनफैक्ट इवन द बीचेस ऑफ ओडिशा, वी हैव यू नो रेड दैट द ऑलिव रिडली टर्टल वो वहां पे नेस्टिंग करते हैं. एंड इट इज एक्चुअली इट इज होम टू 5 स्पीशीज ऑफ सी टर्टल्स इंक्लूडिंग द ऑलिव रिडली, ग्रीन टर्टल, द लॉगरहेड. बट सैडली दीज ब्यूटिफुल क्रीचर्स आर ऑल्सो फेसिंग ग्रोइंग डेंजर्स. स्पेशली वी सी इनफैक्ट जितनी भी मरीन लाइफ है, हम सब लोग परेशान हैं. जो ह्यूमन वेस्ट, जो खासतौर से प्लास्टिक वेस्ट हम लोग पोर कर रहे हैं इन आर वाटर बॉडीज, आई थिंक दैट इज रियली पोजिंग अ डेंजर टू टर्टल्स इटसेल्फ. एंड दे आर फ्लोटिंग इन रिवर्स एंड ओशंस, दे आर श्रिंकिंग हैबिटेट्स, क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड थ्रेटन देयर सर्वाइवल एवरी सिंगल डे एज वेल.
0: बिल्कुल. और इसलिए श्रोताओं, हम सभी को समझना जरूरी है कि समुद्र में तैरता हुआ एक प्लास्टिक का थैला हमें शायद बेजान और नुकसान रहित लगे, लेकिन एक कछुए के लिए यह खाने जैसा दिख सकता है और इंसानों की एक छोटी सी लापरवाही किसी जीव की जान ले सकती है. गैर कानूनी तस्करी भी एक और गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, खासकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, जहां अक्सर कछुओं का शिकार उनके मांस, पालतू जानवर बनाने या फिर पारंपरिक दवाओं के लिए किया जाता है.
1: And that raises an important question for all of us. Can a species that survived dinosaurs truly disappear because of human carelessness? Well, maybe yes, maybe no. But we have to be very, very protective about them. And thankfully, conservation efforts across India are giving hope. Uttar Pradesh has emerged as a leader in turtle conservation with dedicated centers in Kukrail, in Lucknow, Sarnath, in Varanasi, चंबल इन अटावा एंड इवन अ 30 किलोमीटर टर्टल सैंक्चुरी इन प्रयागराज. मेरे ख्याल से बहुत कम लोग को पता होगा इस चीज के बारे में.
0: बिल्कुल. और इसके साथ ही श्रोताओं, वन विभाग कछुओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है, विशेष रूप से पीलीभीत जैसे क्षेत्रों में. अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व में माला नदी के किनारे पर एक नया कछुआ संरक्षण और अनुसंधान केंद्र विकसित कर रहा है. ये प्रयास हमें याद दिलाते हैं कि संरक्षण का अर्थ केवल वन्य जीवों की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखना और हमारे सामूहिक भविष्य को सुरक्षित रखना भी है.
1: So perhaps this World Turtle Day, the next time we stand by a river bank or gaze at the ocean or spot a turtle, maybe just on a television screen, we should remember that beneath that gentle and unhurried movement lives a story millions and millions of years old.
0: बिल्कुल. और शायद असली सवाल ये नहीं है कि क्या कछुओं को अपने अस्तित्व के लिए हमारी जरूरत है या नहीं है. असली सवाल ये है कि क्या इंसानियत सचमुच प्रकृति के उन अजीबों की रक्षा करे बिना ही फल फूल सकती है जो इस ग्रह को सबसे पहले इतना सुंदर बनाते हैं. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
1: वेल, करिश्मा, तो वो वक्त आ गया है जब हम लोग देश की परिक्रमा पे निकलते हैं. तो अपना सफर सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रॉम सिक्किम. वेल, सिक्किम इज सेट टू गेट इट्स सेकंड इंटरनेशनल ट्रेड गेटवे आफ्टर द नाथुला पास इन वेस्ट सिक्किम. लेट्स हियर मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट.
2: प्लान्स अंडरवे टू डेवलप अ मल्टी मॉडल कॉरिडोर एंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट चेवा वांगजियांग इन वेस्ट सिक्किम अलोंग द इंडियो नेपाल बॉर्डर. द प्रोजेक्ट गेन्ड मोमेंटम After Chief Minister of Sikkim, Mr. Prem Singh Tamangole, visited Chewa Wanziang in 2024 and announced plans to develop a trade and connectivity corridor with Nepal. Recently, the Standing Committee of the State Board for Wildlife under the Department of Forest held a meeting chaired by Minister of Forest Government of Sikkim, Pinso Namgyal Lepcha, regarding this project. According to Chief Conservator of Forest, Mr. Uday Gurung, the committee has given in-principle approval for the proposed multimodal corridor and integrated checkpost. The project aims to boost cross-border trade, tourism and regional economic integration between

0: in India and Nepal. The proposed facility will include cargo handling services, warehousing, banking, healthcare, parking areas and other essential services under one roof. Popular religious destination Pathibhara Devi Temple in Nepal currently takes around 12 hours to reach via Darjeeling in West Bengal. However, travel time could reduce to nearly 5 hours once the new corridor becomes operational. Government of Sikkim has already constructed an 18-kilometer road connecting Uttare to Cheowangjiang, paving the way for future trade and movement between the two neighboring countries. With Manoj Pratim Sharma, this is Moinak Chatterjee from Akashvani News Gangtok for Parikrama.
1: और सिक्किम के बाद अब चलते हैं उत्तराखंड, क्योंकि हिमालयी वादियों में इन दिनों आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। एक ओर चमोली जिले में स्थित सिखों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, तो वहीं दूसरी ओर चारधाम यात्रा में भी देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। एक रिपोर्ट।
2: चमोली जिले की ऊंची हिमालय की चोटी के बीच स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज पूर्वाह 11:30 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलते ही पूरा क्षेत्र जो बोले सो निहाल, सस्त अकाल के जयकारों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पल का साक्षी बनकर मत्था टेका और गुरु घर में अरदास की। समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब सिख धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहां तपस्या की थी। हेमकुंड साहिब यात्रा का मुख्य पड़ाव गोविंद घाट से शुरू होता है। यहां से श्रद्धालु घांगरिया से होते हुए कठिन पैदल यात्रा कर गुरुद्वारे तक पहुंचते हैं। यात्रा शुरू होने से पहले मार्ग से बर्फ हटाने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और श्रद्धालु की सुविधा से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने यात्रियों के लिए स्वास्थ्य, आवास और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। उधर चारधाम यात्रा भी पूरे उत्साह के साथ जारी है। इस वर्ष अब तक लगभग 19 लाख श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। इसमें केदारनाथ धाम में सबसे अधिक लगभग 7,91,000 श्रद्धालु पहुंचे, जबकि बद्रीनाथ में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी लगभग 6.5 लाख तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड की हिमालयी वादियों में इन दिनों आस्था अपने चरम पर दिखाई दे रही है। कहीं गुरुवाणी की मधुर स्वर गूंज रही है तो कहीं मंदिरों की घंटियां और हर हर महादेव के जयकारे वातावरण को भक्तिमय बना रहे हैं। बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवाएं और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था के बीच उत्तराखंड एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक विरासत की जीवंत तस्वीर बनकर उभर रहा है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
3: एंड फ्रॉम अप नॉर्थ इन देहरादून वी नाउ गो डाउन साउथ टू तिरुवनंतपुरम। HLL Life Care Limited, it's a Government of India enterprise under the Ministry of Health and Family Welfare, recently launched a new range of compostable sanitary napkins in Tiruvananthapuram. The product was launched by the Union Health Secretary, marking a major step towards promoting menstrual hygiene and environmental sustainability. Let's hear more from our correspondent.
4: The newly introduced sanitary napkins are made using compostable materials aimed at reducing plastic waste and encouraging eco-friendly disposable practices. The initiative comes at a time when concerns are growing over the environmental impact of conventional sanitary products in India. HLL officials said the new range combines comfort, hygiene, affordability and sustainability, making it accessible to women in both urban and rural communities. The company added that innovation-driven healthcare solutions remain central to its mission, particularly in the areas of women's health and public well-being. The rollout is part of this public sector organization's broader efforts to strengthen menstrual health awareness and expand access to quality hygiene products through healthcare institutions, public distribution systems and outreach programs. Public health experts say sustainable menstrual products can help reduce environmental burden while promoting safer hygiene practices among women and adolescents. HLL Life Care Limited is known for manufacturing health care products including contraceptives, pharmaceuticals and medical devices. The organization also contributing significantly to affordable and accessible health care in India. Smithy M. Palluruthi, Akash Vani News, Tiruvananthapuram.
1: और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच लखनऊ के

भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। और श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।

0: जन्म 1 अक्टूबर 1908 को केरल के त्रिशूर में हुआ था। विद्यार्थी जीवन में ही मेनन राजनीति में भाग लेने लगे थे। उन्होंने केरल में वाइकॉम सत्याग्रह के जाति विरोधी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था।
1: प्रजामंडलम में शामिल होकर वो राजनीति में और अधिक सक्रिय रहे। बाद में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। मेनन केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य रहे।
0: पेशे से वकील मेनन 1935 और 1938 में दो बार कोच्चि विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। कोच्चि सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में 1942 में मेनन ने त्यागपत्र दे दिया।
1: उन्हें 1945 में फिर से कोच्चि विधानसभा के लिए चुना गया। मेनन ने 1946 में कोच्चि के खाद्य मंत्री के पद पर काम किया। वो 1947 में प्रांत के मुख्यमंत्री बने। मेनन ने संविधान सभा में कोच्चि रियासत का प्रतिनिधित्व किया।
0: त्रावणकोर कोच्चि राज्य के गठन के उपरांत मेनन 1952 में राज्य के वित्त मंत्री बने। उन्होंने त्रावणकोर कोच्चि राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर भी कार्य किया।
1: वो 1962 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहयोग मंत्रालय का कामकाज संभाला। मेनन 1967 में रेल मंत्री, कानून मंत्री और समाज कल्याण मंत्री भी रहे।
0: मेनन ने सार्वजनिक कार्यों में विविध प्रकार की भूमिका निभाई। उन्हें वंचित वर्गों के हिमायती के रूप में जाना जाता है। वे शिक्षकों की स्थिति में सुधार के लिए जाने जाते हैं।
1: उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो जीवन भर राष्ट्र की सेवा करते रहे। महान राष्ट्रवादी पनमपिल्ली गोविंद मेनन को हमारा नमन। 23 मई 1947 को ब्रिटिश कैबिनेट ने गवर्नर जनरल माउंटबेटन की भारत विभाजन नीति को पारित कर दिया। इस नीति के तहत दो नए राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव। रियासतें दोनों अधिराज्यों में से किसी में भी मिलने को स्वतंत्र थी। रियासतों के पास किसी भी अधिराज्य में शामिल न होकर स्वतंत्र रहने का विकल्प भी था। भारतीय नेताओं ने इस योजना का विरोध किया क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि इससे भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा था।
0: हम आज हनुमान सिंह को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। शुरू में हनुमान सिंह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेना में नौकरी करते थे, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर वे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शामिल हो गए।
1: उन्होंने विभिन्न अवसरों पर अंग्रेजों से लोहा लिया और सहयोगी सेनानियों की आर्थिक सहायता भी की। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजों से राजद्रोह करने का मुकदमा उन पर चलाया। उन्हें 1857 में लोहे की बेड़ियों में जकड़कर सश्रम आजीवन कारावास के लिए निर्वासन की सजा दी गई। अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में 23 मई 1858 को उनका निधन हो गया। मां भारती के महान सपूत हनुमान सिंह को हमारा शत शत नमन।
2: और इसके साथ ही आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका वसुंधरा कोमकली की जयंती है। वसुंधरा कोमकली का जन्म आज ही के दिन जमशेदपुर में हुआ था। उन्होंने ग्वालियर घराने की परंपरा को अपनी विशिष्ट शैली में आगे बढ़ाया। वसुंधरा कोमकली ने ख्याल गायन, निगुड़ भजन और लोक धुनों को बेहद भावपूर्ण अंदाज में प्रस्तुत किया और वे लंबे समय तक आकाशवाणी और दूरदर्शन की नियमित कलाकार भी रही थी तथा देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपनी स्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2006 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

0: एंड वेल नाउ वी आर हेडिंग टू यू कैन से रैप अप द शो करिश्मा. उम्मीद है कि आप हमारे लिसनर्स को पसंद आया होगा आज का शो. सो विद दैट दीजिए करिश्मा एंड सायरा को इजाजत.
1: नमस्कार.
0: नमस्कार.

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5 बजे अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम नारायण के अंतर्गत आइए हम आपको जानकारी देते हमारी आज की सभा की शेष रहे और कल की पहली सभा के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की पहली आज की सभा की शेष रहे मुख्य कार्यक्रम।

चौबीस एक खुशी पल मेरे ठीक 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और जिले के चिट्ठी आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम किसान वाणी शाम 7:00।

रात 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात 10 बजे। रात 11 बजे सुनिएगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आइए एक नजर हमारी कल की प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों पर। रोजाना की तरह हमारी प्रातःकालीन रेडियो तरंगों का आगाज होगा प्रातः के 5:51 पर। प्रातः 6 बजे सुनिएगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

रामचरित मानस गान आप सुनेंगे प्रातः के 6:30 पर, प्रातः के 6:40 पर सुनेगा कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम खेतीनी बात का समय रहेगा प्रातः के

प्रातः के 7:20 पर आप सुने हैं कार्यक्रम वातायन। कार्यक्रम कुछ दिन से का समय रहेगा प्रातः के 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत आप सुने हैं प्रातः के 8:45 पर। कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे 11:30 पर। आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत दिन के 12:00 से। आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM बैंड 101.3 MHz पर ही आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:05 हुए। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत आज आपको सुनवाते हैं मांगी बाई के गाय कुछ चुनिंदा राजस्थानी लोकगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
3: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चनल से। आइए सुनते हैं अगली पेशकश मांगी बाई की आवाज में।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश मांगी बाई और साथियों की आवाज में।

मांगी भाई और साथियों के गैस गीत के साथ ही कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत अब यही खत्म होता है। FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:30 होने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: के जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: थोड़ी देर में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
0: सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
5: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
4: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को

0: आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99 रूपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92 रूपए 49 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा प्रस्तुत कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

0: आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 6:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे जिले के चिट्ठी आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के दांडेवाला फील्ड में नए गैस भंडार का पता लगाया। प्रदेश में पानी बचाने की मुहिम को लेकर सोमवार से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा और राज्य के पूर्वी हिस्सों में आंधी के साथ हल्की बारिश से गर्मी से मामूली राहत। कल से तापमान में फिर से बढ़ोतरी के आसार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे इस भरोसे को और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। भारत विश्व के कई देशों के साथ साझेदारी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि इससे उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से समझने में मदद मिलेगी। देश में 47 स्थानों पर इस मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों और संगठनों के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। पूरे देश से चुने गए ये नए कर्मचारी रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उच्च शिक्षा विभाग जैसे कई अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में अपनी रेल सेवाएं देंगे। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर में रोजगार मेले आयोजित किए गए। इनमें 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में शिरकत की। सभा को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने नव नियुक्त युवाओं से राष्ट्र निर्माण में पूरे मन से योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे में 1,60,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसमें 4 करोड़ से अधिक उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। जोधपुर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं से

0: सरकारी सेवा को राष्ट्र सेवा का माध्यम मानते हुए अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की भावना से काम करने को कहा।
1: हमारी ऊर्जा का हर एक कण राष्ट्र विकसित हो इसके लिए समर्पित होना चाहिए, क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं। मित्र, जब कोई देश कोई समाज इस तरह के परिवर्तन के दौर से गुजरता है तब उसका हर घटक की अपनी एक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन जो लोग सक्षम होते हैं उनका दायित्व तो उतना ही बड़ा होता है। और क्योंकि आज से आप सब लोग सरकार का हिस्सा बनकर के सक्षम हो रहे हैं, ये मानते हैं कि ये शक्ति जो मिली है ये शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन का एक टूल है। इस दृष्टिकोण से हम सबको काम करने की आवश्यकता है।
0: अजमेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने 258 और बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 281 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथले सानू फॉर्मेशन से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी और भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में गति मिलेगी। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति स्थिर है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने से अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले कुछ दुकानों तक ही सीमित हैं। 1 मई से 22 मई के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। पेट्रोल बिक्री में 14%, वहीं डीजल बिक्री में करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। पिछले 10 दिन में तेल के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में सोमवार से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू होगा। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान जल संरक्षण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अभियान की तैयारियों को लेकर आज सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जल संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ते हुए इसे जन आंदोलन बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अभियान की ग्राम पंचायत स्तर तक गतिविधियों की मॉनिटरिंग मोबाइल ऐप और रियल टाइम रिपोर्टिंग से की जाएगी। इस अभियान को लेकर विभिन्न जिलों में भी तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज सवाई माधोपुर में जिला कलेक्टर कानाराम ने ग्रामीण विकास, डांग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जल संरक्षण, आवास, स्वच्छता और विकास कार्यों को तय समय में और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए। प्रदेश में जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए विलायती बबूल का उन्मूलन किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को इसके लिए योजना बनाकर काम करने को कहा है। आज जयपुर में विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि विलायती बबूल के उन्मूलन से पौधों की स्थानीय प्रजातियों को संरक्षण मिलेगा और पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा। श्री दिलावर ने बबूल की लकड़ी से कोयला बनाने के लिए योजना बनाने को भी कहा। गौरतलब है कि विलायती बबूल अन्य वनस्पतियों को पनपने नहीं देता है। इसकी जड़ें 10 मीटर तक फैली होती हैं और ये अत्यधिक पानी सोखता है। 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा 2026 को पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रदेश में विशेष तैयारियां

0: की जा रही है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज परीक्षा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को मिलकर परीक्षा प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने संवेदनशील परीक्षा केंद्रों और जिलों को विशेष निगरानी रखने, पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने तथा परीक्षा केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा। ये परीक्षा राज्य में 611 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। इसमें 2 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस बीच मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित बीकानेर यात्रा की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश में आज मौसम में आए बदलाव से पूर्वी इलाकों के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से मामूली राहत मिली है। आज दोपहर बाद राजधानी जयपुर सहित सवाईमाधोपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, करौली और भरतपुर, कोटा, बूंदी जिलों में बादल छाए रहे और धूल भरी आंधी चली। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी तो कहीं कहीं हल्की बरसात हुई। दूसरी ओर राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में तेज गर्मी का असर रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही इस दौरान कई जिलों में लू चलने के भी आसार हैं। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर डीग पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सड़कों, बाजारों और कोचिंग सेंटरों के आसपास मंचलों पर शिकंजा कस रही हैं। पुलिस अधीक्षक कामले शरण गोपीनाथ ने बताया कि ऑपरेशन डिकॉय के तहत महिला पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में रहकर लड़कियों को परेशान करने वाले मंचलों पर नजर रख रही हैं। कॉलेज छात्रा पूजा ने बताया कि कॉलेज जाते हुए वे अब अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के दांडेवाला फील्ड में नए गैस भंडार का पता लगाया। प्रदेश में पानी बचाने की मुहिम को लेकर सोमवार से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा और राज्य के पूर्वी हिस्सों में आंधी के साथ हल्की बारिश से गर्मी से मामूली राहत, कल से तापमान में फिर से बढ़ोतरी के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से धौलपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख गौरव शर्मा ने तैयार किया है। धौलपुर जिले की चिट्ठी में बात करेंगे हालिया खबरों, गतिविधियों और जागरूकता कार्यक्रमों के साथ वन्य जीवों की। इन सब का ब्यौरा आप तक चिट्ठी में पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बालिकाओं की एक उपलब्धि की। जिले की विष्णुदा और मनिया की महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों की बालिकाओं ने छत्तीसगढ़ में हुई राष्ट्रीय जंबूरी में धौलपुर का नाम रोशन किया है। उन्होंने रंगोली प्रतियोगिता में देश में पहला स्थान प्राप्त किया, साथ ही स्टेट गेट प्रतियोगिता में भी पहले नंबर पर रही। इन बालिकाओं ने राष्ट्रीय एकता और महिला सशक्तिकरण का संदेश देती हुई शानदार रंगोलियां बनाकर ये उपलब्धियां हासिल की। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी की अध्यक्षता में बीते दिनों जनसुनवाई की गई। इस दौरान जमाबंदी में नाम सही करवाने, अतिक्रमण हटवाने और पीएम सम्मान किसान निधि की राशि दिलवाने तथा राजस्व सहित कई प्रकरण प्राप्त हुए। इनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वहीं जिला जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति में दर्ज 2 प्रकरणों का मौके पर ही निपटारा किया गया। जिले में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए नगर परिषद की ओर से 7 स्थानों पर विश्राम स्थल बनाए गए हैं। इनमें पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था भी की गई है। ये सभी आश्रय स्थल भीड़भाड़ वाले इलाकों में बनाए गए हैं, जिससे राहगीर, बुजुर्ग और महिलाएं जरूरत पड़ने पर राहत हासिल कर सके। वहीं बढ़ती गर्मी के कारण जिला चिकित्सालय में भी मौसमी बीमारियों के मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में लू और तापघात के रोगियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जिले में आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर पिछले दिनों

0: स्वैच्छिक ब्लैक आउट मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान प्रशासन की अपील पर लोगों ने 15 मिनट के लिए बिजली बंद रखी। इससे पहले प्रशासन की ओर से सभी लोगों से मॉक ड्रिल के दौरान घरों में रहने को कहा गया। मॉक ड्रिल से पहले संबंधित थानों को इस प्रक्रिया की जानकारी दी गई। पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर धौलपुर में रिजर्व पुलिस लाइन में कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने परेड की सलामी ली और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान शहीद वीरांगनाओं को भी नवाजा गया। जिला पुलिस और आरएसी धौलपुर छठी बटालियन की ओर से संडे ऑन साइकिल अभियान रखा गया है। इसके जरिए पुलिस सेहत और सुरक्षा का संदेश देगी। इस दौरान योग सत्र भी होगा। पुलिस ने इस विशेष कार्यक्रम में आमजन और इच्छुक नागरिकों के साथ ही विद्यार्थियों से ज्यादा भागीदारी की अपील की है। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में अब महिला प्रताड़ना और पोक्सो के झूठे मुकदमे दर्ज करवाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इस साल अप्रैल महीने तक जिले में महिला अत्याचार के करीब 250 प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें से 86 मामले जांच में झूठे पाए गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि झूठी एफआईआर और फर्जी आरोप लगाने के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिले के सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों की अनदेखी पाए जाने पर 12 अस्पतालों का पंजीकरण 5 दिन के लिए निलंबित किया गया। वहीं 2 चिकित्सालयों का पंजीकरण स्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया। सीएमएचओ ने बताया कि निजी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी, जवाबदेह और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई है। जयपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में बिजली चोरी और बकाया बिलों की वसूली के लिए खास अभियान चलाया गया। इसके तहत राजाखेड़ा और मरीना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध बिजली उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इस दौरान 15 ट्रांसफार्मर जब्त किए गए। जिले में जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों से यातायात नियमों की पालना की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में जन सहयोग से हेलमेट वितरित किए गए। वहीं बाइक रैली निकालकर लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा। खनन विभाग ने धौलपुर जिले में 16 संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। धौलपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो, सरकारी नौकरियां जनतारी जिंदगी बेहतर और आसान बनावन रो खास जरियो। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसलमेर जिला रा दांडेवाला फील्ड माए गैस रा नुआ भंडार रो पतो लगायो। प्रदेश माए पानी बचावन री मुहिम रा तेत सोमवार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू करयो जावेला। और राज्य रा उगनी हलका माए आंधी और हल्की बारिश गर्मियों थोड़ी सहायता मिली। कालू पारो ओजू चढ़वारा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि सरकारी नौकरियां लोगों की जिंदगी बेहतर और आसान बनावन रो खास जरियो है। वह आज राखी जिया 19वां रोजगार मेला माए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोल रहा है। प्रधानमंत्री कहो कि देश कर्म योगियां माथे भरोसा जतायो है और इन्हें मजबूत बनावन री जिम्मेदारी कर्म योगियां री है। श्री मोदी कहो कि पूरी दुनिया भारत री विकास यात्रा रो हिस्सो बनवारी मर्जी रखे है। प्रधानमंत्री कहो कि भारत दुनिया रा कई देशों सागे साझेदारी कर रियो है, जिन रो मकसद नौजवाना ने नौकरी धंधा रा मौका और दुनिया रो अनुभव दिलावनो है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर

0: मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री नवी नौकरी लागिया कर्मचारियों ने आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म बत्तों बत्तों इस्तेमाल करन सारू कहो। आखा देश माए 47 ठोणा रोजगार मेला लगाईचिया। इन दौरान 51,000 बत्ता मोटियारा ने सरकारी महकमा और संगठना माए नौकरी लगन का कागजात सौंपीचिया। प्रदेश माए जयपुर जोधपुर बीकानेर और अजमेर माए रोजगार मेला लगार 1,100 बत्ता नौजवाना ने नौकरी लगन का कागजात दिया चिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जयपुर माए राखी जया रोजगार मेला माए शामिल थिया। ये मौके श्री वैष्णव नवी नौकरी लागण वालों राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम रिसोच काम करण और देश बनावण का काम माए पूरा मन योगदान देवन री अरज कीनी। वे कहो कि रेलवे माए 1,60,000 बत्ता ओहदा माथे भर्ती रो काम चाल रियो है, जिन सारू 4 करोड़ बत्ता उम्मीदवार भाग आज मारिया है। जोधपुर माए राखी जा रोजगार मेला माए केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मोटियाराओं सरकारी नौकरी ने देश री सेवा रो जरियो मानता था का हर पात्र जना ताई सरकारी योजनाओं रो फायदो पुगावन री भावनाओं काम करण बाबत कहो।
2: हमारी ऊर्जा का हर एक कण राष्ट्र विकसित हो इसके लिए समर्पित होना चाहिए, क्योंकि हम सौभाग्यशाली। मित्र, जब कोई देश कोई समाज इस तरह के परिवर्तन के दौर से गुजरता है तब उसका हर घटक की अपनी एक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन जो लोग सक्षम होते हैं उनका दायित्व उतना ही बड़ा होता है। और क्योंकि आज से आप सब लोग सरकार का हिस्सा बनकर के सक्षम हो रहे हैं, ये मानते हैं कि ये शक्ति जो मिली है ये शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन का एक टूल है, इस दृष्टिकोण से हम सबको काम करने की आवश्यकता है।
1: अजमेर माए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी 258 और बीकानेर माए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 281 उम्मीदवार ने नौकरी लगन का कागजात सौंपया। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड राजरा दांडेवाला फील्ड माए नुआ गैस भंडार रो पतो लगायो है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि करीब 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन रे रेट प्राकृतिक गैस निकलबाऊ देशी ऊर्जा उत्पादन मजबूत बनायला। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहो है कि देश में तेल गैस री कोई कमी नहीं है और पेट्रोल डीजल री पूर्ति स्थिर है। कंपनी रे मुजब 1-22 मई बीच IOCL रा पेट्रोल री बिक्री माए 14% और डीजल री बिक्री माए करीब 18% री बढ़ोतरी थी। ये विचे तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल रा मूल माए और बढ़ोतरी करती नहीं है। ध्यान जोग है कि लारला 10 दिन माए तेल रा मूल माए तीजी दफा बढ़ोतरी करी ची है। लारला कुछ दिन माए करीब 5 रुपया प्रति लीटर री बढ़ोतरी फी है। केंद्र सरकार विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 रवारा माए जनतारी राय सारू मसौदा नियम जारी कीना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय रे मुजब कोई जनो हितधारक संगठन या संस्था 21 जून 2026 ताई मसौदा नियमों जुड़ी आपत्तियां या सुझाव दे सके है। विकसित भारत जी राम जी कानून 20 साल जूना मनरेगा रिठौर लाइचियो है। नुआ कानून रातेत 1 साल माए 100 दिन री मजूरी री कानूनी गारंटी ने बधार 125 दिन करण रो प्रस्ताव है। विकसित भारत जी राम जी कानून 1 जुलाई सगला राज्यों और केंद्र राज वाला प्रदेशों माए लागू भेजा वेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रदेश माए सोमवार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू करो जावेला। 5 जून ताई चलन वाला ई अभियान रे दौरान पानी बचावण जुड़िया काम करया जावेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ई अभियान री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू आज अहंकारा सागर मीटिंग कीनी। मुख्य सचिव अहंकारा ने पानी बचावण री मुहिम जनता ने जोड़बा सारू कहो। ई अभियान री तैयारी

अधिकारियां रहते हैं। तो आज सवाई माधोपुर राज जिला कलेक्टर कानाराम ग्रामीण विकास डांग और पंचायती राज विभाग रा अहलकार रे मीटिंग लेनी और जरूरी हुक्म देना। प्रदेश में जैव विविधता और पर्यावरण ने बचावन सारू विलायती बबूल ने हटाया जावेला। इस सारू पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज जयपुर में अहलकार सागर मीटिंग रे दौरान योजना बनार काम करण सारू कहो। श्री दिलावर बबूल री लकड़ी कोयलो बनावन री योजना बनावन बाबत हुकम दीना। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास 21 जून ने उजू ली जावन वाली नीट 2026 परीक्षा री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू आज अहलकार सागर मीटिंग की नी। वह परीक्षा ने निष्पक्ष साफ और

0: यकीनी व परीक्षा न निष्पक्ष साफ और सुरक्षित तरीकों करावण सारू संबंधित महकमा और प्रशासन न मिलर काम करण बाबत कहो। मुख्य सचिव गड़बड़ी री शंका वाला परीक्षा केन्द्र और जिला माए खास निगरानी रखण और जरूरी तादाद माए पुलिस रा जवान तैनात करण बाबत ही कहो। आ परीक्षा राज्य में 611 परीक्षा केन्द्र में थे। दोपहर पाछे 2:05 बजे तई ली जावेला नीट री ई परीक्षा में 2,00,000 बत्ता विद्यार्थियों रे शामिल फेवन रा आसार है। मुख्य सचिव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रा बीकानेर रा प्रस्तावित दौरा री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू ही अहलकारा सागे मीटिंग कीनी व सरहदी जिला में हिफाजत और निगरानी री व्यवस्था और असरदार बनावन रा हुकम दीना। डीग माए महिलावां और टाबनियां री हिफाजत सारू पुलिस री कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सड़कां बाजारां और कोचिंग सेंटर कने खास निगरानी राख रही है। एसपी कांबले शरण गोपीनाथ बतायो के लड़कियां ने परेशान करण वाला रे खिलाफ ऑपरेशन डिकॉय रातेत महिला पुलिस सादा कपड़ा पहर कार्रवाई कर रही है। वह बतायो कि बीएनएसएस री धारा 170 रातेत बिना वारंट गिरफ्तारियां ही करी जा रही है।
1: जिले में जो कालिका पेट्रोलिंग जो टीम है वो अलग अलग तरीके से कार्रवाई कर रही है। जैसे बेसिक हेल्पलाइन जो होती है 1090 या 1098 1930 इस तरह से अलग अलग जो हेल्पलाइन है उसका अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंचा देना। साथ में जो सेल्फ डिफेंस है आत्मरक्षा का जो ट्रेनिंग है उसको भी अलग अलग स्टूडेंट्स को स्कूल्स में या कॉलेजेस में जाकर उनको देना ये भी काम उनके द्वारा किया जाता है। राज का ऑफ द सिटीजन ऐप है जैसे लगभग हर महीने अगर आप देखोगे तो एवरेजन जो है वो 600 जो राजकोट एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करने का जो टारगेट है वो कालिका पेट्रोलिंग टीम ले रही है उसको पूरा भी कर रही है।
0: कॉलेज छात्रा पूजा बतायो के पुलिस री ओर खुदरी हिफाजत री सिखावन देवनो कॉलेज जाते वक्त व बत्ती हिफाजत महसूस करे है।
2: यहाँ पर काल का यूनिट है वो उनको गाइड करती है कि उनको जैसे घर से बाहर निकलते टाइम या जो कमेंटबाजी करते हैं छेड़खानी करते हैं उनको कैसे पुलिस तक उनकी सूचना देनी है उसके लिए हमको एक ऐप भी बताया गया है राजकोट ऐप उसके थ्रू हम उनकी शिकायत कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 1090 जिससे हम बाहर निकलते हैं तो अगर कोई भी दिक्कत होती तो हम उसके थ्रू पुलिस को शिकायत कर सकते हैं।
0: मौसम प्रदेश का उगनी हल्का माए आज आंधी सागे भी हल्की बारिश हो गर्मी थोड़ी सत्ता मिली। दोपहर पाछे सवाई माधोपुर जयपुर टोंक दौसा करौली भरतपुर कोटा और बूंदी समेत कई जिला माए बादला मंडिया रहा और आंधी चाली कठे कठे छाटो छिड़को भियो तो कठे कठे हल्की बारिश हुई। तुझीकानी राज्य रा आतुणी और उत्तराध हल्का माए तेज गर्मी रही। मौसम विभाग रे मुजब आवता 2-3 दिन पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़वारा आसार है जदका कई ठोड़ा लू बाजण री शंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 31 मई दीतवार ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई तई राय दे सको हो। नंबर ओजू सुन लिराओ सा 1800117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम के जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फेर सुन लिराओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकारी नौकरियां जनतारी जिंदगी बेहतर और आसान बनावन रो खास जरियो। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसलमेर जिला रा दांडेवाला फील्ड माए गैस रा नुआ भंडार रो पतो लगायो। प्रदेश माए पानी बचावन दी मुहिम रा तेत सोमवार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू करियो चावेला। और राज्य राउगनी हल्का माए आंधी और हल्की बारिश हो गर्मियों थोड़ी सत्ता मिली कालू पारो ओजू चढ़वारा आसार इसागी प्रादेश।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 7 बजे अब किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: किसानवाणी कार्यक्रम हमारा वारा सब किसान भाइयों ने मांझी भाई नो राम राम। किसान भाइयों खरीफ मौसम नी जे प्रमुख फसल है और अगर आप तिलहनी फसल नी बात करो तो तिलहनी फसल में सोयाबीन जे है ये आज किसान बल्ले आय नो एक महत्वपूर्ण साधन बनी गयु है। अगर अच्छी पैदावार है और रोग की बचाव है तो आपने इनी अच्छी है या अपने बढ़ोतरी मिले एंड में इनकी गुणवत्ता अच्छी रहे और फसल नो अपने अच्छा मुनाफा था है। तो अटले किसान भाइयों सोयाबीन की बुआई ने पहले इनमें से उन्नत किस्में हैं और इनकी हूं विशेषताएं हैं इन बारे में अपने पहले थी की जानकारी रखी जुए और आना बीजों अपने पहले थे की प्रबंध कर रखू जुए ताकि जारे बारिश था और इन बाद बुआई नो दौर चालू था तार अपने तने आजे किस्म है ये उपलब्ध रेवीज हुए। किसान भाई आने जो किस्म है इनमें एक किस्म नो नाम है जेएस 95-60। आ सोयाबीन एवी किस्म है जे की 85 थी की 90 दड़म तैयार था। आ एक जल्दी पकवा वाली किस्म है और आना जे दाणा है ये चमकदार रहे और अनु उत्पादन भी बढ़िया रहे। आज कम वर्षा वाले क्षेत्र है इन बल्ले भी उपयुक्त है कारगर है और एक जेएस 20-29 करीन है। आ एक मध्य अवधि उन्नत किस्म है जे की 92 थे की 95 दाड़म तैयार था है ने आण में जे पीलो मोजोक रोग आवे है आ इनमें सहनशील है और आण में अच्छी शाखाएं बनवा थे की उत्पादन जे है ई वधारे मले है। आरवीएस 2001 आ एक एवी किस्म है जिनी उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा रहे है और आ लगभग 90 थी की 95 दाड़ा में पाकी जा आण में जे दाणो है ये मोटो रहे और तेलनी जे मात्रा रहे ये आण में बढ़िया रहे अच्छी रहे। आ मध्यम थी की जे भारी भूमि है इन्हें बल्ले उपयुक्त है। किस्म ने आपने बात कर रहा तो एक एनआरसी 37 यानी अहिल्या 4 करीने आ रोग प्रतिरोधक जे क्षमता है जे आनी है ये वधारे है अनि वजह थे कि यह काफी लोकप्रिय भी है और आन माते से पीला मोजक ने तना मक्खी नो जो प्रभाव है ये बहुत कम देखा। असिंचित ने असिंचित बे प्रकार नो जो क्षेत्र है इनमें आनो जो उत्पादन है ये बढ़िया मले है। किसान भाई जेएस 93-5 आ भी एक अच्छी उत्पादन वाली किस्म है जिन में दाणा नो जो आकार है ये मध्यम रहे ने अण में तेल नो जो प्रतिशत रहे ये अच्छू रहे है। आ लगभग 90 दड़ में पाकिन तैयार थी जा एमनेम एक किस्म है एमएससीएस 1407 आ एक नवी किस्म है जिण में वधारे उत्पादन मले और अनि जे गुणवत्ता है ये भी बहुत बेहतर रहे। आप अण में पड़वानी जे समस्या ये कम थी जाए और जे वधारे पानी पड़े है बारिश वधारे था एवं क्षेत्र में आने थे कि अच्छो उत्पादन मले है। तो किसान भाइयों बुवाई ने समय हमेशा अपने सोयाबीन प्रमाणिक जे बीज है इनकी बुवाई करवी जुए और बीजोपचार अपने बीज की बुवाई ने पहले अवश्य कर लेव जुए एना खेतर में जल नी जे निकासी है एनो भी अपने उचित प्रबंध कर लेव जुए उचित व्यवस्था कर लेवी जुए और समय ऊपर खरपतवार नो नियंत्रण करवो ने संतुलित उर्वरक नो प्रबंधन कर लो तो आपड़ा खेतर में सोयाबीन नो जे उत्पादन है एणमें घणी वृद्धि दिखी सके आपने अच्छू उत्पादन मिली सके जेनाथी अच्छो लाभ मिली सके। पर हाँ आना सबने पहले सही किस्मों चयन करवो अच्छी पैदावार।

0: करनी पहली सीढ़ी है। आनो आपने ध्यान रखी ने सही केस में और विशेषता ने बारे में आपने जानकारी रखी ने बुवाई करवी जुए। तो किसान भाइयों आ तो रही सोयाबीन की उन्नत किस्म की बात बात अगाड़ी भी करो पर एने पहले आ संदेश सांभळी लो।
1: किसान मानधन योजना
2: मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
3: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
1: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
3: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
3: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका घर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: इंटरप्राइज को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: किशन भाई अपना हाथ है, कांति भाई है और कांति भाई जी की बात करेंगे। आगामी जो फसल है या आगामी जो मानसून सीजन है इनमें आपकी जो बुवाई है ना, बुवाई ने ठीक तरह से की करवा बल्ले मानसून पूर्व कई कई क्षेत्र में तैयारी है रहे इन्हें तैयारियों पर बात कर तो कांति भाई सबसे की पहले आपने आना कार्यक्रम में स्वागत है और अगली फसल की जो बुवाई है इन्हें बुवाई ने पहले आपने आना समय में आवड़े आना दाड़ में कई कई चीजें पहले थी कि तैयार करने बाकी हुए इन ऊपर आप अपना जो विचार है ये हमारा किसान भाई यहाँ से साझा करें।
3: सब किसान भाई ने राम राम। साथियों अवे है ही आज जेठ महीनो साली रो थको है, बावसी तपीरिया थका है ने आषाढ़ में पानी पड़े है तो अबे कोण ने आबीय सालवी शुरू थी जाए
2: बराबर।
3: तो सप्त की पहले तो अबड़े अपना है एक खेतर में कुछ किसान ने मक्का आती ने गेहूं होता थे ने बाद ही फसल का नहीं हुए तो एक एक खेड़ते किसान साथी करावी छोड़ दी दी होगा या कर दी दी होगा। तो अबे है ही आप फिर अगर एक करी हो तो अच्छी बात है, नहीं करी हो तो है कि इन्हें फिर एखादी खेड़ करी सकवानो उपयुक्त समय आलो आवी गयो है।
2: हाँ मतलब जने सही जी है ना तो ठीक है पर कोई बाकी रह गयो तो अवड़े आ करी सके सही समय उचित समय है।
3: नहीं करिए तो करवी देवी जुआन पहले करी दी दी अगर फसल नहीं कटाई ने बाद तो एक खेड़ जरूर कर देवी जुए
2: बराबर
3: इन्हें थकी है हवानो ने धूप नो जे गहराई तक पहुंचे ई दवा थे कि जितला भी मतलब है ई शत्रु कीट है इन्होंने जो लार्वा है ये ही प्राकृतिक रूप थे कि है ई मिट्टी में नष्ट थी जाए
2: बराबर है
3: ने कोई खरपतवार ना छोटो मोटे वो बीज हुए जे के फसल ने दौरान सिंचाई ने दौरान क्या कारण थे कि दबी गयू मन रही गयूंगा ते ई ऊपर आवे थे तो इन्होंने भी है ई धूप थकी तगड़ी धूप थकी है इननी है नष्ट थई जाए तो ई पसे आपण है ई जे आपणी समासानी फसल है नमी आपणने खरपतवार नाशी ना रूप में अतिरिक्त आपणने समय ने हां खर्च है ना लागत है ने कमी आवे ओ है।
2: हां तो आप जे कह रहे हो ने सब की आना दाड़ा में आपणी जे खेतर नी तैयारी है एणे से गहरी जुताई हो ई पहले कर ली हुए आ बात कर रहा हो ताकि आने से की जो अपने खेतर ने मिट्टी में जो सुखेला कीट है जो नुकसान पहुंचाई सके फसल ने या जो खरपतवार है जो अनावश्यक रूप से की उगी ने अपनी फसल ने नुकसान पहुंचाड़े ये समाप्त हो जाएगा नष्ट हो जाएगा अपने खेतर ने जुताई करवा सके इन्हें बाद

और दोपहर में समय से तेज धूप रहे, गर्म हवाएं साले। आज गर्म हवाएं है ने तेज धूप है, ये पशु ने नुकसान पहुंचाड़े, एटले आपने बपोर ने समय पशु ने ली जावा थकी बचवू जुए। किसान भाई पशुओं ने ठंडक भी आलवी पड़े, आने बल्ले जे आप भैंसे हैं एने समय समय पर पानी में बेवा देव, गाय या जे बीजे जे पशु हैं एने दाड़ा में एक बे वक्त पानी नो छिड़काव भी करवो, ताकि इनने थकी इनने शरीर नो जे तापमान है ये नियंत्रित रहे। और अगर लू ने लक्षण देखाड़ तो आ लक्षण की पहचान करनी बहुत जरूरी है। जेम कि अगर आप पशु है ये खूब तेज सांसे ले रू हो, मोड़ा थी कि वधार लार पड़ी रही हो, खावानु छोड़ दे या कमजोर देखा, तो आ लू ना संकेत थी सके। आवी स्थिति में आप पशु है इन्हें तरत छाया में बांधी दे और पशु चिकित्सक की वना देर कर आपने संपर्क करो जुए। तो किसान भाई थोड़ी सी सावधानी अगर आप अपनाव तो आप पशुधन है एने आने गर्मी और लू थकी सुरक्षित राखी शक। और आपने सब जाने किसान भाई के स्वस्थ पशु है इस पशुपालक नहीं या किसान ने असली पूंजी है, अटले अन्य गर्मी में लू थकी बचाड़ी नाखवा बल्ले आज छोटा छोटा उपाय है आने जरूर अपने करवा जुए, ताकि आप पशुधन स्वास्थ्य है बनेलो रहे, ये स्वस्थ रहे, तेनो जे दूध नो उत्पादन है ये प्रभावित न था, और दूध अगर बराबर मली रू है उत्पादन कम न थी रू तो एने थकी आपने आर्थिक लाभ मिलेगा। तो आ तो रही पशुधन ने आना गर्मी ने मौसम में गर्मी थकी और लू थकी बचाड़ उपाय ने बारे में बात अगड़ी भी कर, पर इन पहले आ संदेश अमरी लो।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: और किशन भैया हमें आपड़े बात कर लो, मानव शरीर ने या आपड़ा श्वास ने आना गर्मी ने दाड़ा में हरते बचड़ी रखो। तो किशन भाई आपड़े सब जाना के न केवल पशुधन ने पर आज तेज धूप है और लू नुजे असर है, ये आम लोगों ने भी श्वास ने प्रभावित करे। वधारे ताप में खातिर शरीर में पानी की कमी थी जा, चक्कर आवे, थकान लगे, सिरदर्द था और जो हीट स्ट्रोक जीवी समस्या है ई थई शके एवा में सावधानी रखवी ने सही दिनचर्या अपनावीने आपणे आना जे गर्मीना दुष्प्रभाव है एनाथी के आपणे बची शके। केम के गर्मी थकी जे प्रमुख नुकसान जे है जेने आपणे वात करी के भाई शरीर में पाणीनी कमी थई जा, यानी जे डिहाइड्रेशन थई जा, लू लागी जा, त्वचा झुलसी जा, आंख में जलन था, थकावट ने कमजोरी और जे बुजुर्ग हैं बच्चे हैं आनंद माते आनो प्रभाव भी वधारे रहे एटले आने थकी बचावना उपाय करवा बहुत आवश्यक है। उपाय ना अगर आपने बात करो तो पर्याप्त पानी पीवू सबथी की मोटो उपाय है। गर्मी में शरीर थे की पसीना ने रूप में जो पानी है ये निकलतो रहे अटले आपने दाड़ा में पर्याप्त मात्रा में पानी पीवू बहुत आवश्यक है। नींबू पानी है, छाछ है, मठो है, नारियल पानी और फलों नो जो रस है आ भी लाभदायक रहे तो आनो भी आपने सेवन करव जो। धूप में निकलो थे की बचू जो, यानी बपोर ना 12 थे की हाज ना लगभग 4-5 वगे थे की धूप केम के आना टाइम में खूब वधारे तेज रहे अटले आना समय बार ते निकलो थे की अपने बचू जुए और बहुत जरूरी हो तो माता माते टोपी या गमछो या फिर छातो लाइन निकलो जुए। हल्का ने सूती कपड़े पहरव जुए, गहरा रंग ना जे मोटे कपड़े है ये गर्मी ने वधारे खेसे है तो सफेद या जे हल्का रंग ना सूती कपड़े है

आ पहरवा थकी शरीर ने ठंडक मले। संतुलित भोजन करो भी बहुत आवश्यक है। गर्मी में हल्को या जेने पचावी शके एवो सुपाच्य भोजन लेव जुए। वधारे तलु भूनू या मसालादार जे भोजन रहे ई श्वास ने नुकसान पहुंचाड़े। एटले आपणे आने थकी परहेज करीने तरबूज खरबूज खीरा ककड़ी आवा जे पाणीदार फल रहे एने वधारे खावो जुए। जे बच्चे हैं बुजुर्ग हैं एने तो विशेष ध्यान रखवू पड़े, केम के बच्चे और बुजुर्ग ऊपर गर्मी नो जे असर रहे ए बहुत जल्दी था एटले एने लगातार पानी पीतु रहू जुए और एने धूप में जावा थे कि अपने रोकवा जुए। किसान भाई लू अगर लगी जा तो एना जे लक्षण है जेम के तेज बुखार चक्कर अब्बू उल्टी थवो वधारे कमजोरी और बेहोशी आवा अगर लक्षण देखाय तो तुरंत छायादार स्थान पर अपने सलो जाऊ जुए। शरीर पर ठंडा पानी ने पट्टी रखी और वना देर करी डॉक्टर थे कि संपर्क करव पड़े। तो तेज धूप गर्मी थी की बचाव आने बल्ले अपने जागरूक रहू पड़े और सावधानी बहुत आवश्यक है। एटले पर्याप्त पानी पीवू सही खानपान ने धूप थकी बचाव उपाय अपने अपनावीने स्वस्थ रही शके। गर्मी में अपने और अपने परिवार ने हाथे हाथे से पशुधन है इनी सुरक्षा अपने विशेष ध्यान रखू जुए ताकि अपने अनावश्यक रूप थकी परेशान न था और गर्मी में अपने स्वास्थ्य प्रभावित नहीं था। तो किसान भाइयों देखो वाते अजीबी करवी थी पर आज नो जो समय है ये पूरा थी रहो। काले कईक नवी जानकारी लईने आपणे फिर मल। तार तक आप लो आजे मांझी भाई ने आज्ञा ए आवजू। राम राम राम राम।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी किसान श्रोता सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम किसान वाणी एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 7:30 होने को है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: खेतीबाड़ी सुनवा वाला सभी किसान भाई ने अनिता की घनी घनी राम राम सा और नरपत भाई आपने भी घना घना राम राम।
1: सारा किसान भाई ने नरपत सिंह रू राम राम और अनिता बहन आपने भी राम राम।
0: जी नरपत जी देखो सा बहुत भयंकर छे जो गर्मी को मौसम छे और तापमान भी बहुत ज्यादा ऊपर चल रो छे और अहिया लागे छे के बस भाई काई भी काम करो मत और घरा में बैठे रहो पणसा घरा में बैठे रहे बस और काम न करवा सुवी तो पार कौन पड़े काम जो होबा का छे वह तो करना ही पड़ेला। पर सा ई जो अबा तापमान बहुत ज्यादा छे लू को टाइम छे तो ई टाइम में भी अपना किसान भाई ई को फायदो ले सके छे। अब नरपत भाई आप बताओ वो क्या ले सके छे
1: बारा अपना गर्मी का मौसम में जो अपना खेत चले जो किसान भाई बाकी गहरी जुताई कर और वे को फायदा भी उठा सके छे। जब मिट्टी कठोर रहे छे तो भी की पर तोड़ ले लगातार खेती करा था अपना जो सिंचाई करता है बीके कारण अपनी जो मिट्टी चे जो बीके निचले पर बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाए छे जिस कारण अपना जो पौधा चे तो पौधा की जड़ा नीचे जावा से रोक दे छे वो कठोर अगर भूमि हो जाली तो गहरी जुताई

0: जैसे कठोर परत टूट जाली और जड़ा गहराई तक फैल जावली तो अपना जो पौधा छे जन पर्याप्त पोषक तत्व मिलो और पानी मिलो तो अपने किसान भाई ने फायदो हो सके छे।
1: जी देखो सर, अपना किसान भाई 9 से 11 इंच गहरी जुताई करके जमीन में बहुत सारा फायदा ले सके छे। सबसे मोटो फायदो तो कहीं जे भाई कीट और जो बीमारियां छे वहां को प्राकृतिक रूप से नियंत्रण है सके छे। अंडा छे पीमा को यहाँ सुखात ना हो सके जो कि फसल ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाओ छे। भाई ये अंडा और जो पूमा धरती के नीचे छिपेड़ा छे, अगर हल पलट जो मिट्टी पलटवा वाला हल से अपना खेत की गहरी जुताई होली तो ये नीचे की जमीन ऊपरा आवली और ये सारा चीज जो इतना तेज तापमान में मर के खत्म हो जावेला। और पक्षी छे वहां की भी यहाँ जो अंडा छे वहां ने खा रिया ने खत्म कर देला। फंगस चाहे बैक्टीरिया को नाश हो जाओ, मिट्टी में छिपेड़ा हानिकारक फंगस का जो बीजाणु चाहे तेज धूप का संपर्क में आ रही खत्म हो जाला, जिससे कि पौधा में जड़ गलन और जैसी बीमारियां नहीं होली। और जो सबसे ज्यादा परेशानी को कारण चाहे खरपतवार जो किसान भाई के लिए बहुत ही ज्यादा सिरदर्दी को काम रहे चे, तो उनसे भी अपना किसान भाई ने निजात मिल जावली। क्योंकि देखो सर, खरपतवार की जड़ा बहुत ही ज्यादा लंबी रहे चे और ये जो खरपतवार छे ने वह बहुवर्षीय छे, तो ये खत्म ही गुणों अगर मिट्टी पलटली तो इकी जड़ा नीचे से खुद को ऊपर न आ जावली, ऊपर न आ रिया पूरी तरीका से सूख जावली और जब सूखली तो अपना आप ही खत्म हो जावली।
0: इसके अलावा अपना किसान भाई जल संरक्षण में भी सहायक रहे, अगर आप गहरी जुताई करा जाता हूँ गहरी जुताई से अपनी मिट्टी चाहिए भुरभुरी हो जाए जी कारण आपने जो बरसात को पानी चाहिए जो जमीन में आसानी से समा जा लो जी कारण जल संरक्षण भी हो लो और जो भू जल स्तर चाहे जो भी बढ़ जा लो जो जमीन में धीरे धीरे प्रेशर पानी जा लो तो आपने जो भूमि को नीचे जो भू स्तर चाहे बढ़ जा लो और वर्षा को पानी जो बहकर जाओ जो नष्ट हो जाए थे वो अपना खेत में सुरक्षित रह जा लो तो अपने जल संरक्षण में भी गहरी जुताई फायदेमंद रहे। और एक मिट्टी में जो वायु संचार चाहे वो भी बढ़े
1: बिल्कुल सा
0: गहरी जुताई कर ला तो आपने मिट्टी ढीली हो जा ली भुरभुरी हो जा ली जी कारण मिट्टी में जो हवा को संचार से बढ़ जा लो जिसका कारण कहीं लो कि अपना जो पौधा छे बाकी जड़ा लाभकारी हो जा ली और जो सूक्ष्म जीव छे इनके लिए बहुत ही आवश्यक रह लो। इस कारण से अपने गहरी जुताई से अपना पौधा ने जो वायु छे जो अच्छी तरह से मिल ली जिससे अपना किसान ने फायदा हो लो।
1: और देखो सर, जो मिट्टी के नीचे ने पोषक तत्व जमा हो रहा है वह मिट्टी पलटली तो नीचे से पोषक तत्व उपरा ना जावलो तो उनसे भी एक तरीका से मिट्टी को स्वास्थ्य चोको होलो उपजाऊ में उमें सुधार आवलो। तो देखो सर, बात करा ने फायदा की तो सारी चोखी तरीका से पूरा फायदा ही फायदा छे। अगर अपना किसान भाई ई गर्मी के मायने गहरी जुताई अपने खेत की करे छे तो पण देखो सा एक बात और ध्यान राखवा की या छे कि भाई हर साल गहरी जुताई करवा की जरूरत कोने, अगर किसान भाई पिछले साल करे छे जुताई तो इस साल करवा की जरूरत थोड़ी कम ही छे। और जुताई करवा के बाद खेत में कम से कम 15-20 दिन के लिए खुलो छोड़ दे ताकि धूप से आपको पूरा असर वो दिखा सके। अभी के पाछे ही नया खेत की तैयारी में जो भी आपने फसल लेनी चाहिए उनकी आप तैयारी करो। और मैं तैयारी कर रहा था अब एक गीत की, तो आओ सा सुनायो गीत।
0: बिल्कुल सुनाओ सा।

0: हाँ जी नटपत जी, देखो सा गीत सुना, गीत सुनबा के साथ साथ ही अब भगत हो चालो चाहे जानकारी को, तो यांत्रिक कृषि विद्या द्वारा कीट प्रबंधन क्या करना चाहिए जी, एक बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अशोक शर्मा जी, तो आओ सा सुनाया जानकारी।
1: बिल्कुल दे रहा जानकारी।
2: किसान भाइयों, आज आपने स्टूडियो में जानकारी देवा के लिए पधारा है डॉक्टर अशोक शर्मा। जैसा आज आप जानकारी ले ला यांत्रिक कृषि विधिया द्वारा कीट प्रबंधन आप काय तरीका से कर सका था, तो सबसे पहले तो आप को स्वागत करा राम राम साहब।
3: राम राम
2: सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाई ने बताओ कि यांत्रिक विद्या से काय अभिप्राय छे और आप किसान भाई ने सरल शब्द में काय तरीका से समझा सका था।
3: देखिये, कीट नियंत्रण में जो हम कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं उसके बहुत दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, और आज की जो आवश्यकता है समय की वो है कि हमें पर्यावरण का बहुत अच्छी तरह से इसको बचा के रखना है, इसका ख्याल रखना है ताकि ये और अधिक प्रदूषित ना हो
2: जी।
3: इसके लिए हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि इसको हम सुरक्षित रखें, और ऐसा करने के लिए हमें जो रसायन हैं, जो कीटनाशी हैं, उनके उपयोग को थोड़ा कम करना होगा
2: जी,
3: और वो तभी हो सकता है जब हम कोई दूसरी क्रियाएं जो जिनमें रसायन का बहुत ही कम उपयोग होता हो, ऐसी क्रियाओं को हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा, और उसमें भी एक खास बात ध्यान रखने की है कि उनको बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से हमें इस्तेमाल करना है। अब इन क्रियाओं में जो है वो हमारी कुछ सशिष्य क्रियाएं हैं, जैसे कि बीजों को कब बोना है, वो हमारी वैसी क्रिया है जो हमारी सस्य क्रियाओं में आती है। फिर उसके अलावा हमारी कुछ यांत्रिक क्रियाएं हैं और कुछ भौतिक क्रियाएं हैं। अब जहां तक यांत्रिक विधियों की बात अगर करें, तो अगर हम इसे बहुत अच्छे तरीके से या बहुत समझदारी से इसका उपयोग करें तो कीट प्रबंधन में ये बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकती है। यांत्रिक विधियों या तरीकों में यंत्रों का यानी मशीनों का अथवा ऐसी भौतिक क्रियाओं का संचालन आता है जिसका प्रयोग करने से कीटों को काफी हद तक या तो मार सकते हैं या उन्हें हम कम कर सकते हैं
2: जी। बिल्कुल साहब, कीट नियंत्रण के लिए यांत्रिक विद्या

0: काय तरीका से आपका काम में ले सका जा?
1: देखिए, बहुत सी यांत्रिक क्रियाएं हैं, जैसे कि हम सबसे पहले हाथों के द्वारा कीटों को या उनके अंडों को और खासतौर से जो वयस्क कीट हैं उनको मार सकते हैं, परंतु ये जो है एक सीमित क्षेत्र में ही संभव हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में इसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाथों से पकड़ना कीड़ों को या उनको जो है वो मारना संभव नहीं हो सकता। और ये जो विधियां हैं हाथ से पकड़ने की, ये बड़ी सुनियोजित तरीके से और सहयोगी ढंग से सब मिल करके करेंगे, सारा परिवार जो है, किसान परिवार जो है वो अगर करे तो उससे हम जो है, जैसे बैंगन का तना है या उसका फल छेदक है, हांडा भृंग है या गन्ने का पायरेला है या आम का तना छेदक है, इन कीटों को हम बड़े आसानी से हाथों से पकड़ के मार सकते हैं। दूसरा एक तरीका हो सकता है बाड़ लगाने का। इस तरीके में क्या करते हैं, खेतों के चारों तरफ हम मुंडेर बांध देते हैं, और ऐसा करने से जो रेंगने वाले कीट होते हैं वो इस एक खेत से दूसरे खेत में नहीं पहुंच पाते
0: जी।
1: इसमें जो है हम खासतौर से लाल बालों की जो सुंडी है उसको हम बड़े आसानी से इसमें इसका उपयोग करके उसे मार सकते हैं। फिर एक तीसरा साधन यांत्रिक विधि में और हो सकता है, उसे कहते हैं पट्टी बांधना
0: जी।
1: अब पट्टी बांधने में क्या है कि पहले हम जो है बहुत सालों से जो है हम मिली बग जो है वो एक आम का बहुत प्रमुख कीड़ा है जो जमीन के नीचे से ऊपर उठ करके आता है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो तना होता है उनके आसपास जो है हम कोई ऐसा चिपचिपा पदार्थ जैसे ग्रीस है, कोल तार है या अरंडी का तेल है, या कई बार हम जो है अल्काथीन की जो चादर आती है 40 गेज की, उसकी 30 सेंटीमीटर चौड़ी जो पट्टी है वो आम के तने के ऊपर बांध देते हैं, और ऐसा करने से मीली बग का जो कीट है उसके जो वो बच्चे हैं वो निकल करके ऊपर तने पे चढ़ते हैं, वो चढ़ नहीं पाते
0: जी।
1: और इस वजह से बहुत आसानी से वो मारे जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर नहीं चढ़ेंगे तो उन्हें फिर भोजन नहीं मिल पाता। ये एक तरीका ये भी हो सकता है। एक और यांत्रिक विधि हो सकती है खाई खोदना
0: जी।
1: ये खास तौर से जो टिड्डियां हैं उनके लिए, और वो टिड्डियां जो पंखहीन होती हैं, क्योंकि टिड्डियां भी कई अवस्थाएं होती हैं टिड्डियों में जिनमें एक पंखहीन होती है, उसके लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं। या ऐसी विधि है जो कूदने वाले कीट हैं जो छलांग लगाते हैं, कूदते हैं, उनके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और इसमें क्या करते हैं कि खेतों के चारों ओर हम आड़ी सी दीवार और गहरी खाई खोद देते हैं, जिससे टिड्डी उसमें गिर जाती है और निकल नहीं पाती और फिर वहीं पे मर जाती है, और ऐसा जो है वो लाल सुंडी या जो धान की सुंडी है उसके में बहुत ही उपयोगी कारगर सिद्ध हुई है। एक और तरीका है पुड़े बांधना। पुड़े बांधना में क्या है कि फलों जब फल में शुरू में जब फल लगने शुरू होते हैं तो कुछ जो कीट होते हैं उनकी मादाएं जो है वो उन पे अंडे देती हैं, और अंडे फिर उसके जब अंडे देती हैं तो उसमें से फल के अंदर अंडे देती हैं, और उससे फिर जो है आगे की जो अवस्थाएं हैं वो फिर आगे चलती हैं। तो अगर हम उसके चारों तरफ कोई पुड़ा बांध देंगे, लिफाफा जैसी चीज कोई बांध देंगे, तो उसमें जो है वो अंडे दे नहीं पाएगी और उसकी आगे की अवस्थाएं जो है वो नहीं पनप पाएंगी। ऐसा जो है करने से हम जो है फल छेदक कीट जो है उनसे हम बचा सकते हैं, और इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है अनार का जो छेदक कीट है, उसमें ये विधि जो है बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है
0: जी। साहब, इस समय पास या टेप को प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, एक बार में समझाओ साहब।
1: देखिए, जब कीटों को किसी भी प्रकार के कीट जो है प्रपंच में पकड़ करके मारे जाएं, किसी ऐसे यंत्रों को हम ट्रैप कहते हैं, यानी उसमें किसी तरह से उनको प्रलोभन दे करके वहां लाया जाता है। और इसमें क्या है कि ये प्रपंच जो है कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे यांत्रिक प्रपंच है, और प्रपंच का मतलब है पाश लगाना, ये लंबे टब के समान होते हैं जो ट्रैक्टर के सामने लगा दिया जाता है। ऐसा करने से जो टिड्डे हैं वो उछल करके उस टब में जमा होते हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से मारे जा सकते हैं। दूसरा जो प्रपंच है ये प्रकाश पाश है या लाइट ट्रैप कहते हैं। इस विधि में क्या होता है कि ज्यादातर जो कीड़े हैं वो प्रकाश की या रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं, और ऐसे कीड़ों के लिए ही इस विधि को इस्तेमाल में लिया जाता है। और ये कीड़े जो है वो रात के समय निकलते हैं, तो इसमें सबसे जो

साधारण जो पास होता है प्रकाश पास उसे कहते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं पेट्रोमैक्स का, जिसमें रात के समय उसको जला करके और उसके उसको एक टब के बीच में रख देते हैं जिसमें कुछ पानी भरा होता है और उसमें कुछ थोड़ा रसायन भी डाला हुआ होता है जिसमें खास तौर से मिट्टी का तेल है होता है जिसमें खास तौर से मिट्टी का तेल है। तो जब ये क्या होता है, जो रात को निकलने वाले कीट हैं जो आकर्षित होकर के वो पेट्रोमैक्स के पास आएंगे तो वो उससे टकरा करके उस पानी में जो रसायन मिला हुआ है या जो मिट्टी का तेल मिला है उसमें वो गिर करके मर जाएंगे। और अगर ये पेट्रोमैक्स ना भी हो तो हम क्या है, इसका जो सामान्य हमारा जो बिजली का बल्ब

0: की कीमत आती है।
1: बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया जानकारी दिया। चलता चलता मैं किसान भाई ने कुछ संदेश देना चाहूंगा।
0: मोटे तौर से हम ये कह सकते हैं कि जो कीटनाशकों का जो हम अंधाधुंध इस्तेमाल पिछले सालों में हुआ है, उससे बचाव के लिए हमें अब दूसरे तरीकों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, या जो परंपरागत हमारी विधियां थी जिनको हमने पिछले सालों में छोड़ दिया या कम कर दिया है, उनको हमें बढ़ावा देना है ताकि जो है हम कीटनाशकों के उपयोग में कमी ला सकें और अपने पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा मजबूत या सुरक्षित बना सके।
1: किसान भाई, आपा जानकारी ले रहे थे यांत्रिक कृषि विधिया द्वारा कीट प्रबंधन का बारे में, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अशोक शर्मा। आपने प्रोग्राम में आया और इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी दिया, इकलिया को घनो घनो धन्यवाद। साहब
2: अश्विनी जी, आपका भी घना घना धन्यवाद। जो डॉक्टर अशोक शर्मा जी से आप चूकी सी जानकारी दिलवाया सा, और देखो सर, डॉक्टर अशोक शर्मा बहुत चूकी चूकी बताया कि तरीका से आप यांत्रिक कृषि विधिया द्वारा कीट प्रबंधन कर सका छा, और यहाँ करके ही आप कीटों को तो प्रबंधन कर ही सका छा, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण में भी आपने योगदान दे सका छा। और अब जानकारी के साथ अब एक गीत भी सुन लेवा नरपत जी।
3: बिल्कुल सुनाओ सर।

0: नरपत भाई, अब गीत के साथ ही अपना कार्यक्रम देवा अठही विराम और आज्ञा लेवा। देव अनिता ने आज्ञा
1: और नरपत सिंह ने
0: चालार करा।
1: राम राम सा।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं पहला गीत। फिल्म का नाम है ये जवानी है दीवानी, आवाज अरिजीत।

दिल धड़कने दो। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे याशिता शर्मा, मनीष कुमार टीपू और फरहान अख्तर की आवाज में। आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है द स्काई इज पिंक, आवाज अरिजीत सिंह की।

0: पीकू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और अनुपम रॉय की आवाज में। आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है सात खून माफ। आवाजें हैं उषा उत्थप और रेखा भारद्वाज की।
1: डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन, अभय देओल और साथियों की आवाज में। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। श्रोताओं, रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगे खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम

स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। कल हैदराबाद जीत के बावजूद क्वालिफायर से चूकी। सुपर शतरंज क्लासिक में आर प्रज्ञानंदा ने मैक्सिम वॉचियर लाग्रेव के साथ ड्रॉ खेला। अगला मुकाबला अनीस गिरी से। 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी उत्साह के साथ जारी और जिनेवा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में यूकी भांबरी उप विजेता रहे।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, जहां खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। कुछ खिलाड़ियों ने रजत तो कुछ ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। फाइनल मुकाबले के 60 किलोग्राम वर्ग में सूरज वशिष्ठ को कजाकिस्तान के एबेक एदबेकोक से 4-0 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह उज्बेकिस्तान के एजान खलमा खानोव से 9-0 से हार गए। 77 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में कुमार सचिन ने पदक अपने नाम किया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में रोहित ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। आइए सुनते हैं मैच का हाल।
1: प्रतियोगिता के 60 किलोग्राम वर्ग में आज सूरज वशिष्ठ उपविजेता रहे। फाइनल में उन्हें कजाकिस्तान के एबेक एदबेकोव से 4-0 से हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में सूरज ने किर्गिस्तान के नूरिस्तान सुई और गुलोब को 3-2 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। वहीं 67 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में सागर सिंह ने सऊदी अरब के मुनथिर अब्दुल्लाई जंदू को 4-0 से शिकस्त दी थी। प्रतियोगिता में नेहा एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ चैंपियनशिप में उतर रही है। उन्होंने पहले अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था और साथ ही अंडर 17 एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया था। दूसरी ओर काजल ने तेजी से खुद को भारत की सबसे होनहार कुश्ती प्रतिभाओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। वे मौजूदा अंडर 20 विश्व चैंपियन, अंडर 17 विश्व चैंपियन और अंडर 20 एशियाई चैंपियन के तौर पर दानांग पहुंची हैं। प्रो रेसलिंग लीग के कई पहलवान भारतीय दल का हिस्सा है, जो इस बात को रेखांकित करता है कि ये लीग भारत की अगली पीढ़ी की कुश्ती प्रतिभाओं को निखारने, विकसित करने और उनकी प्रगति के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में उभर रही है। मुकेश कुमार बल, स्पोर्ट्स कैन।
0: ये प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों को मंच भी प्रदान करती है, जिसके जरिए खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर कई पदक जीतकर देश का मान बढ़ाते हैं। इन प्रतियोगिता को उद्देश्य भारतीय रेसलिंग के विकास में अहम योगदान देना होता है, जिससे वे उभरती हुई प्रतिभाओं को सपोर्ट कर सकें और उन्हें आगे बढ़ा सकें। चैंपियनशिप से सीधे चलते लखनऊ की ओर, जहां आईपीएल क्रिकेट का रोमांचक मुकाबला जारी है। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 122 रन बना लिए हैं। इससे पहले पंजाब ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं कल खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया।
2: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने अच्छी शुरुआत दिलाई। अभिषेक ने 22 गेंद पर 56, तो वहीं हेड ने 16 गेंद में 26 रन का योगदान दिया। इसके बाद ईशान किशन और हेनरिक क्लासिन ने 48 गेंदों में 113 रन की जबरदस्त साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। ईशान ने 46 गेंदों में ताबड़तोड़ 79 रन, जबकि क्लासिन ने 24 गेंदों पर 51 रन बनाए। अंतिम ओवरों में नीतीश कुमार रेड्डी ने 29 रन जोड़े। टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 255 रन बनाए। बेंगलुरु की ओर से रसिक सलाम डार ने 2, तो वहीं सुयश शर्मा और कुणाल पांड्या ने 1-1 विकेट चटकाए। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम के लिए वेंकटेश अय्यर ने 19 गेंदों में 44 रन बनाकर टीम को बेहतर शुरुआत दिलाई। मिडिल ओवर्स में कप्तान रजत पाटीदार ने 39 गेंदों में 56 रन की पारी खेलकर टीम को मुकाबले में बनाए रखा। इसके बाद कुणाल पांड्या ने 31 गेंदों में 41 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। ईशान मलिंगा को 2, साकिब हुसैन और ट्रेविस हेड को 1-1 सफलता हाथ लगी। ईशान किशन को शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये ईशान किशन का आरसीबी के खिलाफ लगातार चौथा अर्धशतक।

0: था। मैच के बाद ईशान किशन ने आरसीबी के साथ खेलने का अपना अनुभव साझा किया।
1: आई डोंट नो टू बी वेरी ऑनेस्ट लाइक आई सेड आई जस्ट टेक वन मैच एट अ टाइम बट आई डोंट नो व्हाई बट आई डू फील कॉन्फिडेंट व्हेन आई एम प्लेइंग अगेंस्ट देम एंड आई थिंक एंड ऑफ द डे फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव एंड आई जस्ट ट्राई टू डू माय थिंग एंड इट वर्क्स ऑन माय वे।
0: इस जीत के बावजूद हैदराबाद क्वालिफायर में जगह नहीं बना सकी, वहीं बेहतर नेट रन रेट के कारण आरसीबी शीर्ष स्थान पर रही। 26 मई को क्वालिफायर वन में आरसीबी का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा, वहीं 27 मई को एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद चौथे स्थान पर पहुंचने वाली टीम से खेलेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
2: जी जरूर, कल सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत दर्ज की लेकिन वे क्वालिफायर में अपनी जगह बनाने से पीछे रह गए। वहीं आरसीबी और गुजरात टाइटंस ने क्वालिफायर वन में अपनी जगह बना ली है और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं विशेष, हमारे सहयोगी। विशेष, कल अच्छा मुकाबला देखने को मिला लेकिन टॉप टू की जगहें फिक्स हो गई, लेकिन चौथे स्थान के लिए अब भी जद्दोजहद बाकी है। कौन सी ऐसी टीम है जो आपको नजर आ रही है कि चौथे स्लॉट के लिए अपना स्थान पुख्ता करती नजर आ रही है?
3: जी प्रशांत, जैसा कि आपने बताया कि तीन टीमें अपनी जगह पहले ही प्लेऑफ के लिए पक्की कर चुकी हैं और तीनों लगभग जो है बराबर दर्जे की टीमें हैं और 18-18 अंकों के साथ इन्होंने प्लेऑफ में जगह बनाई है। सिर्फ नेट रन रेट के चलते इन टीमों को पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहना पड़ा है। वहीं अगर बात करें हम चौथे स्थान की, तो जिसके लिए राजस्थान, पंजाब, कोलकाता और दिल्ली अभी रेस में बनी हुई है। अगर दिल्ली की बात करें तो वह अपना मुकाबला पहले तो जीते, उसके बाद उन्हें राजस्थान, कोलकाता और पंजाब तीनों के मुकाबलों के परिणामों पर निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं अगर कोलकाता की बात करें तो वो अपना मुकाबला जीते, साथ ही साथ राजस्थान और पंजाब के मुकाबले हारने की कामना करें। और वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब सबसे पहले अपना मुकाबला जीते और राजस्थान अपना मुकाबला यदि हारती है तो पंजाब को प्लेऑफ्स में जगह मिलेगी। लेकिन राजस्थान के लिए सबसे सुनहरा मौका उन्हीं के पास है कि बस वो उन्हें अपना मुकाबला जीतना है और उनके लिए प्लेऑफ्स में स्थान पक्का हो जाएगा।
2: तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स का फॉर्च्यून जो है अपने हाथों में है और वो अपने मुकाबला जीत करके सीधे टॉप चार में जगह बना लेंगे। अब सीधे रुख करते हैं शतरंज की ओर। सुपर शतरंज क्लासिक में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने प्रतियोगिता के आठवें दौर में फ्रांस के मैक्सिम वॉचियर लाग्रेव के साथ ड्रॉ खेला। अगली बाजी में प्रज्ञानंदा का मुकाबला अनीस गिरी से होगा। आइए सुनते हैं प्रतियोगिता में अब तक के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में।
4: प्रतियोगिता के मुकाबले में आज आर प्रज्ञानंदा ने मैक्सिम वाचियर लाग्रेव के साथ ड्रॉ खेला। इसके साथ ही प्रज्ञानंदा ने जीत हासिल करने के कुछ अच्छे मौके गवा दिए। दिन के अन्य मुकाबलों में अमेरिका के फेबियानो कारुआना और जर्मनी के विंसेंट कीमर के बीच बाजी ड्रॉ रही, जबकि विश्व चैंपियनशिप के दावेदार उज्बेकिस्तान के जावोखेर सिंदारोव ने नीदरलैंड के जॉर्डन वैन फॉरेस्ट पर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। नीदरलैंड के एक अन्य खिलाड़ी अनीश गिरी को रोमानिया के डीएक बोगदान डेनियल से हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा के नाम वापस लेने के बाद अमेरिका के वेस्ली सो को वॉक ओवर मिला। अब प्रतियोगिता में आखिरी दौर का खेल बाकी है जहां पांच खिलाड़ी खिताब के लिए दावेदारी पेश करेंगे। अभी कीमर और कारुआना दोनों 5-5 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। सिंदारो, वेस्ली और फोरेस्ट 4.5 अंकों के साथ संयुक्त तीसरे, जबकि प्रज्ञानंदा गिरी और वाचियर लाग्रेव 4-4 अंक लेकर संयुक्त छठे स्थान पे हैं। डीएक बोगदान डेनियल ने अपना अभियान 3.5 अंकों के साथ समाप्त किया। अंतिम दौर में उन्हें वॉक ओवर मिलेगा जिससे उनका स्कोर 4.5 हो जाएगा। सिंदारो पर दूसरे दौर में जीत के बाद प्रज्ञानंदा की दूसरी जीत की तलाश वाचियर लाग्रेव के खिलाफ लगभग पूरी हो गई थी। प्रज्ञानंदा अपनी अंतिम बाजी में गिरी का सामना करेंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
2: आर प्रज्ञानंदा ने लगातार शार्प माइंड और दमदार खेल प्रदर्शन के दम पर पहले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह बनाई और अपनी अमिट छाप छोड़ी। हालांकि कैंडिडेट्स में उनका प्रदर्शन मिला जो रहा, तो ऐसे में यह प्रतियोगिता उनके लिए बेहद अहम है। कर लेते हैं अब एथलेटिक्स पे, जहां झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता जारी है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज गुरविंदर सिंह ने 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। आइए चलते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता महवीश के पास। महवीश हमारे साथ रांची से जुड़ गई हैं। तो महवीश, रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में इस समय राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन का प्रतियोगिता चल रही है। पहले दिन तो खिलाड़ियों ने कई कीर्तिमान अपने नाम किए लेकिन

0: आज दूसरे दिन के मुकाबले में कौन कौन से बड़े उलटफेर या रिकॉर्ड देखने को मिले?
1: जी हाँ, इस प्रतियोगिता में इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण पुरुषों की 100 मीटर रेस रही है। जैसा कि आपने बताया कि आज खेले हुए फाइनल में रिलायंस के खिलाड़ी गोरिंदरवीर सिंह ने ओडिशा के धावक अनिमेश कुजूर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10.09 सेकंड का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं पुरुषों के 400 मीटर में तमिलनाडु के विशाल टीके ने 44.98 सेकंड का भी नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। महिलाओं के डिस्कस थ्रो में अनुभवी एथलीट सीमा ने 57.29 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता है। आज पुरुषों की डीकैथलॉन स्पर्धा के फाइनल में भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तेजस्वी शंकर ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं महिलाओं के शॉटपुट स्पर्धा का खिताब रिलायंस की कृष्णा जयशंकर ने जीत लिया है। महिलाओं की 100 मीटर दौड़ की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की सुदेशना हनुमंत ने स्वर्ण पदक हासिल किया। आज
0: महवीश, इस वक्त भीषण गर्मी का प्रकोप पूरे देश भर में देखा जा रहा है, तो ऐसे में खिलाड़ियों के प्रदर्शन और प्रतियोगिता पर क्या इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है?
1: बिल्कुल, रांची में पारा लगातार बढ़ रहा है, यहाँ बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ियों का हौसला कम नहीं हुआ है। देश भर के करीब 700 एथलीट इस कड़कती धूप में भी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। आयोजकों ने खिलाड़ियों को गर्मी से बचाने के लिए मैदान पर ORS, मेडिकल टीम और पर्याप्त पानी की विशेष व्यवस्था कर रखी है।
0: महवीश, ये प्रतियोगिता आगामी अंतर्राष्ट्रीय खेल कॉमनवेल्थ गेम्स के मद्देनजर बेहद अहम मानी जा रही है। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का प्रदर्शन आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन के लिए बेहद अहम है, तो ऐसे में खिलाड़ियों के लिए आगे चयन की क्या प्रक्रिया होने वाली है?
1: जी बिल्कुल, ये प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आधार पर ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन अंडर 23 चैंपियनशिप के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीम का चयन होना है। जो भी खिलाड़ी यहाँ तय किए गए क्वालिफिकेशन मार्क को छू रहे हैं उन्हें सीधे भारतीय टीम का टिकट मिल रहा है, तो अगले 2 दिनों में कई और रोमांचक फाइनल मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद महवीश, आपने ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताया जिनसे पूरे देश को उम्मीदें रहती है, और जैसे जैसे प्रतियोगिता अंतिम रूप लेगा हम और भी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करते देखेंगे। बात करते हैं स्क्वैश पर। 33वें एशियन जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 वर्ग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। लड़कों के वर्ग में शिवेन अग्रवाल, वहीं लड़कियों में अनिका दुबे ने फाइनल में अपनी जगह बनाई। अब सीधे चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं जिनेवा ओपन टेनिस पर। जिनेवा ओपन 2026 टेनिस प्रतियोगिता में यूकी भांबरी उप विजेता रहे। न्यूजीलैंड के अपने जोड़ीदार माइकल विनस के साथ खेलते हुए फाइनल मुकाबले में रोमेन अर्नियार्डो और मार्क पॉलमिन से 6-3, 6-7, 7-10 से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जरूर वे उप विजेता रहे, लेकिन कई ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जिनमें यूकी भांबरी ने और जिसको अपने नाम किया है। 18वीं वरीयता प्राप्त इस खिलाड़ी ने 2025 में दुबई ड्यूटी फ्री चैंपियनशिप जीत चुके हैं। इसके साथ ही वे US ओपन जैसे प्रमुख टूर्नामेंट में भी सेमीफाइनल खेल चुके हैं। रुख कर लेते गोल्फ की ओर। बेल्जियम में भारतीय गोल्फर युवराज संधू ने रिंकवेन इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में चल रहे सोडाल ओपन में कट हासिल किया, लेकिन शुभंकर शर्मा चू गए। दक्षिण अफ्रीका के जेंडर लोम्बार्ड और फ्रांस के टॉम वैलियन दूसरे दौर के बाद संयुक्त बढ़त बना चुके हैं। और श्रोता, हम सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला जारी है। लखनऊ ने 4 विकेट पर 14 ओवर में 134 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.aar@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा।

0: देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

स्कीम के टेलीलॉ नए बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला।

0: हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: हमने यह स्तंभ सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट लाई, हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
1: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
3: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
4: विकसित भारत 2047 जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज है, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: विकसित भारत जी राम जी एक्ट में 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी

संसद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: अभिजीत वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल किवान काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेको से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानाऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म भूल भुलैया 2 से। आवाजें अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल समीर के और संगीत प्रीतम का।

0: अकबर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही

श्रोता गीत आपने सुना फिल्म गुड न्यूज से, आवाजें बादशाह हैडी संधू, लिसा मिश्रा और असीस कौर की थी। गीत के बोल तनिष्क बागची के और संगीत भी इनका ही था।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। एक अभिनेत्री जो अपने अभिनय की शुरुआत स्कूल और कॉलेज के थिएटर से करती है, धीरे धीरे टीवी सीरियल की ओर बढ़ती है, बॉलीवुड में आकर अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाती है और आज OTT की क्वीन कहलाती है, वो है शेफाली।

बॉलीवुड की ये खूबसूरत अदाकारा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 22 मई 1973 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी शेफाली बचपन से ही अभिनय करना चाहती थी। वे एक मॉडल, अभिनेत्री और चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। उनके पिता का नाम सुधाकर शेट्टी और माता का नाम शोभा शेट्टी है। वे अपने माता पिता की इकलौती लाडली संतान हैं और उनका पालन पोषण एक गैर फिल्मी पृष्ठभूमि में हुआ। साल 2000 में उन्होंने निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह से शादी की, जिनके साथ उनके दो बेटे

शेफाली शाह का अभिनय करियर गुजराती मंच से शुरू हुआ। बचपन से ही उन्हें कला की ओर बहुत झुकाव था, जिसमें गायन और नृत्य शामिल थे। उन्होंने भरतनाट्यम में प्रशिक्षण लिया। उनकी अभिनय यात्रा 10 वर्ष की आयु में गुजराती मंच पर किए नाटक द ओमेन से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने डेमियन थॉर्न पर आधारित चरित्र को बखूबी निभाया। इंटर कॉलेजिएट नाटकों में काम करने के साथ साथ उन्होंने गुजराती रंगमंच में काम करके अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दे दिया था।

शेफाली शाह ने थिएटर करने के बाद साल 1993 में टीवी की दुनिया में कदम रखा। बनेगी अपनी बात सीरियल से छोटे पर्दे पर उन्होंने डेब्यू किया, फिर आरोहण, हसरतें, पतझड़, कभी कभी, सी हॉक्स, राहें और रामायण जैसे सीरियलों में अभिनय कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शेफाली शाह कमाल की एक्ट्रेस, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज उनके नाम 25 से ज्यादा फिल्में हैं और इन सभी फिल्मों में उनका काम बोलता है। उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत पर बात की जाए तो 1995 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से उन्होंने डेब्यू किया। इस फिल्म में उनकी भूमिका बहुत छोटी थी।

1998 में रामगोपाल वर्मा की ही एक फिल्म सत्या में शेफाली ने भीकू महात्रे की पत्नी प्यारी महात्रे की भूमिका निभाई, जो मनोज बाजपेयी द्वारा निभाई गई एक माफिया सरगना की पत्नी थी। इस फिल्म में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड जीता। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला।

फिल्म सत्या में अपने शानदार काम के बावजूद शेफाली शाह को उतनी फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिले जितनी उन्हें उम्मीद थी। विपुल शाह द्वारा बनाई गई गुजराती फिल्म दरिया छोरू में कास्ट किया गया। विपुल शाह की इस फिल्म के लिए शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 2000 में निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा की फिल्म आई मोहब्बतें। इस रोमांटिक फिल्म में शेफाली को

इसके ठीक एक साल बाद यानी 2001 में उन्हें मीरा नायर की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मानसून वेडिंग में लिया गया। इस फिल्म में शेफाली ने रिया वर्मा की भूमिका निभाई। ये फिल्म अपने समय से आगे की फिल्म मानी गई। रिया वर्मा की भूमिका में शेफाली वास्तविक पात्रों में से एक थी। उन्होंने बचपन में बहुत दर्द का अनुभव किया था, जिसके कारण रिया वर्मा रिश्ता नहीं बना सकी और अविवाहित रहने का फैसला करती हैं। एक ऐसा किरदार शेफाली का था जो सबसे जटिल था। इसे शेफाली ने बखूबी निभाया। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली और कई

2005 में विपुल शाह के निर्देशन में शेफाली ने पारिवारिक मेलोड्रामा वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में काम किया। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की माँ के रोल में नजर आती हैं। सुमित्रा ठाकुर के रूप में उनकी भूमिका एक सख्त माँ की थी जो अपने पति को अपने गैर जिम्मेदार बेटे को अनुशासित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर का नामांकन मिला। अभिनय के वक्त वो अमिताभ बच्चन से आधी उम्र की और अक्षय कुमार से लगभग 4 साल छोटी थी, लेकिन अपने अभिनय के दमखम से उन्होंने भूमिका में जान

निर्देशक फिरोज अब्बास खान की फिल्म गांधी माय फादर का जिक्र करना यहां बहुत जरूरी हो जाता है। 2007 में आई इस फिल्म में दर्शन जरीवाला और अक्षय खन्ना के साथ कस्तूरबा की भूमिका में शेफाली शाह नजर आती हैं। ये फिल्म महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली ने कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई, जो अपने पति महात्मा गांधी और बेटे हरिलाल के बीच आजीवन संघर्ष से त्रस्त हैं। इस फिल्म में उनकी भूमिका ज्यादा आंतरिक है, क्योंकि वो चुपचाप सब कुछ देखती हैं कि हरिलाल क्या कर रहा है। उन्होंने अपने दो अहम दृश्यों में बेहतरीन काम किया, जिसमें वे गांधी पर हरिलाल को छात्रवृत्ति न देने के लिए भड़कती हैं, और जहां वे धर्म परिवर्तन के बाद हरिलाल से भिड़ जाती हैं। कस्तूरबा के रूप में उनका अभिनय शानदार नजर आता है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और 2008 में जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।

2007 में ही फिल्म द लास्ट लियर में शेफाली ने अमिताभ बच्चन के साथ परेशान और चिड़चिड़ी स्वभाव वाली और लिव इन पार्टनर की भूमिका निभाई है। ये एक ऐसी भूमिका थी जिसे वे अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानती हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फिल्म को सराहना के साथ ही 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम दिया गया और शेफाली शाह ने सहायक अभिनेत्री का खिताब भी जीता। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋतुपर्णो घोष।

सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शेफाली ने रीमा माथुर की भूमिका निभाई। 2008 में आई इस फिल्म में शेफाली एक बंगाली कार्यकर्ता और एक उर्दू प्रोफेसर अनिल कपूर की पत्नी के अहम

2011 में उन्होंने विपुल शाह के प्रोडक्शन में कुछ लव जैसा फिल्म में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई, जो जेल से भाग रहे एक अपराधी राहुल बोस के साथ एक रोमांटिक दिन बिताती है। कहते हैं अपने इस रोल को समझने के लिए शेफाली ने ठाणे जेल का दौरा भी किया और अपने चरित्र को समझने के लिए कैदियों से बात भी की।

साल की अनुपस्थिति के बाद शेफाली शाह ने मोनाली ठाकुर के साथ नागेश कुकनूर की सामाजिक समस्या पर बनी फिल्म लक्ष्मी में काम किया। इस फिल्म में शेफाली शाह ने एक वैश्याले की मालकिन ज्योति की भूमिका अदा की है। 2014 में आई ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म थी। दिल धड़कने दो, जी हाँ, 2015 में निर्देशिका जोया अख्तर की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई। इस फिल्म में शेफाली अनिल कपूर की पत्नी के रोल में नजर आईं। फिल्म के अन्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह हैं। इस फिल्म में उनके प्रभावी अभिनय के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन उन्हें मिला।

करण मल्होत्रा की अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा वॉरियर के रीमेक में उन्हें एक छोटी सी सहायक भूमिका मिली। इस फिल्म में उनके चरित्र मारिया फर्नांडिस को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने व्याभिचारी पति के विवाह के बाद हुए अवैध बच्चे को स्वीकार करती है।

शेफाली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने किरदार में एक ऐसी सादगी लाती हैं जो मुख्य धारा के सिनेमा में शायद ही कभी देखी जाती है। फिल्म जूस नीरज घायवान द्वारा 2017 में आई एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली की निगाहें शब्दों से कहीं अधिक बयां करती है और उनका अभिनय लाजवाब नजर आता है।

वंस अगेन रोमांटिक फिल्म का जिक्र भी यहाँ करना बहुत जरूरी है। 2018 में आई इस फिल्म को कमल सेठी ने लिखा और निर्देशित किया। शेफाली शाह और नीरज का भी अभिनीत ये फिल्म दो मध्यम वर्गीय आयु वर्ग के लोगों की कहानी है। इस फिल्म में काम करने के बाद शेफाली ने कहा कि वो लंबे समय से इस तरह की फिल्म का इंतजार कर रही थी। शेफाली इन सभी फिल्मों के अलावा ब्रदर्स, द जंगल बुक, कमांडो 2 और डॉक्टर जी जैसी फिल्मों के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं।

शेफाली शाह ने इन सभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया हो, लेकिन ये स्टारडम तब और बढ़ा जब उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा। जी हाँ, शेफाली शाह ने साल 2019 में आई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से अपनी प्रतिभा की एक अलग ही मिसाल पेश की। 2023 में उन्हें दिल्ली क्राइम में उनके अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस सीरीज में उनकी प्रतिभा जो दर्शकों के सामने आई उसे देखकर हर कोई अवाक रह गया। इस वेब शो में शेफाली ने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया, जिन्हें दिल्ली में एक क्रूर सामूहिक बलात्कार की जांच करने का काम सौंपा जाता है।

ब्लैक कॉमेडी डार्लिंग्स में शेफाली और आलिया भट्ट माँ और बेटी के रूप में अभिनय करती हैं। इस फिल्म को जसनीत के रीन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है जिसकी पटकथा परवेज शेख ने लिखी। फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस फिल्म को कई अवार्ड मिले। शेफाली ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब जीता।

2022 में आई ह्यूमन में शेफाली ने डॉक्टर गौरीनाथ की भूमिका निभाई। विपुल शाह द्वारा निर्देशित ये शो दवा कंपनियों और बड़े निजी अस्पतालों के बीच सांठगांठ की पड़ताल करता है। वहीं सोशल थ्रिलर फिल्म जलसा में उन्होंने विद्या बालन के साथ अभिनय किया। वे इसमें रुखसाना नाम की महिला का किरदार निभाती नजर आती हैं, जिसकी बेटी एक हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें मेलबर्न के वार्षिक भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला।

अविनाश अरुण द्वारा सहलिखित और निर्देशित थ्री ऑफ अस 2023 की फिल्म है। इसमें शेफाली ने शैलजा देसाई की

2023 की फिल्म है। इसमें शेफाली ने शैलजा देसाई की भूमिका निभाई है जिसे डिमेंशिया है और वो अपने बचपन को याद करने के लिए यात्रा पर निकलती हैं और अपने दर्दनाक अतीत का सामना करती हैं। स्वानंद किरकिरे इस फिल्म में उनके पति और जयदीप अहलावत बचपन के दोस्त की भूमिका में हैं। इससे पहले 2020 में शेफाली शाह ने दो स्व अभिनीत कोविड-19 आधारित लघु फिल्मों समडे और हैप्पी बर्थडे मम्मी जी में लेखन और निर्देशन भी किया। 2025 में निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म हिसाब, इस फिल्म में शेफाली शाह, जयदीप अहलावत और अभिषेक सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

0: शेफाली शाह को अपने बेजोड़ अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार शामिल हैं। सेट पर सबसे ज्यादा खुश रहने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जो भूमिकाएं निभाती है वे उस फिल्म का मुख्य किरदार होती हैं और वो अपनी भूमिकाओं में खामोशी को ढूंढती हैं। शेफाली अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वास्तव में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगी और फिल्मों में यूं काम करूंगी। लंबे वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं पूरी तरह से अभिनय करूंगी, ये बस होता गया और जो भी किरदार मैंने निभाए वो बहुत मजबूत किरदार बनकर उभरे हैं। तो ये था अभिनेत्री शेफाली शाह पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। आलेख, शोध और स्वर मंदाकिनी जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 10 बजे लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

खास करते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले के गाय फिल्म आराधना के इस गीत के साथ। शब्द लिखा आनंद बख्शी का है, संगीत एस डी बर्मन का।

अभी आपने मोहम्मद रफी और आशा भोसले को फिल्म आराधना में सुना। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश का गाया फिल्म नूरी का ये गीत। शब्द लेखन मजरूह सुल्तानपुरी का है, संगीत खयाम का।

आपने फिल्म नूरी का ये गीत सुना। आइए सुनते हैं आनंद बख्शी की रचना को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में फिल्म राजा और रंक से। इस गीत का आवाज़ मोहम्मद रफी ने।

आपने फिल्म जॉनी मेरा नाम का ही गीत सुना। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गीत। आनंद बख्शी का लिखा है गीत है संगीत आर डी बर्मन का।

आए और सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म मुद्दत का ये गीत। इंदिवर के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई है बप्पी लहरी ने।

आपने फिल्म मुद्दत का ये गीत सुना। आइए सुने लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत। शब्द लेखन अनजान का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म रजिया सुल्तान का ये गीत। जहां निसार अख्तर का लिखा है गीत संगीत खयाम का।

आपने लता मंगेशकर को फिल्म रजिया सुल्तान में सुना। आइए सुनते हैं किशोर कुमार का गाया फिल्म कालिया का ये गीत। शब्द लेखन मजरूह सुल्तानपुरी का है, संगीत आर डी बर्मन का।

आपने लता मंगेशकर को फिल्म पत्थर के सनम में सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत की अगली और आखिरी पेशकश में किशोर कुमार का गाया फिल्म बिन फेरे हम तेरे का ये गीत। इंदिवर का लिखा गीत संगीत उषा खन्ना का।

किशोर कुमार की गाय फिल्म बिन फेरे हम तेरे के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही का तू होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात के 11 बजने को है। कुछ ही पल में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे

0: लगता है ये बेहद अहम है।
1: Not just on the short term, but on the long term.
2: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोब से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय रात के 11:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यही समाप्त होती है। कल सुबह 5:51 पर हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, शुभ रात्रि, जय हिंद।